0: अब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पपीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णुवादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
1: गर्ग मुनि ने,
0: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है, जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है, और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कने धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में है, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है। शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बरवधू भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: इसीलिए लीला जी आप याद करिए कि अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवीय विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
1: हुआ,
0: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्रायः सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती, तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे।

0: गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाएं, तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम। ये अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधु वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विवल भाव विवल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ठ सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना

0: गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय? क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो, प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम माँ कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकर तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः। एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्षगणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हट के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा वीणा मत बजाओ। हे पंडित देवर्षि, जब तुम्हें हट से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वच। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशान का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहाँ उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
3: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि की कोई कहीं कथा हो रही है तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: बिन बुलाए मेहमान,
3: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
3: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
3: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
3: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहें, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल

0: बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मींस ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
0: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एक रस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थिर प्रज्ञा है। तो वहां पे माना क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थिर प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है, उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं, तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं।

0: होते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं। और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जाओ. Children are doing that.
0: I think it's happening every day.
1: कितनी बार आप movie में चले जाओ, आप shopping mall में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: School uniforms में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. Definitely.
1: तो जहाँ resistance मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, आप बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली, अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि

0: अंदर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
1: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट यू नो पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
0: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
1: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
0: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
1: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
0: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
1: जीवन.
0: किसको?
1: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना.
0: एब्सोल्युटली, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
1: उसको जीवन देते.
0: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग
1: बीइंग.
0: दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
1: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
0: एंड दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स आल्सो ओके, बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
1: उन्हें
0: nourish. और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
1: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा.
0: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
1: and give them happiness, you know? Yeah.
0: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा. डू आई हैव टू थिंक सैटिस्फैक्शन क्या होती है, कंटेंटमेंट क्या होती है,
1: स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होती है. आई थिंक स्ट्रेस हैज गॉन समवेयर अप, यू नो, इट्स लाइक इन दिस होल कन्वर्सेशन. आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
0: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सोल्यूशन. ये सोल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
1: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज द स्ट्रेस एरिया, द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
0: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव
1: नहीं मिलता.
0: स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू
1: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जाम्पल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
0: फ्लो,
1: आई एम नरिशिंग
0: फ्लो, एंड जस्ट फ्लो एंड पास ऑन, क्योंकि आप

0: ग्रो करते करते कितनी चीजों को पास ऑन करते जाएंगे और वो अपने आप नरिश होते
1: जाएंगे।
0: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
1: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
0: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
1: हमसे होगी।
0: आई फील ब्यूटिफुल,
1: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
0: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपने इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है। मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई है इनसे दूर जाना, हम मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
1: बात करना बंद कर देते हैं।
0: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है, वो मुझे That's good for me, then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside.
1: Okay.
0: Simple, simple things. सुनने में इमिडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं, बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल सिंपल।
1: हाँ, और हर बार की तरह
0: स्टार्ट डूइंग दैट,
1: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगारा है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस, और कहाँ तक पहुँचता है।
0: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं, तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो 5 दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, तो गुस्सा बार बार करना या कहीं एक बार भी करना सारे दिन में तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
2: वॉचिंग इट एंड सी इट।
0: तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी। खुद
0: जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए एंड देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 stages, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान भी कर सकते
0: हैं। वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज्ड एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 steps, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं. अगर belief सारे एक दिन में टूटता है कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस चाहिए, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो. एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से है. जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा है, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज.
2: यस, यू नो वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, जस्ट अ यू नो थॉट वे. सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ. इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ही है कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए औरों से और गुस्सा करते हैं. यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो. सो इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
0: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका result क्या होगा कि जो मेरी thoughts होंगे वो बहुत positive और focused होंगे. अंदर एक silence होगा, एक है silence, एक है noise. You know, तो peace doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत peaceful है, अंदर बहुत noise है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. तो साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है, बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है, वन थॉट होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना, अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
2: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि व्हेन आई व्हेन यू से कि आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं, अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है।
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं
2: उसके लिए।
0: एब्सोल्युटली
2: है ना। लेकिन मेरे अगर, मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ। क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिव इन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है। मैंने ये भी पहले तो, अब देखो, औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को।
2: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
0: ओम शांति।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है संडे का दिन। अच्छा, संडे वाले दिन ना हमारे पास कई सारे काम होते हैं। सुबह उठते ही लगता है कि जितने भी अपने पेंडिंग काम है, घर के काम है, वो फटाफट से कर लिए जाए। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके साथ तो यही है कि एक संडे मिलता है, फटाफट से अपने सारे काम कर लो और उसके बाद जल्दी से हम रेस्ट कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, या फिर ये होता है कि भाई कहीं चलते हैं, घूमने चलते हैं, कुछ खा के आते हैं और कहीं घूम के आते हैं, कुछ अच्छा लगेगा। और जब हम बाहर जाते हैं तो बड़े ही सुकून लगता है, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, बाहर घूमना भी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, चाहे आप बाहर घूमें, घर पर रहें, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना। और ये सारी बातचीत लेकर के मैं यानी कि आरजे साक्षी आपके पास आ जाती हूँ। अगर आपके पास भी कोई संदेश है जो आप हमें, हमारे सारी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, तो नंबर है 8010781078। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, मैसेज आप कर सकते हैं, नंबर है 8010781078। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है संडे का दिन और आपके पास ढेर सारी बातें लेकर के आ गई हूँ। अच्छा, मैं ना आपकी सेहत के बारे में बात कर रही थी और एक बहुत ही खास जानकारी आपको देती हूँ। आपने देखिए, तिल के बीज के बारे में तो सुना ही होगा, जो सीड्स होते हैं ना, ये जो तिल के, जो बहुत ही ज़्यादा हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। और ये ना, ये जो छोटे छोटे से बीज है ना, ये किसी खजाने से जो है वो बिल्कुल कम नहीं है। और मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि ये हमारी सेहत का खजाना है, और वो इसलिए क्योंकि इनमें पोषण का भंडार छुपा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया में जो तिल का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चाहे देखिए खाने में हो या आयुर्वेद के रूप में, दवा के रूप में ये हमें मिलता हो, तिल जो है अपने स्वाद और साथ ही साथ जो इसके इतने सारे गुण हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये सिर्फ हमारी बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व ही नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों से भी लड़ने में मदद करते हैं। तो तिल को अपनी रोज़ की डाइट में शामिल करना बिल्कुल चाहिए और ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अब फ़ायदा कैसा, ये तो साक्षी आपको बताएगी ना, तो वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज ढेर सारी बातें कर रही हूं आपसे और संडे का आज दिन है। अच्छा, मैं बात कर रही हूं तिल के बारे में। इसके ना बड़े सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले ना अगर बात करें तो ये कैल्शियम और हड्डियों के लिए ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि तिल के बीज की अगर बात करें, ये जो है इसमें कैल्शियम का बेस्ट सोर्स पाया जाता है। हड्डियों और दांतों का ये जो है काफी ज्यादा अच्छा एक सोर्स है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि मजबूत बनाता है हमारे हड्डियों को, हमारे दांतों को। कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए। नियमित रूप से अगर आप तिल खाते हैं तो ये हड्डियां मजबूत रहती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी काफ़ी जो गंभीर समस्या है, इसका खतरा भी कम होता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तिल के बीज खास तौर से फायदेमंद होते हैं। इनफैक्ट देखिए, तिल में मौजूद जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और साथ ही साथ सेसमोलिन जैसे जो तत्व है, ये भी दिल की सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और आर्टरीज में जमा होने वाले फैट को कम करके हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा घटाते हैं। तो है ना, कितनी छोटी सी चीज है और कितने सारे फायदे हैं। और अगर आपको भी ये फायदे चाहिए ना, तो बस आपको क्या करना है, इनको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना है। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. अब मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक देखिए चीज़ के बारे में, और वो है तिल. तिल जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये किसी खजाने से जो है वो कम नहीं है, और ये हमारे स्वास्थ्य का खजाना है, ये जो पोषण का भंडार इसमें मिलता है. इनफैक्ट तिल के बीज में एंटीऑक्सीडेंट की भरमार होती है जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, और इससे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो धीमे होता है. त्वचा चमकदार रहती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी कम होता है. इनफैक्ट तिल में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है, और ये कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से भी राहत देता है, और लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ आपको महसूस कराता है. तो इससे जो है आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है. तो बताइए फायदा किस में है, जंक फूड खाने में या कुछ ऐसी चीज खाने में जो कि आपके लिए सिर्फ फायदा आपको पहुंचा रही है, ये डिसीजन आपका है, साक्षी आपके ऊपर छोड़ती है. चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना मैं बात कर रही हूँ तिल की। तिल का तेल बालों और त्वचा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अमृत के समान बिल्कुल इसे कहा जाता है। ये बालों को मजबूत बनाता है, रूखापन दूर करता है और झड़ने की समस्या को कम करता है। ये त्वचा के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इसे खाना जो है, जब सब्जी बनाए तो उसमें आप तिल का तेल इस्तेमाल करें। जब आप देखिए नहा के आते हैं, मॉइस्चराइजर की जगह तिल का तेल लगाना शुरू कीजिए, देखिए आपकी जो त्वचा है उसमें भी काफ़ी फर्क आपको नज़र आने लगेगा। इनफैक्ट तिल में मैग्नीशियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी सुरक्षित है और फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। बिल्कुल खाइए और ज़रूर अपनाइए। तिल के जो बीज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट तिल के बीज में मौजूद जिंक और मैग्नीशियम स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करते हैं और ये नींद की क्वालिटी को बढ़ाते हैं और दिमाग आपका शांत रहता है। तो इसीलिए तिल के बीज को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। इन्हें आप सैलड में, स्मूदी में, खिचड़ी में, लड्डू या रोटी में मिलाकर खा सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से तिल खाएंगे तो ये न सिर्फ आपकी बॉडी को पोषण देगा बल्कि बीमारियों से बचने में भी मदद करेगा। तो अब डिसीजन आपका है क्या करना है, ये आज मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो देखिए इतनी सारे फायदे मैंने आपको तिल के बता दिए हैं, तो चाहे काले तिल हैं चाहे सफ़ेद तिल हैं, ज़रूर खाइए उनको। आप डाइट में किसी ना किसी तरीके से आप शामिल ज़रूर कीजिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: बाजार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ देखिए, संडे का आज दिन है और संडे वाले दिन आपके पास ढेर सारी जानकारी लेकर के आ गई हूँ। अच्छा, संडे वाले दिन हम एक और चीज़ करते हैं और वो है अगले दिन की और उसके पूरे हफ्ते की तैयारी, यानी कि मंडे और जो पूरा हफ्ता है ना ये आने वाला है उसकी पूरी तैयारी करते हैं। अब जो लोग अपनी डाइट पर अच्छा ध्यान देते हैं वो लोग क्या करते हैं भाई, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपना जो खाना है या फिर अपना जो चीज़ें हैं आप क्या करते हैं, पहले से ऑर्डर करके रखते हैं ताकि आपको नेक्स्ट डे प्रॉब्लम ना हो। यानी कि मेरा मतलब है यहाँ से इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, आजकल आप वेजिटेबल स्टॉक बना के रख सकते हैं ताकि आप कुछ भी अगर बनाए, वेजिटेबल स्टॉक आपने डाला उसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं। वेजिटेबल स्टॉक बना के आप फ्रीज करके रख दीजिए। और अगर आप कोई भी सब्जी बनाते हैं, कोई कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं या फिर आप नूडल्स बना रहे हैं तो आपको बस वो स्टॉक डालना है, नूडल्स डालने हैं और गर्म करके खाना है, उसमें कुछ और वेजीज आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ होता है कि आप फ्रोज़न जो प्योरी है वो भी बना के रख सकते हैं। तो ये सारी तैयारियाँ ना हम खुद कर लेते हैं और ये काफ़ी सही भी रहती हैं कि हम पहले अपनी तैयारियाँ पूरी करके रखें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, बात आती है कि हम जो इंग्रेडिएंट्स है ना उनको भी पूरा करके रखते हैं। ओवरनाइट ओट्स की अगर बात करें या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, हम जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी कट करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अगर आप पूरे हफ्ते की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, गाजर हो गई, इसको आप कट करके, बिल्कुल आप चॉप करके इसे एक तरफ रख दीजिए। आपको बीन्स लेनी है, इसको भी आप चॉप करके अलग कंटेनर में रख दीजिए। इसके बाद आपको जो है थोड़े से आपको क्या करना है, जो प्याज है वो आप बिल्कुल भी कट मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्याज और टमाटर होते हैं वो बहुत जल्दी से कट हो जाते हैं और इसे टाइम पर आप अगर कट करेंगे तो वो फ्रेश बिल्कुल रहते हैं। इसी के साथ साथ मटर हो गई, वो आप अलग से रख सकते हैं निकाल के, कि आप पहले से पहले उसको आप जो है यूज़ करने के लिए आप उसे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले से पहले अगर आप चॉप करके रखते हैं तो अच्छी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर आप टमाटर और अगर मैं प्याज की बात करूँ, उसका प्योरे आप बना सकते हैं। तो टमाटर प्याज का प्योरे बनाने के लिए बस आपको क्या करना है, आपको प्याज जो है वो लेनी है। अगर आप 4 प्याज ले रहे हैं 2 टमाटर लीजिए और उसके बाद प्याज को अच्छे से चॉप करके आपको एक तेल में, कढ़ाई में आपको प्याज को भूनना है। इसमें टमाटर को आपको, उसके बाद जैसी प्याज भुन जाए उसको टमाटर डाल देना है। मसालों में आपको जो है हरा धनिया, आपको लाल मिर्च डालिए, बस यहाँ पर आपको नमक नहीं डालना है। और इसको आप अच्छे से जब भून लेंगे, इसको अच्छे से इसकी फिर प्योरे बना लीजिए और इस प्योरे को हल्का रूम टेम्परेचर पे कर आप इसे जो आइस क्यूब आपकी ट्रे होती है उसमें डाल के आप इसे फ्रीज कर दीजिए। अब बस आपको तब क्या करना है, जब भी आप कोई सब्जी बनाने जाए थोड़ा सा उसमें आपको ऑयल डालना है, 1 टेबल स्पून आपको जो है या फिर घी या ऑयल डालना है। इसके बाद उसमें जीरा डालिए, ये जो आइस क्यूब आपने लिया है वो आपने जो जमा रखा है इसको आपको डालना है। इसमें ही आपको सारी जो वेजिटेबल्स सौते करनी है और उसके बाद आपको सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी। तो बहुत जल्दी जो है ये खाना बन जाता है। सैटरडे या संडे वाले दिन, ये जो वीकेंड है, आप ये सारी तैयारी करके रख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे पास आया है ओवरनाइट ओट्स का। देखिए, ओवरनाइट ओट्स बहुत लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सवाल हमारे पास आया है कि ओट्स जो है ये हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, ओट्स खाएं या फिर ग्रैनोला क्या जो सही है और ये वजन कम करने में मदद करेगा। तो चलिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको जरूर समझाऊंगी, इसके बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel like

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रीचार्ज मॉर्निंग। और इस रीचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आजकल देखिए हर कोई जो है वो फिट बॉडी और हेल्दी लाइफस्टाइल पाना चाहता है। डाइट को लेकर लोग पहले से काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जब बात वेट लॉस की आती है तो नाश्ते या स्नैक के लिए आप ओट्स या फिर ग्रैनोला को भाई चुनते हैं। अब दोनों जो है ये सुपर फूड माने गए हैं, दोनों फूड माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। दोनों में पोषण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका हमारी बॉडी पर बिल्कुल अलग अलग असर पड़ता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल। देखिए आपको जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होगा ताकि आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो स्पीड में बढ़ सके। और वहीं अगर आप गलत चुन लेते हैं तो आपका वजन तो कम होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बहुत स्लो हो या फिर हो सकता है आपका वजन और ज्यादा बढ़ जाए। तो इन दोनों में अगर आपको कुछ चुनना हो तो भाई मैं आपको बताऊंगी क्या आप चुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए। मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और आज है संडे का दिन, आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर के आ गई हूँ. तो एक सवाल हमारे पास आया है कि ओट्स ज्यादा सही है या फिर ग्रैनोला. चलिए ओट्स की बात करते हैं. ये नेचुरल रूप से लो कैलोरी वाला फूड है और ओट्स का एक बोल आपको कम कैलोरी में ही पेट भरा होने का जो एहसास है वो करा देता है, बेहतरीन लगता है. इसी के साथ अगर ग्रैनोला की बात करें तो देखिए ग्रैनोला में नट्स, शहद, तेल और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं, इसी वजह से इसकी कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो थोड़े से ग्रैनोला भी शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, जो वेट लॉस के सफ़र में आपकी जो जर्नी है इसमें कैलोरीज बढ़ाने के कारण ये बन सकता है. अब ओट्स का अगर देखिए अगर कमाल किसकी बात करें तो ओट्स में जो है वो सॉल्युबल फाइबर यानी कि जो बीटा ग्लूकेन पाया जाता है भरपूर मात्रा में होता है, ये हमारी डाइजेशन को थोड़ा सा धीमा करता है जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और आप बार बार अनहेल्दी स्नैकिंग से बच सकते हैं. वहीं ग्रैनोला जो है इसमें भी फाइबर होता है लेकिन इसमें मौजूद शुगर और फैट इससे पेट भरने वाले जो प्रभाव है उसको ये काफ़ी कम कर देता है. और ओट्स जो है ये ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखता है और बॉडी को ये इंसुलिन स्पाइक कम करने में मदद करता है और साथ ही बॉडी में जमे हुए फैट को ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्न कर पाता है. तो वहीं देखिए ग्रैनोला में मौजूद मीठे तत्व ब्लड शुगर को अचानक से तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, शरीर जिससे शरीर में आपके फैट जमा होने का एक रिस्क बढ़ जाता है. अब देखिए अब बात करते हैं कि कैसे पोषण कंट्रोल पर अगर आप ध्यान दें तो कुछ फायदा हो सकता है. पोषण कंट्रोल पर कैसे ध्यान देंगे इस बारे में बात करेंगे. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ पोषण कंट्रोल की। अब देखिए, पोषण कंट्रोल पे अगर ध्यान अगर आप देंगे तो वजन जो है वो टाइम के साथ कम जरूर होता है। और अगर अच्छी डाइट ले रहे हैं और टाइम पर ले रहे हैं और साथ ही कम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप नहीं खा रहे हैं, अगर आप बार बार खाते रहते हैं तो इससे कैलोरीज जो है आपकी बढ़ती ही रहेंगी। अब ओट्स की बात करें तो इसे पानी या दूध में पकाने पर ये फूल जाता है, जिससे कम मात्रा भी ज्यादा महसूस होती है और पोषण कंट्रोल करना आसान होता है। वही ग्रानोला एकमात्र, देखिए इसमें कम मात्रा में भी बहुत ज़्यादा कैलोरी देता है, क्योंकि ये जो खाना है इसमें जो है वो टेस्टी है और क्रंची भी होता है, और इसीलिए लोग अनजाने में ही ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। वज़न घटाने के लिए गट का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओट्स पूरी तरह से गट फ्रेंडली होता है और कॉन्स्टिपेशन और ब्लूटिंग जैसे समस्याओं को दूर करता है। तो वहीं ग्रानोला में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और ये आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ सकता है और गैस या एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। तो देखिए, अब इसके बारे में कुछ और भी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फ्री लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और मैं बात कर रही हूं ओट्स या ग्रानुला, क्या चुनना सही है. देखिए, दिन भर की एनर्जी के लिए ओट्स शरीर को जो है वो स्लो रिलीज एनर्जी देते हैं, यानी इससे आपको जो है वो दिन भर एक्टिव रहने में मदद मिल सकती है. और इसके जो अगर विपरीत की अगर बात करें तो ग्रानुला जो है वो इंस्टेंट एनर्जी तो देता है लेकिन कुछ देर बाद आपको दोबारा थकान और भूख लगने लगती है. ओट्स को आप अपने हिसाब से सब्जियां, ताज़े फल, दही, दालचीनी या चिया सीड्स मिलाकर बहुत ही आसानी से हेल्दी बना सकते हैं और खा सकते हैं. वहीं ग्रैनोला जो है वो अक्सर बाजार में रेडीमेड मिलता है और इसमें छुपी हुई जो शुगर है, ये प्रिजर्वेटिव जो है वो भारी मात्रा में इसमें होते हैं जो कि सही नहीं है सेहत के लिए. अब अगर आपका जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य जो है वो वजन घटाना है, तो बिना किसी शक के आप ओट्स ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद रहेगा आपकी सेहत के लिए. और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो जो आप खा रहे हैं, जो आपका रहन सहन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज भी करें इसके साथ साथ. और ओट्स जो है, अगर आप वज़न बिल्कुल अच्छे से जल्दी घटाना चाहते हैं तो ओट्स आपकी ज़रूर मदद करेगा. कैलोरी कंट्रोल, शानदार फाइबर सपोर्ट, बेहतर पाचन और साथ ही तेज़ी से फैट बर्न करने में काफ़ी मदद करता है. अगर आप ग्रानुला को कभी कभार सीमित मात्रा में खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप घर

0: का ही बना हुआ लो शुगर हो वो या बेहतरीन होगा। फास्ट जो है वो रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। ओट्स में थोड़ा प्रोटीन ज़रूर आप मिला लीजिएगा, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा असर अच्छा पड़ेगा। इसमें आप ग्रीक योगर्ट या थोड़े से नट्स आप डाल सकते हैं। साथ ही हेल्दी तरीके से वज़न घटाने के लिए रोज़ाना आप वॉक और योगा बिल्कुल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इससे भी जल्दी आपका वज़न कम होगा। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको जरूर बताऊंगी अब डिसीजन आपका है, ओट्स लीजिए ग्रैनोला। वैसे मैं तो कहूंगी ओट्स लेना शुरू कीजिए, ब्रेकफास्ट में लीजिए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आप इसे सब्जियों के साथ ले सकते हैं, आप इसको अगर फ्रूट्स के साथ लेना चाहते हैं तो वैसे ले सकते हैं, डिपेंड करता है जैसा आप पसंद करते हैं। बस इसी के साथ अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट्रा 107.8 FM, फील गुड फील।
1: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, ये हुई ना बात।

वेलकम बैक रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है यह हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल आऊंगी आपको पास ढेर सारी बातें लेकर के। तब तक के लिए रेडियो मानव रचना ढेर सारे प्रोग्राम्स लेकर के आ जाता है, इन प्रोग्राम्स को सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। हमारा शो हर बार बहुत स्पेशल होता है, लेकिन आज का शो बहुत ही ज्यादा

10 स्पेशल होने वाला है। ये मैं रिवील बाद में करूंगा, क्योंकि देखिए प्रोसेस होता है, पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, फिर कंपनी के बारे में बताया जाएगा। कंपनी जो है आज एक ऐसे अभिनेता की कंपनी है, मतलब जो बहुत फेमस है, शी इज एन एक्ट्रेस और काफी काम किया है उन्होंने, इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, उनकी कंपनी है। अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो कृपया करके व्हाट्सएप पर हमें बता दीजिए 8010781078 पर, और नहीं जानते हैं तो आराम से भैया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चिल करिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर तो मैं बता ही दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी लेंगे हम एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, फिर हम लेकर चलेंगे कंपनी, फाउंडर, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

0: प्यार होता।
1: एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी ये मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए इन गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है, अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला। बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैज वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील रे।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चले तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसका अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा, क्या मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारे कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीज़ें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीज़ें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी।

0: हटा दो।
1: दोस्तों अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेस होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा। क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। उसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको वहाँ की कोई चीज़ देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ आप जान चुके हैं अभी तक। चलिए आगे लेकर चलते हैं शो को और फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की कंपनी जो ब्यूटी टेक में डील करती है, इसका नाम है हाइफन। हाइफन एक इंडियन D2C डायरेक्ट टू कस्टमर स्किन केयर ब्रांड है, जिसको जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। इट वॉज को फाउंडेड बाई एन एक्ट्रेस एंड हर नेम इज कृति सैनन। यहाँ कृति सैनन का ये ब्रांड है एंड इसके साथ साथ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली। टीम जिसने मैककैफीन कंपनी स्टार्ट करी थी वो इसमें शामिल है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कृति ने सिर्फ ये नहीं किया कि मैं एक सेलिब्रिटी फेस की तरह आऊँगी, एंडोर्स करूँगी और हो गया मेरा काम। यहाँ पर वो एक्टिवली इन्वॉल्व रही, यहाँ पर हर एक चीज़ में, हर एक प्रोडक्ट में, उसके आइडिएशन में, टेस्टिंग में, ब्रांडिंग में, कस्टमर फीडबैक में। एंड कंपनी यहाँ पर कंबाइन करती है साइंस बैक्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ताकि मल्टी बेनिफिट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सके। इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक, डील करती है स्किन केयर में, D2C कस्टमर ब्रांड है, पर्सनल केयर में फॉल करता है अगर इसको हम सब कैटेगरी वाइज देखें तो। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। तो कृति बहुत पैशनेट रही है शुरू से ही अपने स्किन केयर को लेके। इन्होंने देखा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेवरल प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करते हैं डिफरेंट कंसर्न्स के लिए। हाइड्रेशन के लिए अलग प्रोडक्ट होते हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग, ग्लो के लिए अलग, एक्ने के लिए अलग, बैरियर रिपेयर के लिए अलग। और जब आप इन सारी चीज़ों को मर्ज करते हो, कंबाइन करते हो, तो ये बहुत एक्सपेंसिव और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ बनाते हैं। तो मैककैफीन के जो फाउंडर्स थे इन्होंने उनको रीच आउट किया और प्रोडक्ट्स बनाने का आइडिया दिया, अपना विजन शेयर किया, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने मल्टीपल इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये लेकर के आए एंड दे पुट एवरीथिंग इनटू वन फार्मूला। जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट एक साल जो है वो अपना दिया उस एक चीज़ को फॉर्मेट करने में, समझने में, प्रॉपर लॉन्च करने में। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कंपनी, क्यों ये कंपनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर इतना हमें क्लियरली समझ में आता है कि कृति को एक प्रॉब्लम नजर आई एंड प्लीज हेयर इट आउट। उन्होंने ये नहीं किया कि मेरा फेस बिक जाएगा या मेरे फेस को देख करके लोग खरीद लेंगे। उन्होंने सिंपली एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सोचा। एंड इन चीज़ों की वजह से कोई भी कंपनी अलग होती है कि आप एडवांटेज ले सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई एडवांटेज है तो यू शुड टेक दैट एडवांटेज। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर हैज़ टू बी समथिंग जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों के लाइफ में वैल्यू एड करें, जो इस कंपनी ने किया। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

0: बेकरार।
1: फील गुड, फील लाइव। मैं सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। कंपनी का नाम है हाइफ़न, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया इसका, क्या करती है हाइफ़न। ये आपको ओवरऑल हमने बताया, एक ओवरव्यू मिला है, लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात करते हैं। एग्जैक्टली स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। सनस्क्रीन्स हैं इनके पास, फेस सीरम्स हैं इनके पास, मॉइस्चराइजर्स हैं इनके पास, क्लींजर्स हैं इनके पास, लिप बाम्स हैं इनके पास, फेस मास्क हैं इनके पास, ठीक है। कंपनी सेल कहाँ कहाँ पर करती है? पहली बात अपनी खुद की वेबसाइट पर, दूसरा अमेजोन पर, तीसरा नायका पर, चौथा ब्लिंकिट पर, पांचवा जेप्टो पर, छठा फ्लिपकार्ट पर, एंड देर आर अदर क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। फिलॉसफी बहुत सिंपल है, वी यूज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन वन प्रोडक्ट कैन सॉल्व मल्टीपल स्किन कंसर्न्स। व्हाई आर वी डूइंग इट? तो ये इन्होंने सिंपल सा लॉजिक लेकर के आए और प्रॉब्लम जो है, मतलब आपके 3 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। अच्छी बात ये है कि मार्केट को बहुत अच्छे से समझा है कंपनी ने कि भैया क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स जहां से जो हो सके करो, हर जगह पर आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। ये इस कंपनी ने एक मंत्र जो है वो फॉलो किया। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक तो भाई एम कैफीन अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जो फाउंडर्स हैं उन्होंने उस चीज को एक्सेल कर लिया कि काम कैसे करता है, स्किन केयर ही पूरा सेगमेंट कैसे काम करता है, लोग क्या पसंद करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कृति सनन भी वहां पर आ गई और आई भी इस थॉट के साथ कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट्स नॉट जस्ट सेल द फेसेस, लेट्स सेल द सॉल्यूशन, जो मुझे लगा बहुत बहुत आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट पार्ट। तो ये एग्जैक्टली चीज है जो स्ट्राइक की। अच्छा, कंपनी स्टार्ट कैसे हुई? कृति को अपना स्किन केयर कंपनी स्टार्ट करनी थी, उन्हें करियर वहां पर बनाना था अपना, ऑलरेडी बॉलीवुड में है लेकिन उन्हें करना था वहां पर। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, उन्होंने पार्टनरशिप की विद द पीपल जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, एम कैफीन के फाउंडर्स। ओके, उन्होंने रिसर्च की इंडियन स्किन केयर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कंज्यूमर हैबिट्स के ऊपर, स्किन केयर पेन पॉइंट्स के ऊपर। देन उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया जिसमें उन्होंने कंबाइन किया मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रोडक्ट टेस्टिंग की बिफोर लॉन्च, एंड देन जुलाई 2023 में इस कंपनी को लॉन्च कर दिया। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे फाइनली फाउंडर्स के बैकग्राउंड की। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ हर बार की तरह कि आपको ये वाइब अच्छी लग रही है, शो आपको पसंद आ रहा है, शो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। लेट्स टेक इट अहेड, फाइनली बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। हाइफ़न हमारी आज की कंपनी है और एक चेहरा अभी तक आपको पता है, कृति सैनन। तो चलिए शुरुआत इनसे ही करते हैं। सो कृति सैनन इज अ को फाउंडर एंड चीफ कस्टमर ऑफिसर CCO ऑफ हाइफ़न। इनके एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने बीटेक किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से, नोएडा से। ओके, प्रीवियस बैकग्राउंड इनका एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, अभी एंटरप्रेन्योर भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। ये ब्रांड बिल्डिंग लेकर के आती हैं, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आती हैं, मार्केटिंग लेकर के आती हैं, प्रोडक्ट का फीडबैक लेकर के आती हैं। सो अनलाइक पैसिव सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स, शी इज पोजिशनड एज एन एक्टिव ऑपरेटर। मतलब होता क्या है कि पैसिव अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो एक तरीके से पैसा ले लो भाई, बनाओ तुम लोग, हम अपना चेहरा दिखाने आ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर एक्टिवली काम किया, प्रॉपर कस्टमर को समझा, कस्टमर की नीड क्या है उसको समझ के तब जाकर के जो है इन्होंने मार्केट में उतरे और उसको प्रोडक्ट को अपने बेहतर बनाते गए। दूसरा नाम आता है तरुण शर्मा, ये को फाउंडर हैं एंड CEO हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें तो को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, इनको जाना जाता है D2C ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ब्यूटी स्टार्टअप्स के लिए, स्केलिंग कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए, स्केलिंग में बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तीसरा नाम है वैशाली गुप्ता, इनका रोल है को फाउंडर एंड चीफ ग्रोथ ऑफिसर CGO। प्रीवियस एक्सपीरियंस को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, ब्रांड मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर सौरभ सिंगल का, रोल है इनका चीफ सप्लाई ऑफिसर। इनका बैकग्राउंड है मैन्युफैक्चरिंग का, ऑपरेशंस का और सप्लाई चेन का। एंड नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर मोहित जैन का, फाइनेंस समझते हैं, व्यापार समझते हैं, फाइनेंस को फिक्स करना इनका काम है। तो ये ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस देखते हैं प्लस फाइनेंस देखते हैं। तो ये भी जो है एम कैफीन जो है उस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं, एक तरीके से रह चुके हैं। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने मिला करके स्टार्ट किया, कुछ मार्केटिंग लेकर के आए, कुछ फाइनेंस देख के आए, कुछ सप्लाई को फिक्स करने का बेड़ा लेकर के आए, कुछ अपना अनुभव लेकर के आए, कुछ अपना चेहरा लेकर के आए, साथ साथ झील के साथ कि कुछ सीखेंगे। दैट्स हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड। तो ये है जी इनके बैकग्राउंड सबके। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

दुनिया का है मैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी गानों की चॉइस आपको पसंद आ रही है। तो चलिए जी, इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलते हैं। कंपनी का नाम है हाइफ़न। हम आपको कंपनी के बारे में बता चुके हैं, कब स्टार्ट हुई, क्या स्टेप्स रहे, कौन को फाउंडर्स हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, सब कुछ आपको पता है। थोड़ा बिजनेस मॉडल समझते हैं यहाँ पर। D2C प्लस ओमनी चैनल ब्रांड। इनका रेवेन्यू आता है वेबसाइट सेल से, मार्केट प्लेसेस से, रिटेल पार्टनरशिप से, क्विक कॉमर्स से। ओके, तो अच्छी बात यह है कि आपको किसी एक चैनल के ऊपर रिलाई नहीं करना है। यू शुड ओपन एज मैनी गेट्स एज पॉसिबल। अब यहाँ बात करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर्स की, कैसे कंपनी भैया ग्रो कर रही है। पहला तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेलिब्रिटी फाउंडर। कृति सैनन जो है बहुत बड़ा नाम है, और अगर वो किसी ब्रांड के साथ आ रही है तो इमीडिएट विजिबिलिटी बढ़ेगी उसकी। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ वो उसके साथ जुड़ी रही है शुरू से ही, बिल्कुल डे वन से, जहां पर एक थॉट, एक विजन, एक मिशन क्लियर था उनके पास, तो उस थॉट के साथ काम किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी। बहुत इन्वेस्ट किया इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटली अपने आप को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, रेगुलर लॉन्चेस करते हैं, फटाफट इनोवेट करते हैं। मौसम बदल रहा है, कोई नया इशू आया है, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट अगर हमारे एंड पर पॉसिबल हो सकता है तो। उसके अगला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग D2C एक्सपीरियंस, क्योंकि एम कैफीन भैया बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी अगर टीम इनके साथ जुड़ गई है तो इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन एक एडवांटेज आपके पास होता ही होता है जी। तो ये पांच हैं वो ग्रोथ ड्राइवर जिनकी वजह से कंपनी ग्रो करके यहां तक पहुंची है। अच्छा, इस कंपनी ने अलग क्या किया? सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इंग्रेडिएंट्स दे सोल्ड सॉल्यूशंस। कस्टमर्स को नहीं चाहिए भैया विटामिन सी, नायासिनामाइड एंड सेरामाइड एंड सो ऑन, दे सिंपली वांट अ क्लियर स्किन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी देखते ना हम लोग एड्स में आता है नायासिनामाइड है इसमें जी, इसमें विटामिन सी, हमें नहीं पता है, हमें इतना जानना है कि मेरी स्किन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मेरे को एक और स्ट्रेस मिल गया ना कि अब मेरे को ये समझना है नायासिनामाइड होता क्या है भाई और ये काम कैसे करता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटजी को समझा और समझा कि कस्टमर को यार सिंप्लीफाई करके देते हैं ना, कॉम्प्लेक्स क्यों करना। ये इन्होंने थोड़ा सा अलग किया जो इनके काम भी आया, दिखा भी। सो यार दैट इज एग्जैक्टली द थिंग जो इन्होंने अलग किया जिसकी वजह से ये आउटशाइन कर पाए। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शो को आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे कंपनी की USPs की। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम पर। कंपनी की यूएसपीज की अगर बात करें, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो पहला तो है कि मल्टीपल पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक बॉटल में मिल रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो कोई एक सिंगल हीरो इंग्रेडिएंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मिक्स करके प्रोडक्ट बेचना शुरू किया है, मतलब अलग अलग उसको लेबल ना लगा करके, अलग अलग आपकी पॉकेट के ऊपर उसको हैवी ना करके इन्होंने सिंपली किया गया है। ठीक है, लेट्स पिक वन प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व इट, और जितने इंग्रेडिएंट उसमें डालने डाल देते हैं जो सेफ हो। सेकंड है नेचर प्लस साइंस। कंपनी अपने आप को पोजिशन ऐसे करती है कि वी आर ड्राइव फ्रॉम नेचर्स गुडनेस, प्लस साइंस बैक्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हमारे पास हैं, सो इट अपील्स मॉडर्न कंज्यूमर्स, जिनको प्रोडक्ट चाहिए जो नेचुरल फील हो बट डर्मेट्स की दुनिया में जिसको सपोर्ट किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अफोर्डेबल प्रीमियम स्किन केयर। सो रेदर देन लग्जरी प्राइसिंग, उन्होंने टारगेट किया मिडिल सेगमेंट को, प्रीमियम क्वालिटी विदाउट लग्जरी प्राइसिंग। ये अगेन मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव होता है कि किसी लिए हो सकता है ये भी लग्जरी हो, बट कंपनी खुद को ऐसे पोजिशन करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिब्रिटी ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एक सेलिब्रिटी खुद इन्वॉल्व है जो सिर्फ वहां पर ब्रांड शूट करने के लिए नहीं आ रहा है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, को फाउंडर है, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर आता है, एक अपर हैंड मिल जाता है उस ब्रांड को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टेस्टिंग हुई है, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर फीडबैक, सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते देखा है और उसमें वो शामिल रही हैं। तो ये है जी, 2023 में ये कंपनी जो है लॉन्च की गई थी, 1 मिलियन से 4 मिलियन कस्टमर्स जो है इन्होंने विद इन 1 ईयर इन्होंने ग्रो किया था इतना। ठीक है, रिपीट परचेज रेट है एज पर कंपनी ऑलमोस्ट 60% जो है इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है जो कंपनी क्लेम करती है। 19,000 से ज़्यादा पिन कोड्स के ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने डिलीवर किए हैं, एंड 400 करोड़ जो है वो विद इन 2 ईयर्स इन्होंने ग्रॉस सेल करी थी। सो इट शो सो मच यार, इट टेल सो मच कि कंपनी ने एक्चुअली अच्छा काम किया है। तो ये थे हमारी आज की कंपनी जिसका नाम है हाइफ़न। आपको कैसी लगी बताइए हमें। फिलहाल मेरा वक्त है भैया शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा। अब चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो लेकर, हम मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज आरजे सागर।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहां होती है बातें आपकी हेल्थ के बारे में। और इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आ रहे हैं एसएसपी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल इस सीजन से जुड़ा हुआ है, बरसात का मौसम। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है आप इस भीगी भीगी बारिश के मौसम में जब अपनी बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जहां ये मौसम बहुत खुशी लाता है वहीं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लाता है, खास तौर पर से हेल्थ रिलेटेड। और इस बारिश के मौसम में बात करना जरूरी है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हाल ही में आए एक सर्वे के मुताबिक फरीदाबाद के ही सरकारी अस्पताल में हर रोज लगभग 2000 से ज्यादा पेशेंट्स बारिश से होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से जा रहे हैं ओपीडी में अपना इलाज कराने, और प्राइवेट का आंकड़ा तो इसमें है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश का मौसम कितनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। लेकिन आज जब इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उसमें हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना जरूर चाहेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अंशुल मित्तल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में। सबसे पहले सर मैं जो सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, बरसात का मौसम इतना ज़्यादा जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो बारिश में हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हो ही जाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो खांसी को लेकर होती है। इतने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक या फिर यंगस्टर्स को भी कहीं ना कहीं आप हर घर में देखेंगे एक आधा पेशेंट तो मिल ही जाता है जिसको खांसी आ रही हो, तो ऐसा क्यों होता है?
3: देखिए, बारिश के सीज़न में आपके अराउंड का वेदर चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम एक ड्राई सीजन में रहते हैं जहाँ पर तो हमें उसको एक्लोमेटाइजेशन हो जाता है। बारिश का सीज़न नॉर्मली 1 या 2 महीने रहता है, तो उस टाइम पे आपके आसपास के पेड़ चेंज हो जाते हैं, आपके आसपास हरियाली हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, आप घर में एसी में रहते हैं, बाहर जाते हैं ह्यूमिडिटी से एक्सपोजर हो जाता है, तो दिस चेंज इन वेदर खांसी को प्रिडिस्पोज करता है
2: जी।
3: तो इसीलिए इस मौसम में वायरल टाइप की खांसी हो जाना बहुत कॉमन है।
2: इसके साथ साथ कोल्ड बहुत लोगों को हो जाता है।
3: वही कोल्ड, खांसी, नाक बहना, छींके आना, सुबह के टाइम पे खांसी होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो इस सीजन में आपको मिलेंगे
2: जी। यानी पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है बारिश से, पर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो दोस्तों, ऐसी कुछ बातें हम भी करने वाले हैं आपके साथ। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा, नंबर बहुत आसान है 8010781078। बारिश में होने वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा हो रही है। आज प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसपी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे आप तक लेकर आए हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुल मित्तल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम की बात करें, वैसे तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में आपको घर में कहीं ना कहीं बीमारी भी मिल जाती है, क्योंकि आपने कहा ह्यूमिडिटी बहुत होती है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है, खांसी जुकाम बुखार बहुत कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ कई गंभीर समस्याएं भी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को एस्मा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो इनमें डिफरेंस कैसे पहचाने कि ये प्रॉब्लम्स अब हो गई हैं?
1: देखिए, सबसे पहले वायरल की तरफ चलते हैं। अगर आपको वायरल बुखार होगा तो यूजुअली आपको फीवर आएगा, खांसी के साथ आपको फीवर होगा, गले में दर्द होगा, बहुत वीकनेस महसूस होगा, बदन तोड़ बुखार टाइप के आपको सिम्टम्स आएंगे। वायरल का फीवर नॉर्मली 3 से 4 दिन रहेगा, उसके बाद फीवर सेटल हो जाएगा, लेकिन खांसी सेटल होने में आपको 2 to 3 weeks लग सकते हैं पूरी सेटल होने में। वायरल में जो आपको ध्यान देना है, अगर वायरल बुखार के साथ आपको कभी भी सांस फूलने की दिक्कत हो, शरीर पे रैशेज हो, या आपको लगे बहुत लो फील हो रहा है, तो ये सब डेंजरस साइंस हो सकते हैं, इसके साथ आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना है। एस्मा के मरीजों के साथ क्या होता है, वो एक एनवायरमेंट पे रहते हैं, जब जैसे ही उनका एनवायरमेंट चेंज होता है, उनके आसपास का एलर्जन लेवल बदल जाता है, एलर्जन का टाइप बदल जाता है, एलर्जन की क्वांटिटी बदल जाती है, जो भी जिस एलर्जन से वो सेंसिटिव है, तो वो एलर्जन जब आपके एनवायरमेंट में आ जाता है तो आपका बेसलाइन एस्मा बढ़ जाता है। इसको बचाने के लिए अगर आप रेगुलर इनहेलर्स यूज कर रहे हैं, अपने रेगुलर मेडिकेशंस पे हैं, तो ये नहीं होगा। एस्मा में यूजली ड्राई कफ होगा, जब आपको ब्रोंकाइटिस होता है, जो कॉमनली स्मोकर्स में बहुत कॉमन होता है, जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए बारिश के सीजन में ब्रोंकाइटिस होता है, उनको बलगम आने लगेगा। वो पीला है तो उनको साथ में इन्फेक्शन भी है, वाइट है तो इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ एलर्जी की वजह से है। ये सब कॉमन सिम्टम्स जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको तीनों में से क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, इस मौसम में धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास इतनी ह्यूमिडिटी रहती है, इतनी ज़्यादा, आप एसी के बिना बैठ नहीं सकते हैं, और ऐसे में आप भीग जाते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, सब डैम्पनेस होती है। अब ऐसे में एक पेशेंट जिसको एस्मा है, एस्मा की बात मैं इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी होता है और ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है कई बार, तो कैसे अपना ध्यान रखें?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप एस्मेटिक है तो अपना ट्रीटमेंट जो है उसको रेगुलर तरीके से लें, प्रिस्क्राइब तरीके से लें, रूटीन फॉलो करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको अपना एक्सपोजर कम करना है, तो आइडियली तो बारिश में बहुत ज़्यादा भीगना अवॉइड करना चाहिए, हो सके ना भीगे, अम्ब्रेला यूज़ करें। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे पार्क्स में, सुबह के टाइम पे पार्क में, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका आसपास का फ्लोरा फौना, जिसे हम कहते हैं पेड़ पौधे, बदल जाएंगे, तो आप मास्क यूज़ कर लें, तो ये सब चीज़ें आपको बेहतर जिंदगी जीने में हेल्प करेगी।
0: जी जी, तो बहुत सारी और भी बातें हैं हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कैसे आपको ये पता लगे कि आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपको खांसी जुकाम हो रहा है, ये नॉर्मल वायरल नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या असर दिखाती हैं वैक्सीन्स, ये भी हम जानेंगे, और बहुत से और भी सवाल कि अपने आसपास घर को कैसे ठीक रखें ताकि ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ना आ पाएं। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल और ऑल इज वेल में आज हम बात करें हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में, खास तौर पर से मॉनसून सीजन में. मॉनसून वैसे बहुत प्यारा सा सीजन होता है, लेकिन अगर किसी को सांस से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो और ज्यादा गंभीर होने के चांसेस बढ़ते हैं. चाहे वो बच्चे हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बुजुर्ग, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है. हर घर में खांसी करता हुआ कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा. आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनको खांसी जुकाम नॉर्मल तौर पर है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है. लेकिन इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, डॉक्टर अंशुल मित्तल. डॉक्टर साहब, निमोनिया के बारे में बात करते हैं. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक समय में इतनी खतरनाक हो जाती है, अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो जाती है. और कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका जो बेसिक चेस्ट इन्फेक्शन था वो निमोनिया बन गया है. सो ये कैसे पहचाने और किन पेशेंट्स को ये हो सकता है?
1: देखिए, निमोनिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ज़्यादा कॉमन होगा. अगर आप उम्रदराज हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपके पहले से कोई लंग की बीमारी है, आपके लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है या हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको पहले से ही कोई और कोमॉर्बिडिटी है, तो आपको ज़्यादा चांस है निमोनिया होने का. देखिए, मुश्किल सीज़न है. इसमें क्या डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, डायरिया, ये टाइफॉइड ये सब बहुत कॉमनली होते हैं, तो बुखार सभी का एक जैसा होता है, तो डिफरेंशिएट करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है. तो कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी बुखार हो अगर उसमें आपको बलगम पीला आ रहा है, आपका बुखार हाई ग्रेड है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है. कॉमनली क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ आदमी को नॉर्मल एक्टिविटी पे नहीं होती. आदमी को लगता है कि मैं एक स्टेयर चढ़ रहा हूँ, सांस फूल रही है, बुखार की वजह से है. लेकिन इसको आपको रियलाइज करना है. जितना जल्दी आप इस बात को रियलाइज करोगे और जितना जल्दी आप कंसल्ट करोगे, अर्ली ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली आउटकम आपका बदल देता है. बहुत लोग ओपीडी बेसिस पे ठीक हो जाते हैं, वार्ड्स में ठीक हो जाते हैं, आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटर्स पे जाने की, बायपैप के यूज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. तो आपको तीन साइंस बहुत ध्यान रखने हैं. फीवर हाई ग्रेड है, तीन दिन के बाद भी रह रहा है, आपको फीवर के साथ खांसी है जिसमें पीला बलगम आ रहा है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ है उन एक्टिविटीज पे जो आप नॉर्मली आराम से कर लेते थे,
0: जैसे आप वॉक कर रही हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है,
1: आप वॉशरूम जा रहे हैं आपको सांस फूल रहा है, तो ये जो एक्टिविटीज जो आप आम तौर पे कर लेते हैं जब आपकी इनमें सांस फूले, तो ये डेंजरस साइन है, रेड फ्लैग साइन है.
0: जी जी. इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, टीबी की भी बात करते हैं. ट्यूबरकुलोसिस अपने आप में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है और इस पर हम पूरा एक एपिसोड भी कर चुके हैं, जिसमें आपने बताया कि जिनका ट्रीटमेंट अगर छूट जाता है तो वो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है. बट अगर कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट ले रहा है और फिर भी उसको खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है, ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए?
1: देखिए, लंग्स का अगर आपको टीबी है तो आपका एक लंग का हिस्सा डिफेक्टिव है. आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन वो लंग का हिस्सा तो खराब है, तो ऐसा नहीं है आप टीबी का इलाज कर रहे हैं तो आपको और कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है. अगर आप टीबी का कर रहे हैं, आपको सेकेंडरी निमोनिया भी हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, कुछ भी हो सकता है. तो अगर आप टीबी का इलाज कर रहे हैं और आपको वापस से बुखार आने लगता है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा टीबी बढ़ गया है या मेरे टीबी की दवाई इनइफेक्टिव हो गई है. ये दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है जो चेस्ट का भी हो सकता है, और बरसाती बुखार जिन्हें हम कहते हैं उन्हें भी रूल आउट करना बहुत जरूरी है.
0: जी, यानी टीबी के पेशेंट्स को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा चाहिए. और जिन व्यक्ति को डॉक्टर साहब या तो डायबिटीज़ है या फिर उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, क्या उनमें भी ये मॉनसून में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है?
1: जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज है, डायबिटिक्स हैं, कि स्टेरॉइड्स पे हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट पे हैं, जिनको कार्डियक डिसीज है, या फिर जिनका लिवर कमजोर है, जिनके जो डायलिसिस पे हैं किडनी के, ये मरीज होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली इस सीजन में निमोनिया होने का रिस्क 10 टाइम्स हायर देन नॉर्मल पॉपुलेशन है.
0: जी, यानी ज़्यादा बढ़ जाता है. और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ. हम बात करेंगे आगे वैक्सीनेशन के बारे में. वैक्सीन बहुत सारे बच्चों को लगाई जाती है फ्लू की, और बहुत सारे बड़े लोग भी फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं. क्या ये इस सिचुएशन में काम आ सकती है? ये सवाल और इस सवाल के जवाब इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: Feel good, feel live. प्रोग्राम का नाम है All is Well, जिसे सपोर्ट किया है SSB Heart and Multi Speciality Hospital फरीदाबाद ने. और हम बात कर रहे हैं मॉनसून सीजन में होने वाली सांस की प्रॉब्लम्स के बारे में. ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती हैं, खास तौर पर से अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर हैं, किसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है. तो अपना ध्यान आपको हर सीजन में थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा. डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं. अभी कुछ समय से काफ़ी अवेयरनेस आई है कि फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो फ्लू बहुत जल्दी बच्चों को भी हो जाता है, बुज़ुर्गों को भी हो जाता है, और ख़ास तौर पर से वो लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर पैरामेडिकल, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वैक्सीन की. तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये वैक्सीन कब कब लगवानी चाहिए, किस उम्र से लगवानी चाहिए, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं?
1: देखिए, फ्लू का वैक्सीन हर किसी के लिए है. फ्लू का वैक्सीन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, आपकी कोमोर्बिडिटी, सबके लिए है. एक बात इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं फ्लू लग का वैक्सीन लगाया तब भी फ्लू हो गया. तो ये जानना जरूरी है कि फ्लू का वैक्सीन आपको नॉर्मल फ्लू से प्रिवेंट करने के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट सिवियर फ्लू इन्फेक्शन जो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है उससे बचाने की मंशा से लगाया जाता है. नॉर्मल फ्लू जिसमें आपकी नाक बहेगी या फिर आपको एक दिन बुखार आ जाएगा, आपको हल्की खांसी हो जाएगी दो दिन, उसके लिए फ्लू वैक्सीन टारगेट नहीं है.
0: अच्छा,
1: टारगेट इज फ्लू वैक्सीन, फ्लू जो सिवियर निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. तो फ्लू वैक्सीन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज है. यूजुअली हमारी कंट्री में सितंबर के महीने में फ्लू वैक्सीन आती है. कभी कभार फ्लू का स्ट्रेन चेंज होता है तो जनवरी फरवरी में एक और वैक्सीन आती है. तो यूजुअली हम कहते हैं साल में एक बार, लेकिन किसी किसी साल दो बार भी लगानी पड़ जाती है.
0: ओके, तो ये किसी भी एज में लगवाई जा सकती है. जैसे अगर बच्चे हैं, बच्चों में बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फैलती हैं, फ्लू तो बहुत जल्दी होता है, और एक बच्चा अगर बीमार स्कूल में गया है तो आधी क्लास अगले दिन बीमार हो जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में ये फ्लू की वैक्सीन क्या कोई साइड इफेक्ट भी देती है बच्चों को?
1: नहीं, बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, लेकिन दे आर लेस देन 0.01%. सो फ्लू वैक्सीन इज सेफ फॉर एवरीबडी एंड इट शुड बी टेकन बाई एवरीबडी, स्पेसिफिकली पीपल हु गो इन लॉट ऑफ क्राउडेड एनवायरमेंट, जिनको पहले से ही बीमारियां हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है
0: जी.
1: बाकी सब लगा सकते हैं, इट इज रिकमेंडेड बाई गाइडलाइंस फॉर एवरीबडी.
0: तो इसको जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्लू हो गया लगाने के बाद भी, तो क्या इसके बाद जैसे फीवर है अगर 102 आ रहा है तो थोड़ा कम आएगा या एक आधे दिन में ठीक हो जाएगा?
1: हाँ, आपका फ्लू की सिवियरिटी कम हो जाएगी. आपको सिवियर फ्लू होने का, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन, निमोनिया, ऑक्सीजन कम होना, सांस में तकलीफ होना, ऐसे होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है,
0: खांसी बहुत दिनों तक जो रहती है.
1: नॉर्मल फ्लू जिसमें दो तीन दिन खांसी, दो तीन दिन आपको बुखार रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा नहीं, लेकिन सिवियर फ्लू होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं.
0: कम हो जाते हैं, यानी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ेंगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे. डॉक्टर साहब, बहुत सारे घरों में बहुत सारी डैम्पनेस होती है, फंगस लगा होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखेंगे घरों में अपने आप सीलन आने लग जाती है और बारिश के मौसम में वो बढ़ जाती है. ये अगर किसी के घर में है तो ये कितना डेंजरस है, खास तौर पर से सांस की बीमारियों को लेकर?
1: देखिए, फंगल एलर्जी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. जो हमारे पास एस्थमेटिक्स आते हैं, जो सीवियर एस्थमा में होते हैं
0: जी,
1: उनको काफ़ी कॉमनली फंगल एलर्जी निकलती है
0: जी.
1: तो फंगल एलर्जी, फंगस हर जगह है, आपके लिए एक जगह पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉमनली डार्क डैम्प प्लेसेस, जैसे आपके लिफ्ट के शैफ्ट्स हो गए, अंडरग्राउंड बेसमेंट्स हो गए, बंद कमरे हो गए, जो स्टोर रूम्स हो गए जो महीनों बंद रहते हैं फिर अचानक खुलते, उन जगह कॉमन है. तो किसी को भी एक्यूट एक्सपोजर टू फंगस अवॉइड करना चाहिए. अगर आप ऐसी किसी एरिया में जा रहे हैं तो आप मास्क यूज़ कर लें, अपने स्टोर रूम्स खोलें तो उस टाइम मास्क पहन लें, स्पेसिफिकली इस सीजन में ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इस बीमारी को ABPA कहते हैं, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्पर्जिलोसिस.
0: ओके,
1: ये सिवियर एस्थमेटिक्स में होती है और एस्थमा की एक खासियत है वो लंग्स को खराब नहीं करता अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट. ABPA एक एस्थमा का ही टाइप है जिसमें आपकी लंग्स सिकुड़ जाती हैं, जैसे आपने फाइब्रोसिस सुना होगा वो हो जाता है. तो इसको दो तरीके, एक तो इलाज और एक अवॉइडेंस, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी. यानी फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं इस सीजन में, और बारिश की वजह से घरों में सीलन आना बहुत कॉमन है. इसलिए अगर आपके घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो प्लीज़ उसका ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा. बहुत सी बातें और भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं हूँ दीक्षा आपके साथ.

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अगर किसी व्यक्ति को बारिश के मौसम में हो रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वैक्सीन इसमें कोई बड़ा असर दिखाती है, और घर पर क्या रेमेडीज हैं जिनसे आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ऐसे कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुल मित्तल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और इनसे हम ऐसे ही सवालों के जवाब जान रहे हैं। डॉक्टर अंशुल, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी खांसी या उनका जुकाम जो है वो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। जुकाम फिर भी ठीक हो जाए पर कहीं ना कहीं खांसी जो है वो हफ्तों तक चलती रहती है, और मजाक में लोग एक दूसरे को बोल भी देते हैं कि भाई आप TB का टेस्ट करा लो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस मौसम में अगर खांसी 1, 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो ये क्या नॉर्मल वायरल है या फिर एक्चुअली में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है?
1: देखिए, अगर हम टेक्निकल पार्ट में चलें तो किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसको इवैल्यूएट तो कराना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जो इस सीज़न में वायरल खांसी होती है उसके बाद एक कंडीशन होती है, जिसे कहते हैं पोस्ट वायरल ब्रोंकियोलाइटिस।
0: ओके।
1: वो परसिस्ट कर सकती है, उस वजह से 3 to 4 weeks तक कभी कभार खांसी रह जाती है, जो हल्की हो सकती है, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी। खांसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सांस नहीं फूलना चाहिए। अगर आपको खांसी के साथ सांस फूल रहा है तो ये नॉर्मल पोस्ट वायरल खांसी नहीं है। आपको और कोई दिक्कत हो सकती है, खांसी के साथ आपका वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, आपको कॉन्टिन्यूस बलगम आ रहा है, तो ये पोस्ट वायरल खांसी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है वो पोस्ट वायरल के बाद हो गई है, उसे मान के हफ्तों तक महीनों तक बैठे रहते हैं और फिर जब आते हैं तो काफ़ी कुछ हो रखा होता है ऑलरेडी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस स्टेट में इलाज करना। और किसी भी कोई भी इलाज करो, अगर आप एक हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको ठीक तो कर सकते हो, 100% रिकवरी तो कभी किसी चीज़ की नहीं होती
0: जी,
1: तो कुछ डैमेज रह जाता है। तो अगर आपको पोस्ट वायरल 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो यू शुड कंसल्ट
0: जी। यानी पोस्ट वायरल 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी अपने आप में एक वार्निंग साइन दे सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अपने आप ही दवाइयाँ खरीद के खा लेते हैं।

0: जो स्पेक्ट्रम है वो खत्म हो जाता है, फिर आपको लगता है कि गलती हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, लोग वायरल समझ के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, उनको टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, फिर वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स खाना तो इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दूसरी बात एंटी एलर्जिक्स और कफ सिरप्स की, तो ये ओवरडोज में नुकसान करेंगे। इनिशियल फेजेस में आप चाहो तो एक आध दो दिन खा सकते हो, लेकिन अगर आपका इसके बाद भी परसिस्टेंट ऑफ सिम्टम्स है तो यू शुड गो टू योर डॉक्टर।
1: जी, यानी कफ सिरप दिन में कितनी बार लेना चाहिए? बहुत सारे लोग ना हर दो तीन घंटे में एक चम्मच पी लेते हैं।
0: देखिए, कफ सिरप्स जो हैं वो मैक्सिमम कोई भी कफ सिरप 30 ml से ज्यादा तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। उसके आप उसके ऊपर आप सिर्फ ओवरडोज कर रहे हो ना, उसको आपको कोई बेनिफिट होना है, मे बी सम साइड इफेक्ट्स ही होंगे, बेनिफिट नहीं होगा। काफी लोग कफ सिरप्स के बाद आते हैं, मेरे ट्रेमर हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, उसका रीजन होता है उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, कई कफ सिरप्स में एस्थैलिन होता है, उसके टर्ब्यूटालीन होता है, ये सब सॉल्ट्स आपको ट्रेमर्स स्पेसिफिकली ओल्ड एज वालों को घबराहट, टैकीकार्डिया, ये सब करने, हार्ट की गति बढ़ाने की, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। स्लीपीनेस, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कफ सिरप पिलाते जाते हैं, वो सोते रहते हैं, वो सोते हैं तो उनकी खांसी कम हो जाती है, आपको लगता है कफ सिरप से हुआ, ये तो सोने से हुआ है, आपने प्राइमरी प्रॉब्लम को ट्रीट ही नहीं किया। तो कफ सिरप एडजंक्ट ट्रीटमेंट है। एडजंक्ट का मतलब होता है उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है हमारे पास, 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन वॉट एवर दे हेल्प इन अ रिक्वायर्ड डोज दे आर नॉट टॉक्सिक।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी खुद से अपने डॉक्टर ना बने वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक कफ सिरप आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने कफ सिरप लिए, घर में रखे हैं, वो एक दो महीने बंद रहे हैं, मतलब आपने एक बार यूज़ करे और फिर बॉटल भरी हुई है, फिर आपने जब दो महीने बाद खांसी हुई फिर उसका इस्तेमाल किया, लेकिन जनरली एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप जो भी सिरप्स यूज़ कर रहे हैं वो एक महीने से ज़्यादा अगर खुल गए हैं तो ना यूज़ करें, क्या वाकई ये सच है?
0: बिल्कुल, आप अगर किसी कफ सिरप की बॉटल देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि जब तक बॉटल खुली नहीं है तब तक उसकी एक्सपायरी डेट ये है। जब आपने बॉटल खोल ली है तो उसके अंदर की दवाई 15 दिन, महीना, कई सिरप्स पे 2 months लिखा होगा, उसके अंदर आपको यूज़ करनी है, उसके ऊपर वो इनफेक्टिव भी हो सकती है और नुकसान भी कर सकती है।
1: जी, यानी आपको ये भी देखना है कि आपका जो कफ सिरप है या आप जो भी मेडिसिन बॉटल के थ्रू ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, उसकी कब तक वैलिडिटी है। एक बार अगर उसका ढक्कन खुल गया, आपने इस्तेमाल कर ली, तो वो कितने दिनों तक ठीक रहने वाली है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमारे घर में खांसी जुकाम होता है सबसे पहले स्टीम ली जाती है। स्टीम में कभी कोई लौंग डालता है, कोई थोड़ा सा मेंथॉल डाल देता है या यूकलिप्टस ऑयल वगैरह डाल दिए जाते हैं, ये कितना अच्छा रहता है, आराम तो मिलता है इससे, तो ये कितने टाइम में करना चाहिए और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा बेटर है?
0: देखिए, जो भी ये स्टीम एक अलग चीज़ है, नेबुलाइजेशन एक अलग चीज़ है, यहाँ मैं क्लियर करूँगा।
1: जी,
0: स्टीम जब आप करते हो तो आपके जो पार्टिकल बनते हैं वो 10 to 12 micron, 15 micron के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने पानी को कितना बॉइल किया है।
1: जी,
0: लंग्स में किसी भी पार्टिकल को जाने के लिए 5 micron से नीचे होना पड़ता है। तो जो भी आप स्टीम लेते हो लंग्स में नहीं जाएगी, और आपको समझना है कि लंग स्टीम लंग में चली जाएगी तो लंग्स जल जाएंगे। तो गॉड ने बनाया है कि स्टीम्स लंग में नहीं जाती। तो हमें हमेशा याद रखना है हम गले की खांसी से जूझ रहे हैं या लंग्स की खांसी से जूझ रहे हैं। स्टीम आपके सिर्फ गले को सूदिंग एजेंट की तरह काम करती है। जैसे आप स्ट्रेप्सिल्स खाते हो ना, तो स्ट्रेप्सिल्स या फिर कोई लोजेंजेस लेते हो तो वो सिमिलर है, बस आपने उसको स्टीम फॉर्म में मेंथॉल ये सब लेके वो आपके गले को सूद कर देती है, आपके गले में जो इरिटेशन है उसको थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देते हैं, तो आपकी खांसी रुक जाती है। तो जब आपको सोर थ्रोट है ये हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपको लंग से खांसी हो रही है, अगर आपको इन्फेक्शन है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, हम पहचाने कैसे कि खांसी, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं आप पहचान सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान कैसे पहचाने कि खांसी लंग की मेजर प्रॉब्लम है या फिर गले में वैसे ही?
0: देखिए, 2-3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बलगम आना, अगर आपको येलोइश बलगम आ रहा है तो मोस्ट लाइकली खांसी लंग से होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, क्या सोने से खांसी रुक जाती है? आपके गले में खांसी होती है, आप इरिटेशन से खांसते हो, अगर आप सो जाते हो तो आपकी खांसी एकदम से रुक जाती है, आप खांसी से उठते नहीं हो। अगर कोई बंदा खांसी से बार बार उठ रहा है नींद में से, तो ये चेस्ट से खांसी होगी, गले से नहीं होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो गले की खांसी होती है वो आपको खांसी से पहले गले में इरिटेशन महसूस होगा। जब आपके चेस्ट से खांसी होगी तो वो सडनली आएगी, आपको उससे पहले कोई प्री सिम्टम्स नहीं होंगे, आपको एकदम से आएगी। तो ये कुछ माइनर साइंस होते हैं जिनसे हम अलग करने की कोशिश करते हैं। इट विल नॉट ऑलवेज वर्क, बट Most of the cases it will work.
1: जी, और nebulization कई लोग खुद कर लेते हैं, बच्चों को कई बार करा देते हैं, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब पहले कभी किया होता है उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं, तो क्या नेबुलाइज करने का भी तरीका अलग अलग होता है?
0: तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए पहले बताऊंगा, 6 months के नीचे nebulization रिकमेंडेड नहीं है।
1: ओके,
0: क्योंकि 6 months के नीचे जो नेबुलाइजेशन जिस रिसेप्टर पे एक्ट करती है वो आपके ट्रैकिया में बने ही नहीं होते।
1: अच्छा।
0: उनकी डेवलपमेंट 6 मंथ्स के ऊपर होती है, तो 6 मंथ्स के नीचे आप कर नेबुलाइज कर रहे हो तो आप हार्म ज्यादा कर रहे हो, फायदा

0: कुछ नहीं होने वाला। सिक्स मंथ्स के ऊपर फिर भी हम नेबुलाइजेशन रिकमेंड कर देते हैं बच्चों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी।
0: दूसरी बात, नेबुलाइज करने के लिए आप गले की खांसी, फिर वही बात, गले की खांसी में नेबुलाइजेशन का कोई रोल नहीं है। नेबुलाइजेशन इज मेड फॉर कफ विच इज कमिंग फ्रॉम चेस्ट, जो छाती की खांसी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी बात, नेबुलाइजर्स में जो दवाइयां आती हैं वो मिक्स नहीं करनी होती। बहुत कॉमनली होता है लोग दो रेस्प्यू लेते हैं, दो दवाई लेते हैं, एक साथ डालते हैं और फिर नेबुलाइज कर लेते हैं। आपको ये समझना है, अगर कंपनी चाहती है आप मिक्स करो तो मिक्स करके ही देती, आपको मौका नहीं देती,
1: अलग
0: अलग दिया है इसीलिए क्योंकि वो अलग अलग नेबुलाइज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
1: तो दोनों में गैप होना चाहिए, थोड़ा सा
0: गैप होना चाहिए, मिक्स नहीं करना। कोई भी नेबुलाइजर मिक्स करने के लिए आप अगर पैकेट पढ़ोगे, आजकल रिकमेंडेशन आती है उस पर लिखा ही नहीं है मिक्स करने के लिए। दूसरी बात, आपका नेबुलाइजर साफ होना चाहिए, आपका नेबुलाइजर का फिल्टर क्लीन होना चाहिए। नेबुलाइजर पुराने रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनसे वो ऑन कर दे तो सिर्फ आवाज करते हैं,
1: अच्छा
0: भाप नहीं बनती है क्योंकि वो ब्लॉक्ड होते हैं। तीसरी बात, एक दूसरे का मास्क नहीं यूज करना है, आपको मेरा मास्क, मैं आपका मास्क, बच्चे का मास्क अडल्ट लगाए, अडल्ट का मास्क बच्चे लगाए, बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों की प्रिस्क्राइब मेडिसिन और अडल्ट की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मेजोरिटी केसेस में सेम हो सकती है, 12 साल के ऊपर सब सेम हो जाता है, लेकिन उसके नीचे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ दवाइयां बच्चों में यूज नहीं कर सकते। फिर नेबुलाइजेशन जब भी आप करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेबुलाइजर मास्क को अपने फेस पे टाइट बांधो, दवाई थोड़ी थोड़ी निकलेगी लेकिन ऐसा नहीं है सारी यहाँ से निकल रही है, इट इज इम्पॉर्टेंट। और जब भी नेबुलाइज करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ब्रीथ इन करके, आपने ब्रीथ इन किया, आप अपनी ब्रेथ को 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, जितनी देर आप होल्ड कर सकते
1: हैं अंदर जाए,
0: ताकि अंदर काम करे, अंदर गई आप उसको होल्ड किया तभी वो रहेगी। इंपॉर्टेंट नेबुलाइजेशन के साथ ये है, वो बॉडी में और किसी ऑर्गन पे नहीं जाती, वो आपकी लंग्स में जाती है, आपकी लंग्स में ऐड करती है और बाकी दवाई मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। और कोई भी नेबुलाइजर यूज करने के बाद मुंह गार्गल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दवाई मुंह में जमा हो जाती है, थोड़ी बहुत मुंह को जमा हो जाती है और वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसको गार्गल्स करके निकाल दें, क्योंकि अगर वो जमा रहेगी तो एक तो साइड इफेक्ट्स करेगी, सिस्टमिक ज्यादा जाएगी, दूसरी मुंह में छाले हो जाएंगे, टेस्ट लॉस बहुत कॉमनली नेबुलाइजर के बाद लोग, मेरे को टेस्ट खराब हो जाता है नेबुलाइजर, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मुंह की दवाई साफ नहीं करते। तो नेबुलाइज करने के कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉलाइज तरीके हैं, वो समझाने बहुत जरूरी है और समझने भी बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि एक आम इंसान को नहीं पता होता, नेबुलाइजर घर में होता है, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पर सबसे बड़ा पॉइंट मिक्स कर देते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो मिक्स कर देते,
0: पानी भी डाल देते हैं, एक्स्ट्रा पानी भी डाल देते हैं
1: जी, कि शायद भाप थोड़ी ज्यादा बनेगी। और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताई है कि आप सांस को होल्ड नहीं करते हैं, वो एक बहुत सारे लोगों में देखा है कि बस नेबुलाइजर लगा हुआ है और भाप जा रही है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही, उसका इफेक्ट फिर काफी समय बाद आता है। सो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक आम इंसान को नहीं पता होती है, इसीलिए एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ प्रोग्राम ऑल इज वेल में। डॉक्टर अंशुल, आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगी, अपनी चेस्ट को, अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए मानसून में या किसी भी सीजन में क्या टिप्स आप देना चाहेंगे सभी को?
0: देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, आप अलूम विलोम नॉर्मली हम सुनते हैं, सब करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: वो इंपॉर्टेंट है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। एक 3-ball स्पायरोमीटर आता है, जितने भी लोग कोमोरबिडिटी के साथ ओल्ड एज है आप उन्हें प्रमोट कीजिए, वो 3-ball स्पायरोमीटर यूज करें
1: जी।
0: आपके घर में किसी को भी खांसी है, आपके घर में किसी को भी वायरल है, ट्राई टू कीप उसको सेपरेट रखें बाकी सबसे, या फिर वो बंदा मास्क यूज कर ले जब वो बैठा है बाकियों के बगल में, अपनी वैक्सीनेशंस करा लें, अपनी मेडिकेशंस के साथ रेगुलर रहें, टेम्परेचर शिफ्ट जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आपको एसी में बैठे हो बाहर जाना है, थोड़ी देर आके अपने कमरे में बैठ जाइए पहले बाहर पंखे में, उसके बाद बाहर चले जाइए, ये आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनाएंगी चीजें। यही सब इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना है तो चेस्ट डिसीज कम होगा
1: जी। यानी कुछ छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान रखेंगे तो हर मौसम में आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, ना कि बीमारियों से परेशान रहेंगे। डॉक्टर अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल प्रोग्राम ऑल इज वेल में इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, दिस इज दीक्षा।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज मैंने अपने शो की शुरुआत ये वाला गाना गाकर क्यों की है। वैसे तो मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, इसलिए मैं अपने हर शो की शुरुआत एक गाने से ही करती हूँ। बट यस, आज ये गाना मैंने इसलिए गाया है क्योंकि हमारे शो के जो आज गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस शेफ हैं। ये बहुत ही शानदार शेफ हैं, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बहुत अमेजिंग मुकाम हासिल किए हुए हैं। सो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे विजनरी लीडर मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया के फूड इंडस्ट्री में इनोवेशन और एक्सीलेंस का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। ही इज द सीईओ ऑफ फेटर्निटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड मैनेजमेंट कंपनीज, एंड द माइंड बिहाइंड आइकॉनिक ब्रांड्स लाइक जोका, सिडेली, तुलसी, नुमाई, फायर्ड अप, मिर्च, ग्रेनॉस, मदुराई, ब्लिंक, योलो एंड हरमनोज। He has also been associated as CEO with Anardana, the biggest Indian restaurant chain in Delhi NCR, and Romeo Lane, the biggest high energy bar in India and Dubai. Iske alawa, inko Face of the Future India aur President Award 2016 se bhi sammanit kiya gaya hai by the Indian Hospitality Congress. He brings over 26 years of rich experience in world-class hotels and premium restaurants. So friends, स्वागत करते हैं a true culinary visionary and business leader, Mr. Manoj K. Rai ji का। So sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे show Creative Manch में।
1: Thank you very much for calling me.
0: So sir, किस तरीके से आपकी इस journey की शुरुआत हुई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे।
1: तो मेरी जर्नी जो है इस इंडस्ट्री में शेफ बनने की और बाद में जो बीच में बदना, दिस वाज नॉट अ प्लान्ड वन, इट वाज मजाक में बन गया। मैं आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा मन था, लेकिन स्पोर्ट्स सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी रीज़न से। मेरे साथ के लोग इंडिया के लिए खेले, मैं नहीं खेल पाया। तो जब मैं वाज लिटिल डिसहार्टन, तो मैं दिल्ली घूमने आया था जी। तो जब मैं घूमने आया तो ट्रेन में कोई मुझे मिल गए, हमारे फौजी अंकल, उन्होंने बताया मेरे बेटे ने होटल मैनेजमेंट किया है और वो बहुत पैसे कमाएगा।
0: अच्छा।
1: तो मैं वापस गया, मैं भी यही करूँगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे मालूम चला कि ये तो कहानी उल्टी थी, यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ता है
0: जी।
1: तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड।
0: ओके, सो जब आपने ये शुरू किया लाइक कॉलेज होटल मैनेजमेंट, और पहली तो बताइए आपने कहाँ से किया?
1: गोवा से।
0: हाँ जी। ओके, और तो फैमिली में किसी ने मना किया? पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंजीनियर डॉक्टरी ये चीजें करनी है, थोड़ा सा होता है ना माइंडसेट हर पेरेंट का।
1: मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा। तो मुझे तो बोला अरे पंडित का बेटा खाना बनाएगा।
0: अच्छा।
1: ये और तुमको कोई लड़की देगा शादी करने के लिए? तो ये तो पहले से मुझे मिल गया था कि ये नहीं हो पाएगा।
0: अच्छा।
1: तो जब मुझसे पूछा मेरे मामा ने क्या करते, मैं कहा शेफ हूँ। कह रहे हिंदी बताओ क्या बोलते हैं उसको, मैं बावर्ची। कह रहे यार तुम पंडित होके ये काम करोगे अब
0: जी।
1: अब तुम खाना पकाओगे? तो मेरे खानदान ने ही मुझे छोड़ दिया था 6 साल तक। जब तो मैं टीवी पे नहीं आया
0: जी, जी,
1: जब मैं टीवी पे आया था तो आई थिंक दे स्टार्टेड लाइकिंग मी अगेन
0: जी।
1: बट हाँ ठीक है।
0: तो वहां से लेकर टीवी तक का सफर किस तरीके से आपने किया, उसके बारे में बताएं।
1: बहुत हार्ड वर्क। मतलब जब मैं कॉलेज पढ़ने गया तो समझ में आया कि जो सुन के आया था वो यहाँ पे रियलिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
0: जी।
1: और हमारे टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 97, 98, 99 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, रेस्टोरेंट नहीं थे, होटल थे, होटल बहुत लिमिटेड थे। अब तो खैर हर एक कोने में 5-star होटल भी है, 4-star होटल है, रेस्टोरेंट है। हमारे टाइम ऐसा था नहीं, ना गूगल था, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ ये थी। तो वॉट एवर यू वॉन्ट डू, यू डू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सो वी वर स्केयर्ड कि एट लीस्ट जॉब मिल जाए हमारे को, मतलब कुछ कर लें। तो मैं बोला यार शेफ बनते हैं। मेरे को तो शेफ बोलने में भी एक दिन लग गए थे। मैं बोलता सेफ, ठीक है। तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई स्कूल में कि क्या शेफ बोलो, मैं सेफ बनूंगा सेफ। तो जब पता चला कि करना है तो वो बहुत ही हार्ड वर्क था, लेकिन जब आंख खुली समझ में आया कि यार अब आगे हैं तो पीछे हटेंगे नहीं
0: जी।
1: तो मैंने डिसाइड किया कि जो जर्नी मुझे 8 साल में करनी है, जो अगर कहते हैं कि ये इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको 7 साल 8 साल लगेंगे, मैं इतनी मेहनत करूँगी मैं 4 साल में पहुंच जाऊँगा। तो मैंने मेहनत को डबल किया अपने, और बहुत दिन रात मेहनत की, दिन रात मतलब 18 घंटे 19 घंटे। मुझे याद है वो टाइम भी आया था जब मैं बहुत कम एज में आई बिकम

0: लिटिल बिगर पोजीशन पे आ गया था, मैं नंबर टू पे आ गया था। नंबर टू पे आने के बाद भी आई हैड अ गोरा शेफ फ्रॉम कनाडा, जिसकी जो उसके टाइम पे मैंने 9 महीने तक आई वर्क विदाउट टेकिंग अ डे ऑफ। तो वो मुझे बोलता था, भाई तू क्या करता है? बोला सर मुझे बड़ा बनना है। तो वो जोश था बड़ा बनने का उस टाइम पे
1: जी।
0: और फिर बट आई थिंक 2000 में मैंने करियर शुरू किया था और 2004 में आए बिकम एग्जीक्यूटिव शेफ। 4 साल में जर्नी पूरी कर ली मैंने अपनी, मतलब पोजीशन वाली
1: जी।
0: तो वो स्ट्रगल था बस, बट मजा ही बताया स्ट्रगल करने में।
1: मतलब अब जिस मुकाम पर आप पहुंच गए हैं, तो जब ये वक्त याद करते हैं तो कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा होता है। यू नो इट्स साउंड्स वेरी इंस्पायरिंग व्हेन आई थिंक अबाउट कि मैंने ऐसे मेहनत की। व्हेन आई सी आज के जो लड़के हैं, तो मैं उनको इसे इतना बोलता हूँ, भाई अगर तुम मेरी मेहनत के 30% भी काम कर लोगे ना
1: जी,
0: तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे।
1: बिल्कुल।
0: देखो मैं ये नहीं कहता हमने जो किया बहुत अच्छा किया, हमने जो किया अपने नॉलेज में किया, गलत भी किया सही भी किया, गाइडेंस नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, ना कोई रेफरेंस था जैसे आज है। तो उस वक्त पे मेहनत बहुत की, आज तो हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छे मेंटर्स भी हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इंस्टा है, गूगल है, प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैज बिकम वेरी चीप, तो यू गॉट लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बहुत सबसे अच्छी बात बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो लोगों को आज उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती
1: जी। सो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो सर, जैसे हम देखते हैं आजकल, आपने बताया आप प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली आपने कॉलेज से, उसके बाद इतना स्ट्रगल किया, बट अब जो ये रील्स का एक ज़माना चला हुआ है, हम देख रहे हैं बहुत लोग खाना बनाने की रील्स डाल डाल के फेमस हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक, किस हद तक सही है आपके अकॉर्डिंग?
1: मैम देखो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ भी और नहीं भी हूँ। हूँ इसलिए कि शायद ठीक है, वो अपने पैशन को दिखाते हैं, बट मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि जो दिखता है वही सच नहीं होता। मतलब जो मैंने दिखाया या किसी ने दिखाया सच नहीं होता। सच के पीछे बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद वो रील बनी, अच्छा कंटेंट है तो वो चल जाती है, बट वो कंटेंट को यू कैन नॉट टेक एज अ नॉलेज। मेरा ये मानना है, नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अब ये मुझे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जिस बिजनेस में मैं हूँ, जब मेरे क्लाइंट मुझे भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैं क्या बन जाएगा, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या ये है क्या, एंड दे हैव नो क्लू कि वो उन्होंने मुझे क्या भेजा।
0: ओके,
1: ठीक है। सो नाउ इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग मी एंड टीचिंग मी कि दिस इज व्हाट दे वांट। जिसको इस इंडस्ट्री का अता पता नहीं था, जिसने अपने ही रेस्टोरेंट को खोलने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर किया या कंसल्टेंट हायर किया, वो आपको एक महीने बाद सिखाता है। तो मैं आपको ये सुना कहानी, बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे, तो मेरा एक बॉस था, जब मैं इंडिया आया तो मैंने कंपनी ज्वाइन की, उस कंपनी के बारे में बताऊंगा नहीं भाई आपको
0: जी।
1: तो उसने मुझसे पूछा ये क्या है, किसी बहुत ही स्पेशल महंगी सब्जी के बारे में पूछा जो उसने, और वो बहुत बड़ी, वो मेरा बॉस था
0: जी।
1: तो मैंने कहा ये इसको ये बोलते हैं, एस्पैरागस बोलते हैं। करे क्या होती है? मैंने कहा ये इंग्लिश वेजिटेबल है, बहुत अच्छी होती है, ऐसा है वैसा है। करे थैंक यू मनोज भाई, सिखाया मुझे आपने। चार दिन का वो मुझसे पूछता, मनोज भाई आज ना अच्छा पका नहीं एस्पैरागस,
0: अच्छा
1: आज एस्पैरागस अच्छा पका नहीं है
0: जी।
1: तो मैं खूब हंसा, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि सीख के सिखाओ मत,
0: बिल्कुल
1: सीख के बताओ।
0: बहुत ही एक फनी मोमेंट भी है,
1: ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट है। वैसे तो बहुत सारे फनी मूवमेंट लाइफ के अंदर हमने किए हैं, देखे भी हैं, बहुत है देखे। मतलब मैं आई वॉज वेरी क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत ही बिगड़ा हुआ वो था मैं, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट।
0: अच्छा,
1: मैंने बहुत लोगों की रैंकिंग की अपने हाथ काम करते हुए।
0: अच्छा, तो सर आपका जैसे 26 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आप बता,
1: 26 साल का ही है,
0: 26 साल का ही है। चलिए, सो हम तो कहते हैं इंशाल्लाह बहुत आगे और बढ़े, लेकिन इसमें कोई कोई पल ऐसा हो जो जहाँ पर आपने एकदम हार मान ली हो, कुछ ऐसा समय आया आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगे कि नहीं वो चीज़ जो मैंने सोची है वो नहीं हो पाएगी?
1: 3 बार।
0: अच्छा,
1: अपने करियर के स्टार्टिंग में जब मैं करना, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। वो टाइम हार्ड वर्क इसलिए था क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कमाना मजबूरी थी, लेकिन एक टाइम ना ऐसा लगा कि यार नहीं हो पाएगा ये मेरे साथ के लोग ना उस टाइम पे ये आपके कॉल सेंटर का बड़ा वो चल रहा था, एंड दे वर पेड वेरी हैंडसमली। मतलब अब हम जहाँ 2-2.5 हज़ार पे काम करते वो 10 हज़ार पे काम करते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे लगा यार मैं भी छोड़ दूँ नौकरी एक बार, मैं भी कहाँ फंस गया, क्या बाबूची उनके लगा हुआ हूँ, ना जिंदगी है, रात दिन सुबह शाम लगा हूँ। तो आई थॉट, तो मैं एक बार किसी बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू चला भी गया लाइन छोड़ के, मतलब टू बी रेस्टोरेंट मैनेजर
0: जी।
1: फिर मैं बैठा इंटरव्यू में, तो उसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उससे बायोडा मांग लिया, बोला भाई 6 रुपये खर्च किए, लाया बायोडा दे, मैं जहाँ था वहीं ठीक हूँ। देन अगेन आई केम बैक एज अ शेफ। इमैच्योरिटी, मोर ऑफ इमैच्योरिटी दैट आई कुड सी। फिर दो बार ऐसा हुआ कि एक बार मैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए गया, शायद मुझसे कुछ गलती हुई, व्हेन आई वाज एट माय प्राइम आई टुक अ डिसीजन टू ओपन माय रेस्टोरेंट। बोलते ना सेलिब्रिटी शेफ बनने के बाद रेस्टोरेंट खोलने का मजा अलग आता है
0: जी जी।
1: तो वो एक विश्वास किया किसी के ऊपर, और फिर जब रेस्टोरेंट खोलने बैठे तो मन चला कि उसके पैसे नहीं थे और मैं हो गई, खुद हो गया बैंकक्रप्ट। तो हुए, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप किसी ब्रांड को बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी एस्पैरागस का
0: जी,
1: वो ब्रांड आज इंडिया का टॉप ब्रांड है।
0: अच्छा,
1: और उस ब्रांड को बनाने वाला आदमी मैं ही हूँ, और मैं एक खुल के बोलता हूँ क्योंकि जब मैं आया तो वो ब्रांड वॉज नो वेयर। आज लोग उस बारे में बात करते हैं, आज की 400-500 करोड़ की वैल्यूएशन लगाते हैं, तो मुझे पता है वो ब्रांड कहाँ से कैसे पहुँचा,
0: ठीक
1: है। लेकिन जब वो ब्रांड बनना शुरू हुआ, जब उस ब्रांड पर पूरा काम किया, जब वो ब्रांड बन चुका था ना, तो मुझे ये बताया गया कि यार अब नए स्टाफ की जरूरत नहीं है, अब हम पुराने जो लोग थे ना थॉट प्रोसेस वाले वही कराएंगे। सो वो पुराने और नए लोगों के कॉम्पिटिशन में ना वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो बना के उस ब्रांड को खड़ा करने की थी वो खराब हो गई। और जब वो खराब होने लगी ना, तो आपका आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए, देयर हैज़ टू बी इमोशनल अटैचमेंट दैट यू डू, और हमें कौन करेगा मोटिवेट इस एज के अंदर, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार जिस ब्रांड को मैं खड़ा कर रहा था, एंड आई कुड हैव डन मच बेटर, शायद मैं इसको बीच में छोड़ के चला गया बिकॉज आई वॉज मेड द सर्कमस्टेंसेस वेयर आई हैड टू कम एंड लीव द जॉब दो इट वॉज नॉट इजी फॉर मी बिकॉज जो ओनर थे ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टॉप मी इन द कंपनी बट ओनर फर्क क्या होता है ना कि ओनर के साथ डेली काम नहीं करते
0: जी.
1: आप काम करते हैं टीम के साथ
0: बिल्कुल.
1: और अगर आपकी टीम के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे
0: जी.
1: मैंने कहा कि हर काम के लिए लोग करते हैं वेट एंड वॉच. हमारी जो इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री ये वेट एंड वॉच नहीं होती बिकॉज आप जो भी काम करते हैं ना उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप काम करते हैं वो करते हैं आप किसी भी गेस्ट का इमोशन बाय करते हैं
0: जी.
1: कोई भी गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में आया है वो अपना वो पैसे उसके हैं वो अपने इमोशन के एक्सपीरियंस लेने आया है. अगर आपने वहाँ गलती कर दी वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा. मैं क्यों चाहूँ कि जो भी गेस्ट मेरे रेस्टोरेंट में आ रहा है वो उसका एक्सपीरियंस गलत हो मेरी वजह से या मेरी टीम की वजह से या मेरे अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से. ऐसा क्यों नहीं है जो मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर कैलिबर है दिखाने का या करने का वो मैं हर उस गेस्ट को दिखाऊँ वो बोले यार दिस इज व्हाट इज अ प्लेस. ऐसे बनता है ब्रांड. तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप चाहते हैं बहुत कुछ करना बट आपके हाथ शायद नहीं हो पाते उस काबिल. अच्छा इसलिए मैंने डायमंड ले लिया जल्दी.
0: जी मनोज जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप हमें बता रहे हैं इस फील्ड के बारे में. सो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब जो एक सेलिब्रिटी शेफ का जो टैग है आपके साथ जुड़ा हुआ, ये किस तरीके से आपके पास आया या आप खुद इस तक पहुंचे, आपने कितनी मेहनत की, इसके बारे में हमें बताइए।
1: देखो मैं ना, मुझे ये पता भी नहीं कि ये टैग मुझे कब लग गया।
0: अच्छा,
1: मुझे नहीं आइडिया इसका, मुझे टैग कब लगा। आई थिंक 2014-13 में शायद चीज़ें शुरू हो गई थी, मतलब नॉट एज सेलिब्रिटी शेफ बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छा मच्छा काम कर रहे थे। वो सेलिब्रिटी शेफ बोलना, क्योंकि मैं कुणाल, हम इकट्ठे काम करते थे, कुणाल मैं रणवीर इकट्ठे काम करते थे, तो वो तो हमें भी नहीं मानता कि ऐसा भी कुछ टैग होता है। वो किसी दिन किसी जगह छप गया और वही चीज़ रेप्लिका होती गई, सेलिब्रिटी शेफ हर पेपर के कटिंग पे या कहीं भी आपको इंट्रो किया। तो वो किसने दिया मुझे, आज मैं ढूंढ रहा हूँ बंदे को कि किसने मुझे टैग दिया। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, खुद ढूंढ रहा हूँ कि भाई तू कौन था जिसने मुझे सेलिब्रिटी शेफ बोला। मैं इस वर्ड से बहुत अहमियत नहीं रखता। सेलिब्रिटी शेफ बहुत अच्छी चीज़ होती है बनना, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं एक जो वर्ल्ड शेफ आई थी, मैं उससे बहुत बड़ा खुश हूँ। डॉक्टरेट में डिग्री से अच्छा है वही है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका काम ही आपकी, जैसे डॉक्टर है वैसे शेफ है, तो आप शेफ बोले या सेलिब्रिटी शेफ बोले, शेफ बोलेंगे तो आई विल बी वेरी ग्राउंडेड, वॉन्ट बी सेलिब्रिटी शेफ देन आई हैव टू बी, मेरे को अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छी गाड़ी चलानी पड़ेगी, टीवी पे आना पड़ेगा, 1 मिलियन फॉलोअर होना चाहिए मेरे पास,
0: बिल्कुल
1: है ना। वो मैं उसे पीछे हट चुका बहुत पहले। अब
0: मतलब आपका उसमें इतना,
1: मैंने 6 साल पहले आई हैव बिकम वेरी लो प्रोफाइल जानबूझ के।
0: अच्छा, सो सर कभी ऐसा, मतलब आप बहुत हैंडसम लुक के हैं, तो कभी कुछ मॉडलिंग या इन चीजों में इंटरेस्ट रहा आपका, या कभी कुछ ऐसा मौका मिला करने के लिए? क्योंकि एक जब टैग जुड़ता है ना सेलिब्रिटी शेफ, तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे निकल के आती हैं, कभी कोई एड ब्रांड।
1: मैं आपको बड़ी एक ऐसी इंटरेस्टिंग बताऊं जो शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे बोली नहीं आज तक। सो जब मैं दुबई था तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम था अपने लिए, तो मैंने बहुत अच्छी फिटनेस भी बॉडी बनाई थी, मतलब आई वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग एंड लकली आई वाज डूइंग टीवी, तो मैं जी सोनी पे काम कर रहा था वहाँ पे। आई डिड अबाउट 45-50 एपिसोड किए मैंने उसके ऊपर। तो जी के जो CEO थे मनोज जी, आई थिंक ही मेट मी एट वन ऑफ द इवेंट एंड मुझे बोला कि यार तू ना यू मेक योर पोर्टफोलियो एंड अप्लाई फॉर अ मॉडलिंग। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा सर क्या बात कर रहे, मैं तो खाना पकाता हूँ। तू कर, एक बार तू कर
0: जी।
1: तो मैंने आई

0: did my portfolio, I send it to few, he gave me some contact, मैंने उनको दिया, तो मुझे ना बड़े सारे ऐड के और मॉडलिंग के वहाँ लगे, तो मैं जब वहाँ लगा तो मैं हंसने लगा कि मैं करूँगा मॉडलिंग, खैर जो भी है, तो आई डिड सम प्रिंट मॉडलिंग जिसमें बैंक से ज़ारा है, दूध की कंपनी थी, सब चीज़ों की। इस बीच में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि आई वॉज इंजर्ड और मेरे को एक फ़ोन आता है कि आर यू अवेलेबल फॉर द शूट फ्रॉम दिस अप्रैल, टाइम था 2021 मुझे 2021 का, फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स।
1: अच्छा
0: ठीक है, और मैंने उनको ना बोल दिया, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि गेम ऑफ थ्रोन होता क्या है।
1: जी
0: ठीक है, और जब मैंने मैसेज दिखाया बेटी को तो उसने मुझसे एक तरह बात नहीं की।
1: ओह माय गॉड,
0: 10 मिनट का फाइटिंग शॉट ऑन डेजर्ट विद द मेन एक्टर,
1: जी
0: वो सपोज टू बी मी, और मैंने उसको एक मिनट बोला नहीं मैं आई एम नॉट फ्री। तो चीजें हुई भी, बट आई डोंट टेक थिंग्स एज दैट, जो है वो है, काम आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई।
1: जी जी जी, मतलब आप थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल टाइप के भी है ना, कि आपको नहीं पता वो चीजें क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में भी नहीं पता था।
0: नहीं,
1: नहीं
0: तो बिहार के लड़के को कहां क्या पता होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या होता है, आप उसे पंचायत के बता देंगे पंचायत के भी।
1: और जैसे आप बोल रहे हैं कि जो ये सेलिब्रिटी टैग है आपको पता ही नहीं है कैसे दे दिया, किसने दे दिया,
0: मुझे नहीं पता
1: बिल्कुल। ये तो खासियत है ना फिर आपकी,
0: ये तो आप सेवा करो ना, लोगों की सेवा करो आप सोसाइटी को दो, जिससे मेरी एनजीओ चलती है
1: बिल्कुल,
0: गरीब बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए वाइफ करती हैं,
1: आप
0: वहाँ करो ना जहाँ पे आपको मन शांत रहे, जहाँ चीजें देख के लगे कि यार हमने कुछ सोसाइटी को वापस दिया है लाके।
1: मतलब आप इस चीज के अलावा आपका एनजीओ भी है और बहुत बच्चों की आप सेवा भी कर रहे हैं।
0: जब मैंने गरीबी देखी तो किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा
1: जी,
0: तो हमें लगा कि जब हम कुछ लायक हो जाएंगे तो हम शायद दो बच्चों की किसी वक्त की रोटी खरीद लें या दे पाएं, तो शायद थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी खुशी मिलेगी हमारे को।
1: बिल्कुल, और अगर ईश्वर ने इस काबिल बनाया तो डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत से लोग मतलब सोचते भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने सोचा और आप लोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, वेरी इंस्पायरिंग।
0: थैंक यू मैम।
1: सो मनोज जी, आप बहुत से ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से इन सबको मैनेज किया जाता है, मतलब रेस्टोरेंट्स और बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो।
0: हाँ, तो बेसिकली अभी करंटली जो एक कंपनी है फर्टिनिटी फूड्स का मैं सीईओ हूँ, इस बीन अभी ईयर नाउ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था इनके साथ, मेरे दोस्त ही हैं अच्छे, वेरी यंगस्टर, वेरी डायनेमिक पीपल, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका एक ब्रांड है जोका, इन्होंने 70-80-90 के करीब खोला था, then they had a plan, so what they do is they create a brand and they sell the franchise, aur iske baad jab main join kiya to I think they already had built a brand, kai tulsi hai, namai hai, fired up hai, usko humne ongoing execute kiya aur bahut acha result aaya, matlab it came out really well, tulsi has been doing phenomenally well, fired up is doing very good, namai is doing very good, ab tum tulsi ko leke ja rahe hain india ke bahar, now we opening in US, now opening Zoka in US, now we are opening Nomai Pan India, Tulsi Pan India, ये सारे brand को मैं manage करता हूँ with the team, and अच्छा रहता है, मतलब this is expertise, this is not a very big restaurant, 70-80 का restaurant है, छोटे restaurant हैं, चलते अच्छे हैं, low cost हैं, तो उतना फर्क है नहीं, मतलब I keep enjoying what I do.
1: मतलब इंडिया में तो बहुत आपने सेटल कर दी चीजें, अब बाहर उन्हें ले जाने का भी प्लान,
0: अब यूएस साइन कर चुके, काम शुरू हो गया।
1: जी जी जी जी, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। सो इसमें कैसे ये जैसे कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी मेंटेन किस तरीके से आप लोग करते हैं?
0: देखो मैम, ये ना ये बहुत ही बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है
1: अच्छा
0: समझाने के लिए, तो क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है, आप पहले व्हेन यू मेक मेन्यू, तो मेन्यू आने के बाद आप देखते हो कि किसके लिए बेस्ट शेफ कौन होगा, देन आई हैव अ कॉर्पोरेट शेफ, देन आई हैव अ रीजनल शेफ, जो सडन यू नो प्री ओपनिंग से लेके पोस्ट ओपनिंग तक उनके साथ खड़े हुए ट्रेनिंग करते हैं, देन वी हैव अ स्ट्रांग रेसिपीज, एंड देन वी कीप डूइंग लॉट ऑफ ऑडिट्स, मतलब कॉर्पोरेट टीम्स कीप मूविंग आउट, वी कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन कमेंट्स, कि जो कमेंट आते हैं रिव्यूज गेस्ट के, चाहे जोमेटो पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे वो कमेंट्स कार्ड पे हो, वी कीप थिंक क्या होता है, एंड जो ऑडिट करते हैं व्हेन वी गेट द रिपोर्ट एवरी मंथ, तो वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या कॉस्ट हो रही है, इफ़ इस कॉस्ट इज अंडर कंट्रोल, मतलब आपका चीज़ ही चल रही है, इफ़ इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, इसकी मतलब आपकी शॉर्टेज हो रही है, और हर चीज़ का अपना एक फॉर्मेट है टू मेंटेन इट, तो दैट यू गेट टू सी कि कहाँ पे क्या है, क्या रेट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वेंडर मैनेजमेंट, अगर आपका अच्छा वेंडर मैनेजमेंट है, आपकी अच्छी स्किल है, तो स्पॉटेज कॉस्ट कंट्रोल विल बी ऑलवेज अंडर कंट्रोल।
1: ओके
0: हाँ जी।
1: और सर, जैसे किसी को नहीं इस लाइन की नॉलेज है, उन्हें अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है,
0: ना करें
1: ना करे
0: आजकल तो हर बंदा रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है।
1: जी जी जी ये तो
0: 100 खोलते हैं 80-10 बंद होते हैं।
1: बिल्कुल, तो मतलब इसमें आप क्या सलाह देंगे हमारे?
0: सलाह ये दूंगा कि भैया अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो प्लीज उससे खोल के ना घर की रूटीन ना चलाएं।
1: ओके,
0: यू शुड हैव अनदर बिजनेस टू रन योर फैमिली, रन योर हाउस। रेस्टोरेंट खोले, हायर अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट। आपके पास साल 6 महीने का फंड होना चाहिए टू इन्वेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट कि आपने आज खुला आज ही पैसे कमा रहे हैं लेके चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। शुड हैव अ गुड बैकअप, क्योंकि जो पैसे आप लगा रहे हैं वही आपके हार्ड अर्न मनी है। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है फंड, उसके इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और थर्डली आप कहाँ खोल रहे हैं
1: जी।
0: आपकी जेंट्री क्या है, आपने क्या उस जगह के बारे में लोगों से पता किया कि वो लोग खाते क्या हैं, क्या है, कैसे है। हमें तो जगह मिलती है एंड यू जस्ट ओपन द रेस्टोरेंट। आजकल तो हिंदुस्तान में रियल एस्टेट हैज़ बिकम अ बिगेस्ट स्कैम। आप आइए, मेरा दुकान खोलिए, मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है। अब वो पैसे तो दे देगा दुकान खोलने के, लेकिन वो वहाँ फुटफॉल नहीं है, तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट वो कौन देगा फिर?
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री।
1: और जब तक मतलब साइड बाय साइड आप इसे कर सकते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। एक और बात मेरे जहन में ये आ रही है कि हमारे सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे, लाइक शिल्पा शेट्टी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इन लोगों ने भी अपने रेस्टोरेंट्स की चेन स्टार्ट की हुई है। सो क्या सेलिब्रिटीज का इसी में इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है?
1: नहीं, कोई इंटरेस्ट तो शायद इंटू में तो ये बोलते हैं कि हमें खाने का बड़ा शौक है जी। अब सेलिब्रिटी तो योगा की इतनी बड़ी टीचर हैं तो खुद ही खाना कम खाती हैं, ठीक है, फेम है, लोग अपना फेम यूज़ करते हैं। आई थिंक सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट बेस्टियन इज डूइंग वेरी गुड। सचिन सर का रेस्टोरेंट क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ ही हैज़ रेस्टोरेंट, वो तो गॉड ऑफ है, तो उस पर तो मैं कमेंट कभी नहीं करूँगा। विराट का रेस्टोरेंट है वन एट कम्यून, आई थिंक कुछ रेस्टोरेंट के हैं जो दे मैनेज बाय देमसेल्फ, बाकी दे रन ऑन फ्रेंचाइजी। सो आई एम श्योर विराट हैज अ बिग नेम, वन एट कम्यून उसकी जर्सी का नाम है, वन एट कम्यून पे एनीबडी कैन पुट मनी ऑन हिम, सो दे गेट ऑल इन्वेस्टर्स, दे गॉट ऑल फ्रेंचाइजी, सो दे मेक ऑल मनी आउट ऑफ दिस, दे डोंट ऑपरेट, दे डोंट ऑपरेट बिंग 100%। आई थिंक मुझे नहीं पता विराट कोहली अपने रेस्टोरेंट में आखिरी बार खाना खाने कब गया होगा।
0: बिल्कुल,
1: अभी अब देखें तो बेस्टियन बॉम्बे था सेलिब्रिटी का, गॉट क्लोज फॉर फ्रॉड, 55 करोड़ का फ्रॉड हुआ उस रेस्टोरेंट में।
0: अच्छा,
1: तो क्यों हुआ ये मैं नहीं बताता ना, आई एम वन टू, ठीक है, लोग खोलते हैं, चलता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि अजीत सिंह ने एक रेस्टोरेंट खोला है कैकड़ा में जो 40 रुपए का खाना बेचता है। That's a genuine celebrity who has done this.
0: जी।
1: चाहे गौतम गंभीर हो।
0: अच्छा।
1: जब वो थी सांसद तो उन्हें एक कैंटीन खोला जहाँ पे 10 रुपए में खाना मिलता है।
0: 10 रुपए में, बिल्कुल।
1: आपने ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, आप रेस्टोरेंट खोले, बिजनेसमैन है, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, एंड आई थिंक वी ऑल फील गुड अबाउट थिंग्स। अभी युवराज सिंह ने रेस्टोरेंट खोला गुड़गांव में, उसी उनका नाम लिया गया, पैसे किसी और लगाए, बट रेस्टोरेंट युवराज सिंह के नाम पर चलता है, बट वेन यू गो एंड सी द बिजनेस इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट।
0: जी।
1: सो मैंने समझा ना कि ये बिजनेस उतना आसान है नहीं। अब सेलिब्रिटी है, एट योर नेम इट माइट क्लिक्स एट सम टाइम, बट टू सस्टेन द रेस्टोरेंट यू रियली नीड टू हैव अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट कॉन्सेप्ट।
0: जी, तभी वो एक मुकाम तक पहुंचे
1: एंड अ ग्रेट प्रोडक्ट।
0: बिल्कुल,
1: अगर अच्छा खाना अच्छा ड्रिंक नहीं है तो
0: हाँ फिर तो कोई क्यों ही जाएगा। बिल्कुल। और सर अभी जैसे आपने रेस्टोरेंट्स का बताया, बिजनेस की भी बात हो गई यहाँ पे, अब अगर किसी को एक्चुअल में शेफ बनना है, तो हमारे लिसनर्स अभी सुन रहे हैं काफ़ी, हो सकता है इसमें कई लोग इसमें करियर ढूंढ रहे हों, सो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करें कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं कुछ ऐसे, और क्या रास्ता है ट्वेल्थ के बाद, क्या किस तरीके से वो जाएं इसमें?
1: देखिए, बेस्ट कॉलेज का तो मैं किसी के लिए नाम नहीं लूँगा, आई थिंक जो इंडियन गवर्नमेंट के IHM इंस्टीट्यूट्स हैं पूसा वाले, इनके साल में एक बार इसकी इंटरेस्ट होती है, पैन इंडिया इनके इंटरेस्ट होते हैं, अच्छे सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, ग्वालियर, सब अच्छे कॉलेज हैं। डिपेंड ये नहीं करता किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। ऐसे भी कॉलेज हैं जैसे औरंगाबाद IHM है, और महंगे महंगे कॉलेज भी हैं। आई थिंक शेफ बनने की इंडस्ट्री में जो भी यंग मुझे सुन रहे हैं ना, शेफ बनने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैशनेट है। आई थिंक जो हमारे टाइम में नहीं था, जो इनके टाइम पे है, कि हमारे टाइम पे शेफ वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, दिस टाइम दे आर रिकग्नाइज्ड, ऑलवेज दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट एज अ बिग करियर बूस्ट। मतलब जब से टीवी शो आए हैं और सब शेफ बड़े बने हैं, तो इनके पास तो बहुत बड़ा करियर है, और जिस लेवल के रेस्टोरेंट्स इंडिया में खोल रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, या इंटरनेशनल इंडिया हमारी, स्कोप बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। बट मेरा एक मानना है कि आप शेफ बने, ये करियर बहुत अच्छा है, बहुत ही हार्डवर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा बताता है, मतलब यू नो खाना पकाना अपने आप में एक कला है,
0: कला
1: मतलब, मैं तो बहुत इसको एंजॉय करता हूँ। पेशेंस रखें, अपने बेस को बहुत क्लियर करें। आजकल लड़के बहुत जल्दी बहुत बड़ी पोजीशन के लिए सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ, पहुँचें, बिल्कुल पहुँचें, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करें कि आप जब वहाँ पहुँचें तो आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग हो
0: जी,
1: क्योंकि आगे पहुंचने में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पहुंचने के बाद जो कंपटीशन बढ़ता है, 10,000 से 1,00,000 की सैलरी बहुत आसान है, 1 से 2 लाख सैलरी बड़ी आसान है, 2 से 3 लाख सैलरी थोड़ी डिफिकल्ट है, और 3 से 4 लाख सैलरी बहुत डिफिकल्ट है
0: जी।
1: तो हर उस मुकाम में पैसे पैसे बहुत हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, इंडियन शेफ को तो बहुत डिमांड मार्केट में।
0: अच्छा।
1: मतलब आपको बताऊं कि इंडियन शेफ्स हैज बिकम द टॉप प्रायोरिटी फॉर द वर्ल्ड, मतलब

0: और आप ऐसे घर में बहुत सी बार ऐसा तो होता होगा आप बनाते हैं, या लास्ट कब बनाया था आपने कुछ?
1: लास्ट कब बनाया था मतलब महीने में एक बार,
0: कभी फैमिली को खुश करने के लिए?
1: नहीं, फैमिली महीने में एक बार। तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट भी और भी रेस्टोरेंट हैंडल करता हूँ। तो अभी रेस्टोरेंट हैंडल कर रहा हूँ मैं दिल्ली में ही है, आइवरी के नाम से, उसका नया मेन्यू है। तो उसके नए मेन्यू का ट्रायल भी मैंने खुद ही करवाया था, उसको कुछ दिन में लॉन्च है।
0: अच्छा।
1: तो अभी मैं यहाँ से जाके मैं खाना पकाने वाला हूँ।
0: अच्छा।
1: सो मैं महीने में एक बार अपना हाथ पक्का किचन में ले जाता हूँ, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैं
0: जी
1: व्हाट्स माय बैकग्राउंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही,
1: जरूरी भी है ना, वरना हाथ नहीं चलेगा फिर।
0: जी जी जी। और सर आपका फ्यूचर विजन क्या है?
1: मेरा तो मैंने ना अभी अभी एक मार्केटिंग कंपनी खोली अपनी।
0: अच्छा।
1: मैंने अपनी एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। मेरा लोगों ने मैंने देखा लोग ना आजकल एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे रील डालनी डालनी।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं कहा मैं भी ये काम खोलता हूँ।
0: अच्छा।
1: तो हमने अभी 4 महीने पहले कंपनी खोली है कथा लैब के नाम से, एंड वी आर डूइंग सोशल मीडिया फॉर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉर्पोरेट्स। और मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने समझा कि जो बाकी लोग सोशल मीडिया संभाल रहे हैं उनके पास F&B का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वो कर रहे हैं लेकिन दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस F&B। मेरे पास क्या है कि मैं वो एक्सपीरियंस है तो मैं शायद वो काम अच्छा कर पाऊंगा। और मैं अब वैसे कंपनी के ओनर मेरी बेटी है, मैं उसके बिहार पे जॉब करता हूँ उसी कंपनी में, ठीक है, मतलब उसके बिहार पे काम करता हूँ मैं। मेरे 2 co-founder और भी हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया, आई एम एंजॉइंग अ लॉट। प्लस फर्टनिटी के जो भी नए ब्रांड चल रहे हैं तुलसी वगैरह वगैरह लॉन्च के लिए रेडी हैं, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। इस साल शायद मैं अपना ब्रांड भी लेके आऊँ।
0: अच्छा।
1: हाँ, शायद इस साल के मिड तक मैं अपना ब्रांड भी लेके आ रहा हूँ।
0: वाओ, हमें वेट रहेगा।
1: बहुत छोटा सा बहुत ही इतिहास को वापस लेके आने की थोड़ी सी कोशिश है, मतलब इतिहास तो नहीं बोलूंगा लेकिन
0: मतलब मुझे लग रहा है कुछ आपके अपनी साइड का,
1: लेकिन वेज। हाँ, वेज तो मेनली आप मान लीजिए बनारस लखनऊ और बिहार का कुछ लेके आ रहा हूँ मैं।
0: अमेजिंग, हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा सर
1: जी।
0: और हम तो गॉड से यही प्रे करेंगे कि जल्दी ये आए। और
1: नहीं नहीं, अभी बेसिकली नाम हम सब रजिस्टर हो गया है, सब पे काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो को फाउंडर, मेरा जो पार्टनर है, ही मेट एन एक्सीडेंट, तो उसका आई एम वेटिंग फॉर रिकवरी टू बी हैपन। आई थिंक मई जून जुलाई तक आई विल बी एबल टू स्टार्ट माई फर्स्ट रिटेल। सो बहुत छोटी सी जगह बनाएंगे, और जो असली चाट, तो बेसिकली इज अबाउट चाट, जो चाट खाने को मिलती है आपको बनारस में या बिहार में या
0: लखनऊ में,
1: तो वही के कारीगर, वही के पत्तल में, वही के सकूरे में सब कुछ, इवन चाय बनेगी अंगीठी के अंदर। तो वी वॉन्ट टू गेट दोस एरा ऑफ 1780s का एरा वापस लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग देखेंगे कि पहले कैसे खाना बनता था।
0: बिल्कुल।
1: लोग खड़े हों उस चीज को बनते हुए देखें, पेशेंस रखें, ताकि चीज अच्छी है। और ये सबके लिए है, दिस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दिस इज फॉर एवरीवन हु इज ऑन द रोड, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो करोड़पति लेडी हो, ये सबके लिए है यहाँ पे ऑप्शंस।
0: अमेजिंग कंसेप्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कुछ ऐसा आने वाला है। बिकॉज NCR में मुझे ऐसा लगता है जो ये चाट है ना वो कुछ अलग ही कर देते हैं, छोले प्याज सब कुछ डल जाता है, वो एक फील खत्म हो जाती है।
1: मैं ना मेरे बचपन के कुछ टेस्ट मेरे अभी तक दिमाग में हैं, जो मैं शायद बिहार जी गया नहीं है, खा नहीं पाया है। और मैं अब चाट नहीं खाता, आई डोंट ईट चाट।
0: अच्छा।
1: मतलब मैं खाना भी नहीं खाता, चाट तो छोड़ दिया। ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगा कि शायद वो एक चीज है जहाँ पे हिंदुस्तान को वो चीज़ से आप अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: और मुझे लगता है कि मैं शेफ होने के बाद भी इतना छोटा सा काम क्यों खोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जहाँ भीड़ है वहाँ खाना है, और अच्छा खाना जहाँ है वहाँ फिर से भीड़ आएगी।
0: बिल्कुल।
1: ठीक है। तो भीड़, अच्छा खाना और वो पुराना इतिहास दिखाना का जो संगम है वो आएगा इलाहाबाद से, जहाँ मैं रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत मतलब ये सुन के बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि आप एक ऐसी चीज लाने वाले हैं और हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा।
1: नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे आपको,
0: बुलाएंगे उसके बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब एक लास्ट में, मतलब लास्ट तो नहीं कहूंगी, बहुत मजा आ रहा है, मन करे ये चलती रहे बातें। बहुत डिफरेंट टॉपिक है आज बहुत ही, आप जैसे आपने समय निकाला हमारे लिए, क्योंकि अभी तक मेरे शो में यहाँ पे म्यूजिशियंस, मॉडल, फैशन डिजाइनर, इवन डांसर्स आल्सो, तो सब आ चुके हैं, बट सेलिब्रिटी शेफ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। शेफ, यस। तो सर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे जो रियलिटी शोज हैं, तो अभी हमने देखा मास्टर शेफ ही आई थिंक है ना शेफ के लिए, तो आपको क्या लगता है ऐसे और शोज होने चाहिए, क्योंकि सिंगिंग डांसिंग के तो हम बहुत देखते हैं, नहीं होने चाहिए? अच्छा, ऐसा क्यों?
1: वो रियलिटी में रियलिटी नहीं है ना।
0: बिल्कुल, अच्छा, मतलब वहाँ भी सेम ही चीज है, जो म्यूजिक डांस में वही उधर भी है।
1: वो रियलिटी नहीं होती है।
0: अच्छा,
1: इट्स जस्ट अ शो, एंजॉय लाइक अ नॉर्मल बहुत चीजें नहीं बोलूंगा, मतलब सारे मेरे दोस्त यार हैं, वो अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझे रिमांड पे ले लेंगे।
0: जी जी जी, चलिए ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं। और सर आपको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं, हमें उनके बारे में बताइए।
1: नहीं, मुझे ना इसके बारे में बात करने में बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि जो भी अवार्ड मिले, कई फ़ोन आया सर आपको अवार्ड मिल रहा है, मैं दे दे भाई। तो मैं बॉम्बे था तो मुझे किसी ने फिर से फ्यूचर अवार्ड दे दिया, मेरे साथ दो तीन बड़े शेफ भी थे, एक हरपाल था, सारांश था, बहुत अच्छे लोग थे। तो मुझे आया कि सर आपको ना वी वॉन्ट यू टू कम एंड टू बॉम्बे टू टेक दर अवार्ड, डीवा पाटिल का था अवार्ड। तो ना मुझे क्यों दे रहे फिर से फ्यूचर में, तो मैं तो नहीं सर, आप तो अभी यू आर कमिंग आउट रियली वेल, पीपल नो अबाउट यू, आप 2014 की बात है, मैं रेस्टो खोल रहा था अपना। तो मैं कहा ठीक है, अवार्ड दे देते हैं अवार्ड, अगर कोई अवार्ड दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेने में कोई दिक्कत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: एज लॉन्ग एज आपने पैसे नहीं पे किए। तो
0: जी,
1: फिर मैं दिल्ली आया तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, कहाँ मिल रहा है? मैं कहा यहाँ मिलते हैं। तो मैं इसके बारे में इसलिए बात नहीं करता कि रिकग्निशन, मुद्दा ये कि जितने भी अवार्ड मिले उसमें लोगों ने बुलाया आपको और अवार्ड दिए, तो जब आपको अवार्ड मिल रहा है ना तो आपको लगता है कि हाँ शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा
0: जी,
1: जिसके लिए आपको लोग फोन करके बुला रहे हैं अवार्ड लेने के लिए। मैंने कभी किसी से अवार्ड नहीं मांगा कि भाई मुझे अवार्ड ला के दो तो मैं आऊँगा। मतलब ठीक है, वो अवार्ड आएगा, एक दिन आप फोटो लेके डालोगे इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे या अपने उस पर, उसके बाद वो इट्स अ शो मोमेंटम एट योर हाउस, नोबडी इज गोइंग टू लुक एट थिंग्स। मेरे घर पे तो मेरे अवार्ड दिखते भी नहीं मेरी बीवी के सामने, मतलब शी हैज़ गॉट सो मच अवार्ड। तो ठीक है, मतलब हाँ यू फील गुड, बट जैसे होता है, मतलब द वे इट कम्स आई टेक इट, आई डोंट फील वेरी गुड अबाउट द सेम, मतलब आई फील गुड अबाउट सेम, बट ऐसा नहीं कि मुझे हर साल अवार्ड मिल रहा हो या मैं यहाँ जाऊँ उसको, जिसने याद किया दे दिया, दे लिया हमने अवार्ड।
0: जी, बट आपकी इन बातों को सुन के लग रहा है कि आप सच में बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने जैसे बताया आप बिहार से हैं, तो वहाँ के लोग हम देखते हैं बिहार यूपी के बहुत ही ऐसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा उन्हें चमक धमक का शौक भी नहीं होता।
1: नहीं, मुझे तो है। अच्छा। मुझे है, अब हो गई है
0: जी,
1: अब हो गई है। अब ना अभी क्या है, अब बच्चे बोलते हैं, बेटी बोलती है जा रही हूँ बहंगे जाना, ये बहंगे जाओ, ये बहंगे जाओ, ये घड़ी पहनो, ये लेके जाओ, तो अब लगता है हाँ ठीक,
0: मतलब वो आपको स्टाइल करते हैं।
1: नहीं शायद मैं खैर आई वॉज डूइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर, तभी बना था, मैं मॉडलिंग के भी कर नहीं पाता, बट ठीक है, अच्छा लगता है करने में।
0: नहीं बिल्कुल, जैसा बच्चे बोले फैमिली बोले वो तो जरूर उनके लिए करना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: सो आपने अभी अपनी वाइफ का भी जिक्र किया, सो उन्हें कैसा लगता है कि उन्हें भी शौक है खाना वाना बनाने का?
1: अच्छा, शी इज बेटर कुक देन मी।
0: अच्छा,
1: शी इज बेटर देन, शी इज बेटर देन मी,
0: मतलब वो आपसे ज्यादा
1: बढ़िया। हाँ, अच्छा खाना पकाती है। मैं रेस्टोरेंट का खाना पकाता हूँ, जिससे तो मैं ये कहता हूँ कि मैं वो कमाता हूँ जिससे घर का घर चलता है
0: जी,
1: वो खाना पका जिससे घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो सर अब लास्ट में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस शो को सुन रहे हैं उसमें हर एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे?
1: यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं क्या मैसेज दूँ लोगों को सुनने के लिए। जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी को करियर बनाना है तो आई एम श्योर आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, जो यंगस्टर जिनको हु वांट टू परस्यू, हु वांट्स टू गो एंड डाइन एट द रेस्टोरेंट, अंडरस्टैंड कि जब हम बोलते हैं कि जल्दी ला खाना, ये नहीं है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है. तो वी एज अ गेस्ट शुड बी एबल टू एड्रेस देम वेरी नाइसली. वी शुड बिहेव नाइसली. रेस्टोरेंट में जाके वी आर नॉट किंग एंड देयर आर नॉट आवर स्लेव्स. मेरा ही माना है हिंदुस्तान में बहुत कमी है, हिंदुस्तान में बहुत कमी होती है, हिंदुस्तान में लगता है वी आर किंग एंड देयर आर स्लेव्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्डली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. खाना खाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट जाइए, रील कम देखिए, रील को अपना वो ना बनाए, क्या बोलते हैं, ट्यूटर. ठीक है, रील इज नॉट ए ट्यूटर. एंड आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ स्टफ ऑन वेब वेर यू कैन अंडरस्टैंड एंड लुक एंड सर्च फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फूड कि क्या खाना कहाँ से आया है. मेरे लिए शेफ के लिए इतना ही बोलना काफी. मैं किसी को क्या ही बोलूँगी क्या क्या करें क्या नहीं करें.
0: नहीं नहीं, आपने जो ये बात बोली है ना कि रेस्टोरेंट्स में जाके एक अच्छा बिहेव, मतलब देखा जाए तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने आप को, किंग में नहीं समझे, ये झलकाता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त निकाला और इतना हमें इंस्पायर किया आपने. सो थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी.
0: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड फील लाइफ।
1: अब सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आरजी सागर, आया हूँ लेकर के शो वॉइस ऑफ यू। ये शो अपने आप में बहुत खास हमारा है, रीजन बीइंग यहाँ पर जो एक्सपर्ट हमारे पास लेकर के आते हैं वो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपर्टीज से, अपनी स्किल्स से हमें कुछ चीजें बताते हैं जिनको यहाँ पर हम लोग डिकोड करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग डोमेन्स में आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं और क्या क्या स्किल सेट होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। आज हमारे साथ है मिस्टर ऋषभ सिंह। ऋषभ, बहुत टाइम से मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, साथ साथ बहुत ही होनहार, बहुत ही मेहनती एक इंसान है जिन्होंने अपना करियर स्विच किया सेल्स से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में, और साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसे नहीं, मतलब अच्छी खासी जगह पर आज ये बैठे हुए हैं। तो आज अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है लेकिन ये समझ नहीं आता है कि इसमें करियर कैसे बिल्ड करना है, तो उन तमाम सवालों के जवाब आज के शो से आपको मिल चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने शो की और सबसे पहले स्वागत करेंगे। हाय ऋषभ, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय सागर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। तो जी कंटिन्यू,
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषभ, मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपके बैकग्राउंड के बारे में। आपने सेल्स में काम किया है, तो सेल्स के काम से साइबर सिक्योरिटी में जब आपने स्विच किया, शुरुआत करेंगे उस एक ट्रांजिशन से, कैसे आया कि साइबर सिक्योरिटी में काम करना है और क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ी थी यहाँ पर आने के लिए।
2: सागर, तो मैंने बीकॉम किया है और बीकॉम करने के बाद मैं सेल्स में गया था। तो सेल्स में क्या था कि वहां पर कुछ सीखने को मुझे नहीं मिलता था ज्यादा, और मेरा स्टार्टिंग से है कि मुझे लर्निंग पसंद है। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं

0: मैं जहाँ पर मैं सेल्स करता था, मैं वहाँ का एक्सपर्ट हो गया था, मैं अच्छी सेल्स भी करता था, पर एक टाइम पर मेरी लर्निंग रुक गई थी। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा करियर अपना बनाता हूँ जहाँ पे इनफाइनाइट लर्निंग हो और उसे मैं कंटिन्यू कर सकूँ। तो उस टाइम पर फिर मैंने अपना जो है करियर सेल्स से साइबर सिक्योरिटी में स्विच किया था।
1: लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रक्ट रहते हैं, अगर एक डोमेन पकड़ लिया तो उसी डोमेन के होके रह जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कितना आसान था, कितना मुश्किल था, क्या प्रोसेस था एक करियर से, चूंकि टिपिकल एक कन्वेंशनल मेथड पे चलता है, वहां से एक ऐसे करियर पे जाना जो हर रोज चेंज होता है, हर रोज इसमें कुछ नया आता है, तो वो थोड़ा सा बताइए।
0: सफर आसान नहीं था, क्योंकि मैंने सेल्स की जॉब के साथ साथ मैंने साइबर सिक्योरिटी का मैंने सीखा था। तो मैं दिन में जॉब करता था और फिर मैं रात में आकर अपना पढ़ता था, और मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें तो मुझे पहले से ही पता थी। आई मीन हाउ टू ऑपरेट एंड ऑल, विंडोज चलाना, उस पर काम करना, वो मुझे पहले से ही आता था, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था। और बाकी पर हाँ, मुश्किलें तो आई थी, पर अगर आपको अपनी जीवन में कुछ करना है, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, तो उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: ये बात बिल्कुल सही बोली। अब मैं जानना चाहूंगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आप साइबर सिक्योरिटी में क्या करते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, थोड़ा डोमेन समझाइए अपना हमें।
0: तो देखिए सागर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। हम सभी ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, सोशल मीडिया, डिजिटल सर्विसेज हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा एंड प्राइवेसी, ये सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यही काम साइबर सिक्योरिटी करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। सो दिस इज साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, अभी यह है कि इंडिया इतनी तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे सारी चीजें डिजिटल हैं, ऑनलाइन बैंकिंग और एआई भी आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है। तो इसी में साइबर क्राइम्स भी इतने बढ़ रहे हैं, आप देखते हैं जैसे फिशिंग अटैक्स होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट है, डेटा ब्रीच होते हैं, बैंक्स के डेटा ब्रीच हो जाते हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी अब केवल आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक डिजिटल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। जो स्मार्टफोन यूज करता है, जो इंटरनेट यूज करता है, ये उस सब इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है।
1: तो आपका जो काम है वो इस एक चीज का ध्यान रखना है। इसमें क्या पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप टेक केयर करते हैं? इसमें सेगमेंट्स भी होंगे ना, प्रोफाइल्स भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा वो समझा सकते हैं कि क्या क्या चीजें फॉलो करती हैं और उसमें से आप क्या करते हैं?
0: जी सागर, तो इसमें क्या रहता है, देखिए साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग डोमेन रहते हैं, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एनालिस्ट रहते हैं। मेरा जो पर्टिकुलर रोल है, मेरा है पेनिट्रेशन टेस्टर का। तो हमारे पास क्या रहता है सागर, कि हम जैसे वेबसाइट है, ठीक है, तो या वेबसाइट है, वो हम उनको टेस्ट करते हैं ताकि अटैकर्स उन पर अटैक ना कर सकें। तो हम बेसिकली अटैकर्स से पहले उन वेबसाइट्स को हम टेस्ट करते हैं, और जिस कंपनी की वो वेबसाइट है, हम उसको रिपोर्ट बना कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये कमियां हैं, आप इन्हें ठीक कर लीजिए। देन उनके डेवलपर्स उन जो कमियां रहती हैं उनको वो फिक्स करते हैं, एंड देन वो पब्लिकली लाइव होती है वेबसाइट।
1: ऑल राइट सो अमेजिंग। तो अभी तक हमने जाना है ऋषभ के डोमेन के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में, कैसे सेल्स से उन्होंने ट्रांजिट किया, किस तरीके का प्रोसेस रहा। आई मीन इट टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट्स एंड एट फर्स्ट इट टेक्स सो मच ऑफ करेज टू जस्ट गेट स्टार्टेड। दैट्स हाउ यू यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग। आई मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल, बी इट साइबर सिक्योरिटी, बी इट कोडिंग, बी इट एनीथिंग। इट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। और आपको मानना पड़ेगा पहले कि आपको जीरो से शुरू करना है सब कुछ। तो ये अभी तक की यात्रा में रहा, अभी आगे लेकर चलेंगे शो को और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपनी शो में आगे बात करेंगे। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत बातें हम ऋषभ से कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ आज के मेहमान हैं हमारे मिस्टर ऋषभ सिंह। ऋषभ साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। अभी तक हमने ऋषभ के डोमेन के बारे में जाना है। ऋषभ, अब मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा एक और डीपर लेवल की। बहुत सारे लोग इस टाइम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, उनमें से काफी ऐसे लोग हैं जिनको अपना करियर परस्यू करना है साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, बट उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, कहां से शुरू करना है। आप बताइए, साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करने के लिए क्या रोड मैप रहता है, कैसे स्टार्ट किया जाए, किन स्किल्स की हमें जरूरत होती है?
1: जी सागर, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, जिसके लिए आप कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग, आपको एक लैंग्वेज सीख लीजिए, आइदर पाइथन या C++। उसके बाद आप वेब सिक्योरिटी को आपको सीखना है। उसके लिए ऑनलाइन लैब्स भी अवेलेबल हैं, जैसे पोर्ट्स वगैरह है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके आप वेब सिक्योरिटी के बारे में पढ़ सकते हैं और लैब्स कर सकते हैं। क्लाउड फंडामेंटल्स आपको सीखने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ अगर इसमें कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जैसे अगर कोई एंट्री लेवल पर जाना चाहता है तो एक सर्टिफिकेट है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, तो आप उस सर्टिफिकेट को कर सकते हैं। उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं इस डोमेन के अंदर।
0: ओके, और इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे कॉमर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
1: देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है वो स्किल बेस्ड करियर है, इसमें डिग्री इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स उतनी ज्यादा हैं तो डिग्री मैटर नहीं करेगी कि आपने बीकॉम किया है या बीसीए है, बीएससी है, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। बट आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको जॉब लग जाए आपकी और आप वहां पे सीखते रहे रोजाना।
0: ओके, आपने बताया कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, आपने बताया लिनक्स विंडोज के बारे में, पाइथन C++, वेब सिक्योरिटी लैब्स, क्लाउड फंडामेंटल्स। शुरुआत कैसे की जाए, सबसे बेसिक से बेसिक चीज कहाँ से आपको ऐसा होगा कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, वो कौन सा कोर्स होगा या कौन सा डोमेन हो सकता है जिसको ऐसे समझा जा सकता है?
1: देखिए, इसके लिए सागर, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्किंग या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, इसके लिए आइदर आप यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियोज काफी अवेलेबल रहती है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं या ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, आपको एक लर्नर बनना पड़ेगा, आपको खुद ही सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। अब आप पर्टिकुलर वेब सिक्योरिटी में जाते हैं तो वेब सिक्योरिटी की एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट होती है, आप धीरे धीरे करके वन बाय वन उन सबको आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है, तो वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और उसके लिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है पोर्ट्स वगैरह का, तो पोर्ट्स वगैरह लैब्स हैं, आप वहां पे वेब सिक्योरिटी आपको सीखनी है तो आप वहां पर जाके, वहां पे उनकी मशीन्स रहती हैं तो आप वो लैब्स कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने वो सारी लैब्स कर ली तो आपको उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि आप आसानी से अपना डे टू डे वर्क कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी।
0: कौन से सॉफ्टवेयर से टूल्स की जरूरत होती है इनमें?
1: देखिए, टूल्स की अगर हम बात करें तो सागर, इसमें देखिए, आपको स्टार्टिंग में पहले फाउंडेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए फर्स्ट थिंग। अब आप वेब सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं सागर, तो वेब सिक्योरिटी में क्या है कि आप पोर्ट्स वगैरह लैब्स हैं, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल सारी नॉलेज मिल जाएगी उनकी लैब्स के ऊपर अगर आप उनको करते हैं तो वो एक आसान रास्ता है, आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं अपने करियर को।
0: ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं लैब्स अटेंड करिए जो कि होती हैं, एंड वेब सिक्योरिटी लैब्स, उसमें आपको काफी हेल्प करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपके बेसिक फाउंडेशन है वो आप यूट्यूब के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो ऋषभ ने बताया कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, एंड दिस डोमेन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल स्किल्स। So it doesn't matter ki you, whether you are coming from a medical domain, you are coming from engineering background, or you are coming from commerce, arts, all that matters is you should have those practical skills. Ye abhi tak hame samajh mein aaya mota mota. Ab isi ke saath lete hain ek musical break. आगे बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, फ्यूचर कैसा दिख रहा है, ये सब चीजें। बट फिलहाल स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ।

0: इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लग रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको शो में कुछ जानने को मिल रहा है, आइए शो को अब अपने आगे बढ़ाते हैं। ऋषभ हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अगला पॉइंट ऋषभ आपसे जो मैं पूछना चाहूंगा वो मेरा होने वाला है, प्लीज थोड़ा सा बताइए कि करियर कैसे शुरू किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर जॉब किसी को लेनी है या फ्रीलांस किसी को अगर करना है तो वो कैसे देखा जाए, ये थोड़ा सा बताइए। कोर्स हो गया, बेसिक्स क्लियर हो गए, अब आगे क्या?
1: जी सर, तो इसमें है कि जब आप देखिए, इसमें वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, उसके बाद क्लाउड है, और इसी के साथ साथ IoT डिवाइसेस की भी सिक्योरिटीज हैं। तो आपको जॉब लेने के लिए आपको एक पहले पकड़ना पड़ेगा, जैसे आप वेब सिक्योरिटी पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वेब सिक्योरिटी में आप उतने एक्सपर्ट हो जाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लैब्स करके उतना आप सीख जाते हैं कि आप प्रैक्टिकल उनको चीजों को कर पाए अपनी डे टू डे जॉब के अंदर, ठीक है। तो आप उनको ऐसे कर सकते हैं, और सबसे पहला देखिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अच्छा लगता है, नई चीजें सीखने का जुनून है, तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन है, क्योंकि इस फील्ड में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, और देखिए अपॉर्चुनिटीज तो लगातार बढ़ ही रही हैं, एंड इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर फील्ड इन द वर्ल्ड। तो करियर ऑप्शंस इसमें काफी हैं सागर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, एथिकल हैकर बन सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, साइबर ऑडिटर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, हर क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर किया जा रहा है, देखिए गवर्नमेंट भी, बैंकिंग भी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, डिफेंस, एजुकेशन, इवन प्राइवेट कंपनीज जो आजकल कर ही रही हैं हायर। तो इसमें करियर ऑप्शंस अभी बहुत ग्रोइंग स्टेज पर है ये, तो आने वाले टाइम में भी और इसमें जॉब्स आएंगी ही। तो अगर कोई अपना करियर स्विच करना चाहता है या कोई स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है तो आप स्टार्ट कीजिए सीखना, ठीक है, यूट्यूब पर आप सीख सकते हैं, और बाकी आप लैब्स कीजिए। एक आपको पहले एक डोमेन पकड़ना है, जैसे आप वेब सिक्योरिटी आप पकड़ लीजिए, वेब से आप स्टार्ट कीजिए, आप वेब के बारे में सारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो स्किल्स, वो आप डेवलप कीजिए, और फिर आप एक जॉब ले लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए, बाद में तो आप और भी चीजें सीख सकते हैं ना, लर्निंग का इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो आपको सीखना पड़ता ही है। अभी जैसे AI आया तो आपको AI की टेस्टिंग

0: यूज भी करना चाहिए, इवन हमें डे टू डे लाइफ में भी यूज करना चाहिए। बट साइबर सिक्योरिटी में एआई से कोई खतरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए साइबर सिक्योरिटी में क्या रहता है कि अब ये समझिए कि ह्यूमन के जो डिसीजन मेकिंग है या इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, वो एक एआई नहीं कर सकता अपने आप, ठीक है। तो इसलिए और साइबर सिक्योरिटी में क्या है कि ह्यूमन एक्सपर्टीज जरूरी रहती है और वो एआई नहीं कर सकता, एआई अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी में एआई को हम यूज करते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, उसकी हेल्प आप ले लीजिए, और बाकी ऐसा कोई खतरा नहीं है जॉब्स में एआई की वजह से।
1: ऑलराइट। क्या फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, अगर कोई जॉब ना करना चाहे और एज अ गिग वर्कर काम करना चाहे तो क्या गिग्स मिलती हैं इसमें?
0: आप एक बार रिपीट करेंगे सागर?
1: मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पर फ्रीलांस वर्क मिलता है अगर कोई इंसान अपनी जॉब ना करना चाहे और यहाँ को एज अ फ्रीलांसर अपना काम ढूंढता है, तो क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस डोमेन में?
0: जी, तो सागर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखिए अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं तो आप फ्रीलांस कर सकते हैं, और आपने सुना भी होगा कि बग बाउंटी एक चीज रहती है। तो बग बाउंटी जो रहती है सागर, वो पब्लिकली अवेलेबल जो वेबसाइट्स हैं या जो हैं, तो वहां पर आप कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स अपने पब्लिक प्रोग्राम स्टार्ट करके रखती है, तो उन पर क्या है, उन पर कोई भी अपनी जो प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से अगर कोई वहां पे उनकी वेबसाइट में बग निकालता है तो वो कंपनीज उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिवॉर्ड्स भी देती हैं, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर जैसे फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, ठीक है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको क्या क्या आता है, आप अपनी स्किल्स वगैरह अपग्रेड कर दीजिए, और फिर आपको वहां से भी फ्रीलांसिंग आप वर्क वहां से ले सकते हैं।
1: All right. आई एम डन विद माई क्वेश्चन ऋषभ। कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो, लोगों को पता होना चाहिए आपके डोमेन से रिलेटेड, तो प्लीज आप बता सकते हैं, मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं।
0: तो बाकी मेरा कुछ सिंपल मेरी टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा अभी आपके सभी लिसनर्स को, कि देखिए साइबर सिक्योरिटी खाली जो उसमें जॉब कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। हम सब आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग अपना पासवर्ड रखें। आप इवन आप ईमेल या अकाउंट कहीं पर भी बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, जिसके मिनिमम जो कैरेक्टर्स हैं वो 12 होने चाहिए, 12 टू 14, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें, ठीक है, और इसी के साथ साथ ओटीपी और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अननोन लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं लिंक्स को, तो कभी भी उन पर ना करें। और अपने मोबाइल और कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखें, अगर कोई भी अपडेट आता है आप उसे अपडेट करें, क्योंकि जो मोबाइल की कंपनी है उन्होंने वो अपडेट इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि उनके लास्ट वर्जन में कुछ उनको टेक्निकल ग्लिच या कुछ बग मिला था, उसके लिए फिर उन्होंने नया अपडेट लाए। तो कभी भी कोई अपडेट आता है आप अपडेट करके रखें आप मोबाइल और कंप्यूटर। इसी के साथ साथ पब्लिक वाईफाई और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करें पब्लिक वाईफाई के ऊपर, ठीक है, कभी भी पब्लिक में जो वाईफाई रहते हैं उसमें आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन ना करें, और किसी भी ऑनलाइन ऑफर या प्राइस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, तो थिंक बिफोर यू क्लिक। तो मैं यही कहना चाहूंगा।
1: ऑलराइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच हमारे लिसनर्स को गाइड करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी लोग कंफ्यूज होंगे या साइबर सिक्योरिटी को सुना होगा आज थोड़ा और अच्छे से समझ पाए होंगे क्या करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, स्किल्स क्या चाहिए, कैसे गेन कर सकते हैं। आई होप ये शो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई फीडबैक है आपके पास तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच ऋषभ।
0: थैंक यू सो मच सागर।
1: थैंक यू सो मच दोस्तों, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, लेकिन अब लेकर लौटेंगे हम अगला एपिसोड अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: देखिए किसान भाइयों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है रसीले चारे की फसल की बात। उसका नाम है मकचरी। मकचरी का वानस्पतिक नाम यूकेलियाना मैक्सिकाना है। ये रसीले चारे की फसल है जिसका औसतन कद 6 से 10 फीट होता है। इसके पत्ते लंबे और चौड़े होते हैं। पौधे की चारों तरफ बहुत लंबी शाखाएं होती हैं। मादा पौधे जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं ना किसान भाइयों, और फूल और शाखाएं निकल आती हैं, तो उसे मुख्य भाग को बालियां कहा जाता है। इसमें 5 से 12 दाने होते हैं। इसका मूल स्थान मेक्सिको और केंद्रीय अमेरिका है। भारत की बात करें तो भारत में पंजाब सबसे ज्यादा मकचरी उगाने वाला राज्य है। ये मुख्य तौर पर नवंबर के महीने में चारा पैदा करने वाली फसल है और लंबे समय तक हरी बनी रहती है। तो मकचरी के बारे में यानी कि रसीले चारे की फसल के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है आपसे मक्चरी के बारे में, तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये फसल चिकनी से रेतीली मिट्टी में उगाई जा सकती है। ये भारी मिट्टियों में बढ़िया पैदावार देती है। हल्की रेतीली जमीनों में इसकी खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फसल के विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका बढ़िया विकास हो, तो उसके लिए मिट्टी का जो पीएच है, पीएच 5.8 से 7.0 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस्मों की। एक किस्म है जिसका नाम है TL1। ये किस्म 1993 में तैयार की गई थी और इस किस्म का पौधा दानों के सुरंगी कीटों का रोधक होता है। इसके पत्ते पकने तक हरे बने रहते हैं। इसके बीजों की परत सख्त होती है और सिलेटी भूरे रंग के होते हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें, तो सिरसा इम्प्रूव्ड और रूररी नाम की किस्में भी तैयार की गई हैं। लेकिन किसान भाइयों, जमीन की जब तैयारी की बात आती है, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जमीन की तैयारी किस तरह की जानी चाहिए मक्चरी के लिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जमीन की तैयारी की, मक्षरी की। जब भी आप फसल बोएं तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तैयारी की अगर बात करें तो मक्षरी की बिजाई के लिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। ज़मीन को बढ़िया तरीके से समतल करने के लिए एक बार हैरो से जुताई ज़रूर करें और फिर दो बार सुहागा ज़रूर फेड़ दें। फसल की बिजाई तैयार किए बैंडों पर की जाती है और बिजाई की अगर हम बात करें तो इसका समय भी होता है। मई जून महीने में नर्सरी तैयार करें और जून जुलाई महीने में बीजों की बिजाई करें। अगस्त में बिजाई बिल्कुल न करें, क्यों? क्योंकि इससे पैदावार कम हो जाती है। फासले की बात कर लेते हैं पौधे के विकास के लिए। पौधे के विकास के मुताबिक बीजों को 30x40 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं और बीज की गहराई की अगर बात आती है तो बीज को 3-4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोएं। बिजाई को केरा विधि, कौन सी विधि? केरा विधि या बिजाई वाली मशीन की सहायता से की जाती है। तो ये हो गया आपका बिजाई का ढंग, बीज की गहराई, फासला क्या होना चाहिए और बिजाई का समय क्या होना चाहिए, जमीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब बात आती है बीज की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा बीज होगा फसल आपकी उतनी ही बेहतर होगी। तो बीज के बारे में आपसे कुछ जरूरी बातें करूँगा और खाद की बात भी करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है उस फसल के बारे में जिसका नाम है मगशरी। जमीन की तैयारी कैसे की जाए, इस बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, बिजाई का तरीका भी बता दिया। बीज की जब बात आती है तो हमें बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है। बीज की मात्रा का जरूर ध्यान रखें। बढ़िया अंकुरण वाले किस्मों के लिए 16 किलो प्रति एकड़ बीजों का प्रयोग करें। अब बात आती है खाद की, तो इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत की तैयारी करते समय रूड़ी की खाद 8 टन प्रति एकड़ जरूर डालें। नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो की मात्रा का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बिजाई से एक महीने के बाद नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो का छींटा जरूर दे दें। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे खेत में जो फसल है वहाँ पर अगर खरपतवार आ जाती है तो उस खरपतवार से कितना नुकसान होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फसल चाहे कोई भी हो, खरपतवार उसकी एक तरह से दुश्मन है, दुश्मन। अब इस दुश्मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता फहीम के साथ।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खरपतवार की, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है हमारी फसल के लिए। नदियों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए बार बार गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर नदियों पर काबू ना पाया जाए तो पैदावार में भी बहुत कमी आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी अच्छी रोकथाम करना चाहते हैं तो प्रभावशाली रोकथाम के लिए एट्राटॉफ 50WP 400 ग्राम प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे करें। मिट्टी का तापमान और नदियों को कम करने के लिए मल्चिंग का तरीका भी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, जिससे ये जो खरपतवार है इसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये तो बात रही खरपतवार की। अब बात जब आती है सिंचाई की, तो वो भी जानना जरूरी है। भाई देखिए किसान भाइयों, जलवायु और मिट्टी के आधार पर 8 से 10 दिनों के फासले पर हमें इस फसल की सिंचाई करनी चाहिए, जो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात आती है कि भाई पौधे की देखभाल कैसे करें, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उन कीटों की रोकथाम कैसे की जाए और वो कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी इस फसल को बर्बाद करते हैं, उन कीटों का नाम बताऊंगा। और नाम ही नहीं बल्कि उन कीटों से फसल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वो बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कीट और उनकी रोकथाम की। एक कीट होता है जिसका नाम है मक्की का छेदक। ये कीट मुख्य तौर पर फसल के शुरुआती विकास के समय हमला कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है? इसकी रोकथाम के लिए 750 WP यानी कार्बरील 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की स्प्रे जरूर करें। अब बात आती है फसल की कटाई की, तो ये भी सुन लीजिए। इसकी कटाई आमतौर पर बिजाई से 80 से लेके 100 दिन बाद की जाती है। फसल के गुच्छे निकलने पर कटाई की जाती है। इस समय चारा ज्यादा देर तक हरा रहता है और पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ होता है, और सूखी फसल की कटाई धूप में कर ली जाती है। लेकिन किसान भाइयों, कटाई के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। कटाई के बाद फसल को दबाया जाता है। क्या किया जाता है? दबाया जाता है। फसल को हाथों से दबाया जाता है या फसल के ऊपर से ट्रैक्टर को चलाया जाता है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चीरों की

कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की, संत्रास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया? सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गौंडवी, ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देख कर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गोंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गोंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।
1: पल भर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे

प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त वहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: उसे दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान, उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का, कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता, परिवार वाले होते चिंतित,

0: नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। जी हाँ, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसमें हम बहुत सारी ट्रेंड की बातें करते हैं, किसी स्पेशल दिन की बात करते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो भी चीज़ें हम सबसे जुड़ी हुई है हम उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल में सारी जानकारी लेकर आती हूँ आपके लिए, और साथ ही उसी के साथ लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे से गाने भी, एंटरटेनमेंट भी आपके लिए होता है यहाँ पर, और साथ ही कुछ हमसे जुड़ी हुई ज़रूरी बातें भी। तो दोस्तों, आज भी लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम ट्रेंडिंग तड़का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इस टाइम पे हम सब अपने सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया पर या फिर कहीं तो आपने कहीं न्यूज़ में या फिर कहीं पर भी आपने छोटी छोटी सी चीज़ें ना खबरें पढ़ी होंगी कि इस टाइम पे ना कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इस टाइम पे चल रहा है, जिसमें आपको मैं बता दूँ कि बहुत से ऐसे हमारे इंडिया के लोग हैं जिन्होंने, एथलीट्स हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, साथ ही जीत भी हासिल की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का। जी हाँ, सोशल मीडिया में हो, न्यूज़ चैनल में हो, या फिर स्पोर्ट्स लवर की कॉन्वर्जेशन से क्यों ना हो, हम सब जानते हैं कि हम सबको इन गेम्स को देखना और फिर हमारे जो एथलीट्स हैं जो जीत कर आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना हम सबको कितना पसंद है। तो आज इसलिए इनके लिए ये खास एपिसोड है। हर जगह एक ही बात हो रही है कि जो इंडिया के एथलीट्स हैं ना, उनका शानदार परफॉर्मेंस, ओहो क्या बात है, हर मेडल के साथ देश का तिरंगा और भी ऊँचा लहराता हुआ नज़र आ रहा है, और हर इंडिया के दिल में गर्व का एहसास और मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि ना ये प्राउड मोमेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स आखिर होता क्या है। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के एथलीट्स अलग अलग स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाते हैं, साथ ही एथलीट्स वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्विमिंग और कई ऐसे दूसरे स्पोर्ट्स में प्लेयर्स अपने देश के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। हर एथलीट का एक ही सपना होता है कि पोडियम पर खड़े होकर अपने देश का नेशनल फ्लैग देखना और मेडल जीतना। जी हाँ, और इस बार भी इंडिया के कई शानदार ऐसे परफॉर्मेंस, कई ऐसे एथलीट्स हमने देखे हैं जो इस बार कई ऐसी चीज़ों में जीते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग से लेकर पैरा एथलीट्स के एथलीट तक। जी हाँ, हमारे प्लेयर ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से दुनिया को बता दिया है कि इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ मेडल्स की कहानी नहीं है, बल्कि उन सालों की मेहनत है, डिसिप्लिन है और सैक्रिफाइसेस है कि उनकी कहानियाँ बताती है कि जो एथलीट अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि कितने मेडल्स हमारे देश में आए हैं, इंडिया को कौन से गोल्ड मेडल मिले, किस गेम में मिले, कौन से सिल्वर और कौन से ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इन सब इंस्पायरिंग जर्नी को आज हम जानने वाले हैं, आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी इंटरेस्टिंग जो कि फैक्ट्स हैं मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। पर इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम बहुत ही प्यार प्यार से गाने भी लेकर आते हैं, तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं और भी बहुत सारी बातें, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूं मैं आपके लिए लेकर एक और खास ट्रेंडिंग तड़का। जी हां, ट्रेंडिंग तड़का ये इसलिए है क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये जो ये बात जो आज हम कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो बहुत ही खास है। क्योंकि ना जब कहते हैं ना कि हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, और जब हम कहीं जाकर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम जीत कर आ रहे हैं, तो ये कितना प्राउड मोमेंट हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये ना शब्दों में बयां नहीं करा जा सकता है, बहुत खास एक कहते हैं ना कि मोमेंट बन जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स ये जो 2026 का है, ये 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चल रहा है। जी हाँ, 2 अगस्त इसका आखिरी दिन है। ये 23 जुलाई से शुरू हो गया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे लोग आते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसमें से हमारे इंडिया टीम के कई ऐसे चैंपियंस भी है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, आज जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन चैंपियंस को जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से देश का नाम रोशन किया है, तो दोस्तों इस सेगमेंट पे आप हम बात करेंगे हमारे उन गोल्ड मेडल विनर्स की, जिनकी जीत सिर्फ एक मेडल ही नहीं है बल्कि लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। सबसे पहला नाम आता है मीराबाई चानू का। जी हाँ, जब भी इंडियन वेटलिफ्टिंग की बात होती है तो मीराबाई का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हो या फिर इंटरनेशनल चैंपियंस में हो, उन्होंने बार बार ये प्रूव किया है कि कंसिस्टेंसी ही असली चैंपियन की पहचान होती है। इस बार भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस और अपने एक्सपीरियंस के दम पर गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया है। जी हाँ, उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट के साथ डिसिप्लिन और पेशेंस भी उतना ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं दिलीप माधुगवित की, जिनका पैरा एथलीट के इस स्टार एथलीट ने मेंस 100 मीटर T47 इवेंट में गोल्ड जीतकर देश का नाम और भी ज्यादा रोशन कर दिया है, खुशी से भर दिया है। पैरा एथलीट हर बार हमें ये बताते है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती है बल्कि हौसले में होती है। दिलीप की परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे आपके मजबूत हो ना, तो कोई भी चैलेंज बड़ा क्यों ना हो, आप हर किसी को पार कर सकते हैं। इसी के साथ एक और नाम जिसने सबका दिल जीता है, और वो है शर्मिला दांकर जी। जहां वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 इवेंट में उन्होंने शानदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उनकी अचीवमेंट सिर्फ एक स्पोर्टिंग सक्सेस ही नहीं है बल्कि उन सब लोगों के लिए मोटिवेशन है जो मुश्किल सिचुएशन के बावजूद अपने सपनों को छोड़ते नहीं है, और उनकी मेहनत और डेडिकेशन हर यंग एथलीट के लिए एक मिसाल बन गई है। दोस्तों, गोल्ड मेडल जीतना किसी भी एथलीट के लिए सिर्फ कंपटीशन का रिजल्ट ही नहीं होता है बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत, उनकी प्रैक्टिस, इंजरीज और रिकवरी, काउंटलेस ट्रेनिंग सेशंस और फैमिली, साथी कोचेस और सपोर्ट स्टाफ का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, भरपूर साथ होता है। जब एक एथलीट पोडियम पर खड़ा होता है ना, तो और नेशनल एंथम बजता है, तब वो पल सिर्फ एक एथलीट का ही नहीं होता है बल्कि पूरे देश का बन जाता है। हमारी गोल्ड मेडल विनर्स ने एक बार फिर से दुनिया को दिखाया है कि इंडिया हर स्पोर्ट्स में अपनी पहचान मजबूती से बना रहा है। ये जीत आगे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करेगी और सपने देखने को भी मजबूर कर देगी। मेहनत करिए और कभी मत हार मानिए, ये संदेश इस जीत से मुझे तो यही समझ में आता है। तो वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। जहां कॉमनवेल्थ गेम्स इस टाइम पे चल रहा है, 23 जुलाई से शुरू हुआ और 2 अगस्त यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे लोग इसमें खेलने गए और आज हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो है हमारे इंडियन एथलीट्स। जी हाँ, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा, साथ ही वो गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज बहुत सारे मेडल्स जीत कर लेकर आए हैं और हमारे देश के नाम किया है, हमारा देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। और अब जब हम पिछले सेगमेंट पे अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने गोल्ड मेडल विनर्स जो विनर बने हैं, अब वक्त है उन चैंपियंस को सैल्यूट करने का जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं मुरली श्रीशंकर की। लॉन्ग जंप जैसे टेक्निकल इवेंट में कंसिस्टेंसी और फोकस बहुत जरूरी होता है। मुरली ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सिल्वर मेडल अपने नाम किया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि इंडियन एथलीट्स अब दुनिया के बेस्ट एथलीट को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, उनका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन हर स्पोर्ट्स लवर के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बन चुका है। अब चलते हैं वेट लिफ्टिंग की तरफ। जी हाँ, ऋषिकांता सिंह ने मेंस 60 kg कैटेगरी में शानदार लिफ्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता है। कंपटीशन काफी टफ था, लेकिन उन्होंने प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया और इसी तरह राजा मुथुपंडी ने अपनी मेंस 65 kg कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए सिल्वर मेडल को हासिल किया है। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम नहीं होता है, बल्कि टेक्निक, बैलेंस और मेंटल फोकस का भी टेस्ट होता है और इन दोनों एथलीट ने इसे बाखूबी से प्रूव कर दिया है। पैरा एथलीट्स में मोहम्मद बसील ने मेंस 100 m T47 में इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। उनकी रेस ने ये दिखाया है कि स्पीड सिर्फ पैरों में नहीं होती है, बल्कि हौसलों की भी होती है। हर फिनिश लाइन के पीछे उनकी सालों की मेहनत और डेडिकेशन छपी हुई है। इनके अलावा भी कई इंडियन एथलीट ने अलग अलग इवेंट्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश को गर्व महसूस दिया है, करने का मौका दिया है। हर मेडल एक अलग कहानी लेकर आता है। सुबह से शाम तक की प्रैक्टिस, इंजरीज से वापस आना, अपनी लिमिट्स को रोज तोड़ना और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना और इसी प्रोसेस से चैंपियंस तैयार होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सिर्फ गोल्डन मेडल्स को ही याद रखते हैं, लेकिन सिल्वर मेडल तक पहुंचना भी किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होता। दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स के पीछे खुद को पोडियम तक लेकर जाना ही एक बहुत बड़ी जीत होती है। हमारे सिल्वर मेडल्स विनर जो है, ये साबित कर दिया है उन्होंने कि इंडिया का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और हर नई जनरेशन

एथलीट्स नए स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं और अब बारी है उन प्लेयर्स की जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में अपना योगदान दिया है। पर इसे बताने से पहले मैं लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के उन हीरोज की जिन्होंने मेडल्स जीतकर इंडिया को गर्व कराया है, और साथ ही नई जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उनको इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है कि आप बिना किसी से कम नहीं है। अगर आज हम यहाँ पर हैं तो कल आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर मेडल की तो हमने बात कर ली है, उनके विनर्स की बात करी है, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बाद अब बात करते हैं उन चैंपियंस की जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भी देश का सर फक्र से ऊँचा कर दिया है। क्योंकि स्पोर्ट्स में हर मेडल के पीछे एक ही कहानी होती है, वो होती है मेहनत, डेडिकेशन और कभी हार ना मानने का जज्बा। सबसे पहले नाम है बिंद्रियाइनी देवी का। जी हाँ, वेटलिफ्टिंग में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वेटलिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट होता है जहाँ पर सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि परफेक्ट टेक्निक, बैलेंस और कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी होता है। बिंद्रियाइनी ने प्रेशर के बावजूद अपना बेस्ट दिया और भारत के लिए एक और मेडल जीतकर सबको बहुत प्राउड फील कराया। इसके बाद बात करते हैं जंडू कुमार की जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरा स्पोर्ट्स में हर बार ये सिखाते हैं कि असली जीत शारीरिक सीमाओं पर करने में नहीं होती है बल्कि अपने हौसलों को कभी टूटने ना देने में होती है। उनकी परफॉर्मेंस हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। एक और शानदार नाम है शिल्पा शाइला, जी हाँ, जिन्होंने पैरा एथलीट्स में विमेन शॉर्ट पुट F57 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भारत की मेडल टैली में अपना योगदान दिया है। उनकी अचीवमेंट हमें याद दिलाती है कि सक्सेस किसी एक दिन की देन नहीं होती है बल्कि इसके पीछे सालों की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और लगातार की गई मेहनत होती है। दोस्तों, अगर हम इंडिया के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल हमारे एथलीट्स ने वेटलिफ्टिंग एथलीट्स और पैरा एथलीट्स और जैसे इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। हर मेडल के साथ इंडिया की पोजीशन मेडल टैली में और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन मेडल टैली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन एथलीट्स ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स और स्पोर्ट्समैनशिप से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ मेडल्स का कॉम्पिटिशन नहीं होता है बल्कि टैलेंट, यूनिटी और डिटर्मिनेशन का सेलिब्रेशन होता है। जब अलग अलग स्टेट्स और बैकग्राउंड से आए प्लेयर्स एक ही तिरंगे के लिए कॉम्पिटिट करते हैं और जब पूरा देश एक साथ उनके साथ खड़ा नजर आता है, यही स्पोर्ट्स की असली खूबसूरती होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम वक्त हो गया है अभी तो छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, पर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के 2026 के कुछ ऐसे अमेजिंग रिकॉर्ड्स की, उनके हिस्टोरिक मोमेंट्स की और इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो आपको भी जानकर लगेगा अच्छा ऐसा भी था। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे, पर उससे पहले सुनाऊंगी आपको बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।
1: चिमारु विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और आज बात कर रहे हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। अभी तक हमने बहुत सारी बातें करी, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और साथ ही ब्रॉन्ज मेडल, बहुत सारे जो हमारे एथलीट्स हैं इन सबकी बात करी, किसने क्या जीता और कैसे देश को गर्व महसूस कराया। तो चलिए, अब तक हमने जब इन सब चीज़ों की बात कर ली है, लेकिन अब कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ मेडल्स की वजह से ही नहीं याद रखा जाता है, बल्कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं और इंस्पायरिंग स्टोरीज भी होती है जो सालों तक लोगों के दिलों में बस जाती है। सबसे पहली बात है, इस साल भी इंडियन एथलीट्स ने ये प्रूव कर दिया कि हमारा देश सिर्फ एक या दो स्पोर्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहले जहां इंडिया को ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग के लिए जाना जाता था, वहीं आज एथलीट्स और पैरा एथलीट्स जैसे इवेंट में भी इंडियन प्लेयर्स लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। ये बदलाव इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। और एक और खास बात तो ये रही है कि इस एडिशन में पैरा एथलीट्स ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीत लिया है। उन्होंने सिर्फ मेडल्स ही नहीं जीते हैं, बल्कि ये भी दिखाया है कि डिटरमिनेशन और सेल्फ बिलीव के सामने कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता है। इनकी स्टोरीज हर एज ग्रुप के लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, उन्हें भी जान लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हर मेडल के पीछे कई सालों की प्लानिंग, साइंटिफिक ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और मेडल फिटनेस का रोल होता है। जी हाँ, एथलीट्स रोज कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर को हैंडल करना भी सीखते हैं। जब हम टीवी पर सिर्फ कुछ सेकेंड या फिर कुछ मिनट के परफॉर्मेंस देखते हैं, उसके पीछे कई सालों की मेहनत छुपी होती है। जी हाँ, एक और इंस्पायरिंग बात तो ये है कि हर कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद नए स्पोर्ट्स हीरोज सामने आते हैं। कुछ नाम पहले से ही फेमस होते हैं, लेकिन कई यंग एथलीट्स अपनी पहली इंटरनेशनल एप्रिसिएशन में दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। यही वजह है कि ये गेम्स फ्यूचर चैंपियंस को पहचान देने की एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मानी जाती है। दोस्तों, रिकॉर्ड्स टूटना और नए रिकॉर्ड्स बनना स्पोर्ट्स का हिस्सा होता है, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है कि अपनी खुद की लिमिट को तोड़ना। जी हाँ, हर एथलीट जब अपना पर्सनल बेस्ट देता है तो वहीं उसकी सबसे बड़ी जीत हो जाती है। तो शायद इसी वजह से इंडियन के जो एथलीट्स हैं वो हर साल और भी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्ती हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड वाली। और साथ ही इस ट्रेंडिंग तड़का के एपिसोड में लेकर आ गई हूं मैं आपके लिए इंडिया के उन एथलीट्स की स्टोरी जिन्होंने इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में अपना नाम रोशन किया है, साथ ही अपने साथ ही देश का भी नाम रोशन किया है। कुछ मेडल्स ऐसे हैं जिन्हें आप सुनेंगे ना, उन्हें जीत कर इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, अपनी स्टेट का नाम रोशन किया है और अपने घर का नाम रोशन किया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इंडिया ने अब तक शानदार परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन एक्साइटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब भी कई ऐसे इवेंट्स बाकी है जहां पर पूरे देश की नज़रें एथलीट पर टिकी हुई है। फैंस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंडिया की मेडल टैली और भी ज़्यादा मजबूत होगी। सबसे पहला नाम जिनकी एक तरफ चर्चा हो रही है वो है नीरज चोपड़ा। जी हाँ, जेवलिन थ्रो में उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो कंसिस्टेंसी दिखाई है उसने उन्हें दुनिया के टॉप एथलीट में शामिल कर दिया है। हर बार जब नीरज फील्ड पर उतरते हैं तो पूरा देश उनके थ्रो का इंतजार करता है। उनका कॉन्फिडेंस, काम नेचर और डेडिकेशन उन्हें सिर्फ एक चैंपियन ही नहीं बल्कि यूथ का आइकन भी बनाता है। इसके बाद बात करते हैं बॉक्सिंग की। इंडियन बॉक्सिंग हमेशा से कॉमनवेल्थ गेम्स में स्ट्रांग रही है। हॉकी की बात करें तो इंडियन मेंस और वुमेन हॉकी टीम भी अपनी बेस्ट देने के लिए तैयार है। हॉकी सिर्फ एक गेम ही नहीं है बल्कि इंडिया के स्पोर्टिंग हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। जब इंडियन टीम मैदान में उतरती है तो हर पास, हर गोल और हर सेव के साथ फैंस की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। टीम वर्क और डिसिप्लिन ही हॉकी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बैडमिंटन

0: भी इंडिया के लिए एक स्ट्रांग मेडल इवेंट बन जाता है, क्योंकि हर टूर्नामेंट की तरह इस बार भी इंडियन शेल्टर से उम्मीद बहुत ज्यादा की गई है और वो भी अपनी स्पीड, स्ट्रेटजी और स्किल्स के दम पर पोडियम तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही एथलीट्स के कुछ इवेंट भी है जिसमें इंडियन प्लेयर्स मेडल रेस में भी बने हुए हैं। दोस्तों, किसी भी टूर्नामेंट में प्रिडिक्शन अलग हो सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे एथलीट्स हर इवेंट में अपना 100% देने के लिए उतरते हैं, चाहे वो मेडल जीते या ना जीते। उनकी मेहनत और डिसिप्लिन और देश के लिए खेलने का जज्बा ही असली चैंपियन उन्हें बनाता है। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। जी हां, अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की इंस्पायरिंग कहानियां हमने सुनी, उन गोल्ड मेडल जाना, इंडिया ने कितने जीते, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीते, उन सब के बारे में बात करी, उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल और उनकी डेडिकेशन को सैल्यूट भी किया। हमने ये भी देखा कि कैसे हर एथलीट अपने सपने को पूरा करने के लिए सालों तक लगातार प्रैक्टिस करता है। जब वो पोडियम पर खड़ा होता है तो तब तिरंगा शान से लहराता है और तो तब वो सिर्फ उस एथलीट का ही जीत नहीं होती है बल्कि पूरे देश की जीत मानी जाती है। स्पोर्ट्स हमें सिर्फ जीतना ही नहीं सिखाता है बल्कि हर हार के बाद दोबारा खड़े होना भी सिखाता है। हर एथलीट के सफर में चैलेंजेस आते हैं, कभी इंजरीज आती है तो कभी टफ कॉम्पिटिशन और कभी एक्सपेक्टेशन का प्रेशर भी होता है, लेकिन जो लोग इन सब के बावजूद अपना फोकस बनाए रखते हैं वही एक दिन चैंपियन बन जाते हैं। शायद इसी वजह से हम उन्हें सिर्फ मेडल विनर ही नहीं बल्कि रोल मॉडल भी कहते हैं। आज इंडिया के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पहले से काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है, काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। हमारे एथलीट्स को बेहतर कोचिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। इसका रिजल्ट भी हमें कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल भी रहा है। हर साल नए प्लेयर सामने आ रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और नए सपने पूरे हो रहे हैं। ये स्पोर्ट्स सिर्फ ग्रोथ का ही नहीं है बल्कि एक नए इंडिया की पहचान भी बन गया है। अगर आप एक स्टूडेंट है, किसी स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं या अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इन एथलीट्स की जर्नी एक बार आप जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी अचीवमेंट की चाबी होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अभी भी हमें ये यादगार पल दे रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इवेंट्स में और भी ज्यादा इंडियन एथलीट्स अपना बेस्ट देंगे और देश का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर उनका हौसला बढ़ाएं और उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी जीत को हम भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर एथलीट हमारा सपोर्ट का हकदार होता है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले हफ्ते फिर से आऊंगी किसी और नई ट्रेंडिंग तड़का टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ। बाय।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
3: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
2: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
4: देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
5: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद। एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर, और इस कार्यक्रम की सीरीज में हम ऑलरेडी बहुत सी बातें कर चुके हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में, बच्चों की सेफ्टी के बारे में, और साथ ही हमने ट्रैफिक के बारे में भी बात करी है। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं है तो वो ट्रैफिक का, लेकिन ट्रैफिक में बहुत सारी भूल चूक हो जाती है। कई बार लोग जानबूझ के रूल्स तोड़ते हैं तो कई बार रूल्स गलती से टूट जाते हैं, पर ये रूल्स तोड़ना कितना नुकसानदायक हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे हमारे एक्सपर्ट से कावड़ यात्रा को लिए गए रूट के बारे में। कुछ ऐसे रूट्स जो फरीदाबाद शहर में खास तौर पर से बनाए जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार से सावन के महीने में कावड़ यात्राएं कर रहे हुए कावड़ियों की सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, और साथ ही यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे ये भी प्रयास होता है। फरीदाबाद पुलिस अपने बहुत सी प्लानिंग कर चुकी हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं सावन महीना चल रहा है और कावड़िये जो हैं वो अपनी यात्रा को शुरू भी कर चुके हैं और आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और अपने ईष्ट की आराधना के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं। कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ बाइक्स पर हैं, तो कुछ बड़ी गाड़ियों पर भी हैं, लेकिन भावना वही है, प्यार वही है, अपनापन अपने ईष्ट के साथ वही है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रशासन की, फरीदाबाद पुलिस की, क्योंकि हमारे अपने शहर फरीदाबाद से बहुत से कांवड़िए जो हैं जाते हैं और इसे क्रॉस करके पलवल की तरफ भी जाते हैं। सो हमें बहुत सी बातें करनी है आज हमारे खास एक्सपर्ट के साथ। अनुज कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि इंस्पेक्टर हैं, SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद पुलिस में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
6: थैंक यू
5: सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम कांवड़ियों के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और काफ़ी जो हमारे भाई बंधु हैं वो जा रहे हैं, कई बार तो पूरा पूरा परिवार जाता है, छोटे छोटे बच्चे साथ में जाते हैं, तो एक अलग ही सावन में माहौल नज़र आता है
6: जी।
5: लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस और प्रशासन बहुत सतर्क रहता है। जिन जिन शहरों से ये गुजरते हैं, जैसे मेरठ जाने के रूट्स को बंद कर दिया गया है, हरिद्वार की तरफ जो रूट जा रहा है उनको बंद कर दिया गया है कि वो कांवड़ियों के लिए सेफली जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद में भी बहुत से कांवड़िए हजारों की लाखों की तादाद में यहाँ से गुजरते हैं। कुछ इसी शहर के होते हैं, कुछ आगे पलवल की तरफ जाते हैं, आगरा की तरफ जाते हैं, मथुरा की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर सेफ्टी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना सतर्क रहना पड़ता है।
6: कांवड़ यात्रा धार्मिक यात्रा है और इसमें सभी अपने धर्म के इससे वहाँ पर यात्रा के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार से, गंगोत्री से वो जल लेके आते हैं, पवित्र जल, और अपने जो है मंदिरों में ले जाते हैं, अपने गाँव के मंदिरों में वहाँ पर चढ़ाते हैं। तो उसके लिए हमारा जो है प्रशासन बहुत सतर्क रहता है कि कहीं भी इनके साथ कोई कांवड़ियों के साथ कोई टच ना हो जाए, कोई खंडित ना कर दे।
5: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
6: बहुत ध्यान
5: जल अपने कंधों पर लेकर आते हैं,
6: इतनी दूर से लेके आते हैं, इतनी मेहनत करके लाते हैं, इतनी धार्मिक उससे लेके आते हैं, तो कोई भी इनकी कांवड़िया को कोई हाथ ना लगा दे, कोई खंडित ना कर दे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है
5: जी। जी तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, और ऐसे में कांवड़िए तो देखिए सतर्क रहते ही हैं, साथ में प्रशासन और पुलिस भी बहुत सतर्क रहती है।

0: प्रशासन और पुलिस पूरा ध्यान रखता है कि कोई भी असामाजिक तत्व या कोई भी इनको जो है टच नहीं हो जाए।
1: जी जी, सो बहुत सारी बातें दोस्तों चल रही हैं अनुज कुमार जी से, जो कि इंस्पेक्टर हैं और SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद के, और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कावड़ यात्रा के दौरान भी माहौल को एकदम शांत और ट्रैफिक को एकदम सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इस पर बहुत सी चर्चा करी है हमने, जानकारी आपके साथ साझा की है, बातें और भी ट्रैफिक के बारे में करेंगे लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक. रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम है सुरक्षा संवाद. मैं हूँ दीक्षा आपके साथ. आज हमारे कार्यक्रम में हमारे गेस्ट हैं अनुज कुमार जी, इंस्पेक्टर फरीदाबाद पुलिस, SHO ट्रैफिक फरीदाबाद. और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं कि शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, क्या प्रबंध किए जाते हैं और क्या क्या रूल्स बने हुए हैं ट्रैफिक को सही रूप से चलाने के लिए और साथ ही एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए. बहुत सारे शिविर हमने लगते हुए देखे हैं, वो उनके रेस्ट के लिए होते हैं, उनके खाने पीने के लिए होते हैं. बहुत जगह पर उनका इलाज भी किया जाता है अगर कोई चोट लग गई, पैरों में तकलीफ आ गई. लेकिन मैं आपसे अब जानना चाहूँगी सर, फरीदाबाद पुलिस द्वारा क्या खास इंतज़ाम किए गए हैं? हर बार हम देखते हैं कि बहुत से इंतज़ाम होते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, इस बार क्या इंतज़ाम किए गए हैं?
1: इस बार हमने आगरा कैनाल जो मार्ग है वो कांवड़ियों के लिए सुरक्षित रखा है, उस पर सिर्फ कांवड़ी यात्री ही चलेंगे. दुर्गा बिल्डर से सेतपुर, पल्ला और खेड़ी पुल, सेक्टर 17 पुल, सेक्टर 14 पुल, तिगांव पुल, बड़ौली पुल होते हुए IMT पुल, चंदावली पुल, सोतई पुल और वहां आगे जाके साहूपुरा से जाट चौक, मलेरना पुल होते हुए जाजरू चौक, फिर केली, फिर साहूपुरा मोड़, साहूपुरा खुर्द मोड़, फिर प्याला और फिर सीकरी मोड़ और इधर आगे डीग पुल तक हमारा जो है रूट है फरीदाबाद का. तो इस पर हमने सभी में जो है 25 नाके जो हमने लगाए हैं, उस चीज में हमारे 300 के करीब ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी और बाकी 2000 समथिंग पूरी जो है पुलिस रहेगी हमारी, जिनमें हमारी क्राइम ब्रांच भी सादा वर्दी में रहेंगी, महिला पुलिस भी रहेगी, ERV और हमारी राइडर भी तैनात रहेंगी.
0: यानी 2000 की तादाद में जो संख्या में पुलिसकर्मी,
1: टोटल हमारे 2000 के करीब रहेंगे, जिनमें 300 हमारे ट्रैफिक पुलिस के रहेंगे.
0: 300 सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो तैनात किए गए हैं
1: और इसमें जो है हमारे 25 नाके जो है लगाए गए, हर चौक चौराहे पर नाके लगाए गए पुलिस के.
0: अनुज जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से, जिनको रूट्स नहीं पता कि कहाँ से जाना है, खासतौर पर से वो लोग जो गाड़ियों से जाते हैं इन जगहों पर या ये आगरा कैनाल रूट का लाभ उठाते हैं हर रोज ऑफिस आने जाने के लिए, और कभी कभी जो लोग पहुँचते हैं उनको कैसे गाइड किया जा रहा है? क्या वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो हाथ से इशारे करके या किस तरीके से उनको गाइड किया?
1: पहले तो हमने उनको ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है, दो तीन दिन पहले हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करी और बाकी अभी बीच में भी, एक दो दिन बाद भी बीच में भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेंगे और अखबार में भी और इनमें भी हमने सभी में लिया है. और वहाँ पे जो हमारी ट्रैफिक पुलिस तो रहेगी, बाकी ये रोड हमने सारा बंद किया हुआ है बैरिगेटिंग करके. अच्छा. इस रोड पे कोई जो है वैसे प्राइवेट वाहन नहीं चले. हम सभी से अपील भी कर रहे हैं और माइक से भी हम उनको बता रहे हैं कि इस रोड को जो है प्रयोग ना करें, आप जो है बाईपास रोड या अन्य रास्ते से जो है वैकल्पिक जो मार्ग है उनसे जाएं. बाकी हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं वो हाथ से इशारा करके भी उनको बता रहे हैं.
0: जी जी, यानी जानकारी दी जा रही है. क्या ये गूगल पे भी मिल जाएगी अगर कोई गाड़ी निकल?
1: हाँ, गूगल पे भी हमने जो डाली हुई है ट्रैफिक एडवाइजरी, गूगल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी हमने डाली हुई है ट्रैफिक, उस पे भी हमने डाला हुआ है.
0: जी जी, अगर कोई गूगल मैप पे सर्च करता है तो वहाँ पर उसे वो रास्ता बंद दिखाई देगा अगर वो गाड़ी लेकर आता है तो, पूरे तरीके से वो बंद रहेगा सिर्फ कांवड़ियों के लिए. या सर, इसमें ये भी जानना चाहूंगी कि कई लोग पैदल वैसे भी आ रहे होते हैं, क्या उनके लिए भी अलाउड है ये?
1: नहीं, वो हमने अभी तो फिलहाल ये कांवड़ यात्रियों के लिए 30 जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रियों के लिए रिजर्व रखा हुआ है. बाकी और भी हैं जो पब्लिक वहाँ से है तो हम उनको इशारा कर रहे हैं डाइवर्जन के लिए कि आप दूसरे रूट को प्रयोग करो.
0: जी, यानी अगर कोई पैदल या साइकिल पे भी आना चाहता है तो उसके लिए वो रास्ता नहीं है, वो ये सिर्फ
1: कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित है.
0: जी जी, तो कोई भी व्यक्ति, कोई कांवड़ यात्री है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि फरीदाबाद में से अगर गुजरना है तो आगरा कैनाल वाली जो रोड है उसी का ही इस्तेमाल करें, वो आपके लिए रिजर्व की गई है. इसके अलावा भी सर, अगर कोई ऐसा रूट, कोई ऐसी सड़क जो खासतौर पर से इनके लिए रखी गई है, ये तो एक लंबा पैसेज है जो सीधा सीकरी तक जा रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होकर, शहर के बॉर्डर से शुरू होकर दूसरे बॉर्डर तक है, क्या इसके अलावा भी कोई और ट्रैक बनाए गए हैं?
1: और ये बनाए गए हैं, अगर कोई बदरपुर बॉर्डर आश्रम की तरफ से जैसे आ रहे हैं तो बदरपुर बॉर्डर से आउटर बाईपास होते हुए मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के नीचे जो सर्विस रोड बनाई हुई है वहां से भी निकल के और वो अपने कैली होते हुए, चंदावली कैली होते हुए और जो है सीकरी अपने जा सकते हैं.
0: जी, अगर कोई शहर में एंटर कर रहा है फरीदाबाद NIT की तरफ आ रहा है या सेक्टर्स की तरफ जा रहा है तो वो कहाँ से आए, उसके लिए कोई रास्ता?
1: वो है हमारे यहाँ 28-29 से होते हुए बड़खल चौक, बड़खल चौक से अपना अनखीर होते हुए और बड़खल गांव होते हुए भांकरी, पाली, ध्वज होते हुए सोना की तरफ वो जा सकते हैं.
0: जी जी, यानी जहाँ भी जाना चाहते हैं वो फिर बीच में शहर में से जा सकते हैं, लेकिन अगर वो शहर को क्रॉस करना चाहते हैं,
1: जिनको सोना की तरफ जाना है वो पाली ध्वज होते हुए वहाँ जा सकते हैं मडखल चौक से।
0: जी जी।
1: और जो अगर जिनको सीधा जाना रहो हाईवे पर आ जाते हैं नेशनल हाईवे बदरपुर बॉर्डर से और सीकरी तक नेशनल हाईवे से, उनके लिए हमने अलग से एक लेन बनवाई है तो उस लेन से वो जाके जा सकते हैं।
0: जी जी। ये थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप लेन के बारे में हमें थोड़ा बताएं क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं जिनको नहीं जानकारी होगी, कहाँ से एग्जैक्टली शुरू होकर कहाँ तक ये लेन?
1: ये बदरपुर बॉर्डर से है, वैसे हम उनके कोण लगाएंगे नेशनल हाईवे से मिलके हमने उनको किया है कि वहाँ कोण लगाएंगे उसके साथ साथ, और कोण लगा के रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगा के और ये सीकरी तक जो है लगाएंगे।
0: जी। और दिन रात यहाँ पर
1: ट्रैफिक पुलिस और वैसे लोकल थानों की पुलिस दिन और रात ड्यूटी पे रहेगी, शिफ्टों में रहेगी, दिन में अलग शिफ्ट रहेगी रात को अलग शिफ्ट रहेगी।
0: जी जी। यानी 24 घंटे यहाँ पर
1: 24 घंटे 11 अगस्त तक ड्यूटी रहेगी।
0: तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और इस ऐप में पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको फरीदाबाद पुलिस के साथ हुए ये संवाद यानी सुरक्षा संवाद कार्यक्रम के काफी एपिसोड्स मिल जाएंगे जिनको आप कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने शहर की सुरक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद सपोर्टेड बाय फरीदाबाद पुलिस। और फरीदाबाद पुलिस से आज हमारे बीच हैं एसएचओ ट्रैफिक फरीदाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार जी, और इनसे जान रहे हैं हम ट्रैफिक के कुछ खास रूल्स, चालान और एक्सीडेंट्स को कम करने के बारे में, उठाए गए प्रयासों के बारे में।
1: सर, आपने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मी काफ़ी लगाए गए हैं, और महिला पुलिसकर्मी जो है वो एक मुझे लगता है कि एक जो अगर कोई महिला जा रही है, वैसे तो बहुत कम होती हैं महिलाएं जो जाती हैं कांवड़ यात्रा में, पर फिर भी अब जागरूकता बहुत बढ़ गई है, बहुत सी महिलाएं जाने लग गई हैं, बच्चे बहुत जाने लग गए हैं, सो उनको किस प्रकार की सेफ्टी सिक्योरिटी दी जा रही है, महिला पुलिस के साथ क्या सुविधा दी गई?
2: महिला पुलिस भी उन पर जैसे शिविर लगे हुए हैं, ये सामाजिक संस्थाएं जो अपने लगा रही हैं शिविर, तो वहाँ पे हमारी महिला पुलिस भी वहाँ रहेंगी, और उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी और उनकी हेल्प के लिए भी, कोई इस तरह की है तो उनकी जो पूरी हेल्प भी हो देते हैं। और बाकी हमारी ईआरवी भी है, राइडर भी हमने वहाँ पे लगाई हुई है
1: जी, किसी तरीके की आपात स्थिति में मदद उनको की जाएगी।
2: बाकी उन पे हमने फायर ब्रिगेड भी, जो शिविर है उनके पास हमने फायर ब्रिगेड लगाए हैं, फायर ब्रिगेड है, क्रेन है, एम्बुलेंस भी वहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि उनको किसी को कोई दिक्कत भी होती है तो उनको जो दवाइयाँ उसी टाइम पे मिल जाए।
1: जी जी, यानी किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए आपकी तैयारी पूरी तरीके से है। सर, ये तो बात हो गई कांवड़ यात्रा की, जो अपने आप में पूरे, मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे साल भर का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, एक बहुत बड़ा पर्व होता है जिसको कई दिनों तक मनाते हैं, जैसे 30 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक आपने कहा ही है, और यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु जाते हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन अब आम जनता की बात करते हैं, शहर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये रूट तो आपने विस्तार से बता दिया, तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो ऑफ कोर्स ये जान गए होंगे कि कौन कौन से रूट जो है वो बनाए गए हैं, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत आई है तो 112 पर आप कॉल कीजिए, आपको तुरंत सहायता मिल जाएगी। लेकिन अनुज जी, अब मैं जानना चाहती हूँ फरीदाबाद की ट्रैफिक के बारे में। फरीदाबाद का ट्रैफिक ऐसा है जो आज से कुछ साल पहले, अगर हम 20 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें, तो इस शहर में ट्रैफिक जाम लगता ही नहीं था, लोगों को दिल्ली जाकर ट्रैफिक जाम मिलता था, लेकिन फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम नहीं मिलता था। बट अब ट्रैफिक की स्थिति यह है कि हर फ्लाईओवर पे ज़रा सी बारिश आ जाती है तो ट्रैफिक मिल जाता है, और घंटों का ट्रैफिक मिलता है। तो आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, एक पुलिस ऑफिशियल के तौर पर आपसे जानना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा क्या स्थिति है जो परेशान करती है ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक के मामले में?
2: अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी भर जाता है रोड पे, तो उसी पानी से बचाने के लिए लोग जो है एक ही लेन में गाड़ी जो है चलाते हैं, जिससे ट्रैफिक जो है धीरे धीरे चलता है, बिल्कुल जाम तो नहीं होता लेकिन स्लो ट्रैफिक हो जाता है, वो धीरे धीरे चलता है, वो पानी में कोई भी अपनी गाड़ी जो है लेकर नहीं चलता। और अब से 10-15 साल पहले की बात करें तो फरीदाबाद में इतने ज्यादा व्हीकल नहीं थे, अब हर घर में शायद 2 या 3 गाड़ी मिल जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: अब वो सारी गाड़ी जब चलेंगे रोड पर तो आएंगी तो
1: ट्रैफिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन स्लो ट्रैफिक है, जाम यहाँ फरीदाबाद में है नहीं कहीं भी,
1: इतना ज्यादा नहीं मिलता है जैसा आप गुड़गांव से आते हुए या फिर दिल्ली में देखते
2: हैं। स्लो ट्रैफिक है, स्लो तो हो जाएगा लेकिन ये एक जाम नहीं है कहीं पर,
1: बहुत ज्यादा जाम नहीं मिलता। बिल्कुल सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, बारिश की आपने बात करी, तो अभी हाल ही की कुछ पिक्चर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल सी परेशानी भी है। फुट ओवर ब्रिज के नीचे बहुत से बाइक सवार व्यक्ति जो हैं वो खड़े हो जाते हैं नेशनल हाईवे पे बारिश से बचने के लिए। अब वो तो अपना बचाव करते हैं, लेकिन पीछे जो ट्रैफिक आ रहा होता है उनके लिए एक लेन भी नहीं बचती है निकलने के लिए।
2: ये है, इसमें बारिश जब आती है, बिल्कुल ये आपने सही कहा, बारिश जब आती है तो फुट ओवर ब्रिज है उनके नीचे जो बाइक वाले हैं वो खड़े हो जाते हैं, और वो जो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उसके लिए जगह नहीं बचती। तो वैसे हमने अपनी विक्टर छोड़ी हुई है, हमारी 6 विक्टर हैं, वो गाड़ी उनको जाती है, उनको जाके साइड में करा के उनको जो है साइड करती हैं, ये अपनी यहाँ से साइड से इनको पीछे वाला जो व्हीकल है उसको जो जाने दो। हमने अपनी 6 गाड़ी लगाई हुई है, विक्टर बोलते हैं उनको, हमारी जिप्सी है, ट्रैफिक की है, तो वो हमने लगाई हुई है।
1: जी सर, एक चीज़ बहुत कॉमन है हमारे शहरों में, पूरे भारत की बात करूँगी, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के मामले में अगर घर से थोड़ा सा पास कहीं जाना है तो हर व्यक्ति यही कहता है, अरे हेलमेट क्यों लेके जाना है, यहीं तक तो जा रहे हैं, मार्केट तक तो जा रहे हैं, या गाड़ी अगर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते कि ये साथ वाले गली में ही तो जाना है या बाहर तक ही तो जाना है, सीट बेल्ट क्यों लगानी है, दिल्ली में लगाएंगे सीट बेल्ट या गुड़गांव में लगाएंगे सीट बेल्ट, तो ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, मैंने बहुत लोगों में देखी, आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए।
2: यहाँ तो ये है कि वो जो ये शॉर्टकट मारने के चक्कर में बल्कि बहुत दुर्घटना होने की वो रहती है, जो ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं ये सबसे खतरनाक है, ये अपनी तो जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरे सामने वाले की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ये एक मिनट जल्दबाजी के चक्कर में इनको अपनी जान की कीमत का नहीं पता है, जान कितनी कीमती है
1: गलियों में इधर उधर सब
2: गलियों में। हाँ, ये अपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वैसे तो हम इनके जो है चालान कर रहे हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के, और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान करके बल्कि हम उन पर डेंजरस ड्राइविंग के भी वो लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग इससे बाज नहीं आ रहे, बहुत जो है यहाँ है जो हमारे रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो करते हैं।
1: तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग आपके हिसाब से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम,
2: रॉन्ग साइड बहुत ज्यादा ये समस्या है यहाँ की। अभी हमने जून के महीने में 4,075 रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान करे हैं,
1: सिर्फ जून जून में
2: 4,075 में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान करे हैं, और उनके साथ हम अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग जो हमारे मुंबई वडोदरा पे और इन पे हैं उसमें भी डीजी साहब ने मीटिंग में भी कहा था कि उनमें जो है उनको जो है इम्पाउंड करो व्हीकलों को, तो हम इम्पाउंड भी कर रहे हैं उनको।
1: जी जी, ये मैं आपसे जानना चाह रही थी,
2: व्हीकल को इम्पाउंड भी कर रहे हैं हम उनको
1: जी,
2: जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, डेंजरस ड्राइविंग भी हम उन पर जुर्माना भी लगा रहे हैं और उनको इम्पाउंड भी कर रहे हैं।
1: जी, जुर्माने की बात सर आपने करी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में रेड लाइट्स पे इतनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, इतनी रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है कि हर इंसान इससे कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है कि देखता है वो अपनी नज़रों से, जो ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहा है वो देखता है कि साथ वाला रॉन्ग साइड निकल गया है और थोड़ी देर के लिए भी उसमें क्षमता नहीं है रुकने की, सब्र नहीं है, तो इसका क्या चालान है सर?
2: वैसे तो हमने अभी यहाँ पे रेड लाइट जंप के जो है चालान भी हम कर रहे हैं और रॉन्ग साइड ड्राइविंग के भी चालान कर रहे हैं। पहली बार में अगर कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो 500 रुपए का उसका चालान है,
1: सिर्फ 500।
2: और वो दूसरी बार अगर वो जुर्माना वो करता है ऑफेंस करता है तो फिर वो 1500 रुपए का है, लेकिन हम उस पर डेंजरस ड्राइविंग हम लगाते हैं तो उसका 5,000 रुपए का चालान है।
1: अच्छा, जैसे एक्सप्रेसवे पे
2: एक्सप्रेसवे पे अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग में आपके, तो उसके साथ हम डेंजरस ड्राइविंग लगाएंगे तो 5,500 रुपए का चालान होगा पहली बार।
1: यानी थोड़ा सा कट बचाने के लिए कि थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे चले, यू टर्न लें, उसकी जगह 5,500 रुपए आप लगा देंगे। और ये कितना डेंजरस है वैसे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग अपने आप में सबसे ज्यादा डेंजरस ड्राइविंग है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर 80-90-100 से नीचे कोई गाड़ी नहीं चलती है,
2: 100 से 120 की उसमें स्पीड में गाड़ी चलती है, तो उसमें अगर आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग करेंगे तो वहाँ आपको एक्सीडेंट का पूरी संभावना और वहाँ भी जान भी जा सकती है।
1: जी बिल्कुल,
2: ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से वहाँ बहुत एक्सीडेंट भी हुए हैं।
1: जी, एक्सीडेंट बहुत सारे हुए हैं और इनसे बचने के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करनी जरूरी है। मुझे तो लगता है कि स्ट्रिक्टनेस हर जगह होनी चाहिए। 5,500 रुपए का मिनिमम चालान है अगर आप एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप शहर में कहीं कर रहे हैं तो पहली बार पकड़े जाते हैं तो 500 रुपए, और दोबारा पकड़े जाते हैं तो 1,500 रुपए, और गाड़ी भी आपकी इंपाउंड हो सकती है अगर आपने बार बार यही गलती दोहराई तो। अगर एक्सप्रेस वे पर आप रॉन्ग साइड लेकर जा रहे हैं और ये डेंजरस ड्राइविंग में आता है तो आपकी गाड़ी को पुलिस इंपाउंड कर सकती है, उनके पास पूरा अधिकार है।
0: तो दोस्तों, बातों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 8010781078 पर। मैं हूं दीक्षा आपके साथ।

0: हमारी सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम होनी चाहिए और यही प्रयास रहता है फरीदाबाद पुलिस का भी, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर एज अ नॉलेज पार्टनर। और आज सुरक्षा संवाद में हमारे बीच हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार, SHO ट्रैफिक फरीदाबाद, और मैं हूं दीक्षा। आपके साथ बातें चलनी है आप ही की सुरक्षा के बारे में। जब आप सड़क पर निकलें तो आपको सुरक्षा महसूस हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो तेज गति में गाड़ी चलाते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था को कई बार खराब कर देते हैं। तो क्या कदम उठाती है फरीदाबाद पुलिस, ऐसे ही कुछ सवाल और जवाब भी।
1: सर, अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हेलमेट की बात हम कर रहे थे, बहुत सारे लोग टू व्हीलर पे जाते हैं, खासतौर पर से आजकल जो ईवी चल गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इनमें इनकी स्पीड बहुत तेज नहीं होती है, या लोगों को लगता है पास ही जा रहे हैं तो हेलमेट की क्या जरूरत है, ये बाजार तक ही तो जा रहे हैं, क्या ऐसे में भी चालान काटा जा सकता है? ऑल्दो काटते नहीं है, ज्यादा चालान किया नहीं जाता है क्योंकि सबको ही पता है आसपास है, बहुत तेज नहीं चला रहे हैं, बट चालान की प्रावधान तो रखा गया है?
2: नहीं, वो तो अगर हेलमेट नहीं लगा के चलेंगे तो चालान का तो प्रावधान है, क्योंकि वो अगर वो चलने, वो भी तो उनके सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो जो है हेड इंजरी से ही होते हैं, और हेड इंजरी जानलेवा है, तो हेलमेट तो सभी के लिए जरूरी है।
1: जी,
2: हेलमेट तो सभी के लिए जरूरी है, और फिर कुछ लोग तो हेलमेट को ऐसे हाथ में टांग लेते हैं, हाँ। या फिर पुलिस को देख के वो हेलमेट लगा लेते हैं,
1: हाँ।
2: जबकि हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए।
1: मुझे एक्चुअली में आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग हेलमेट क्यों नहीं लगाते, इतनी उलझन क्यों है? जिंदगी बचाना जरूरी है या बालों को बचाना?
2: जिंदगी बचाना जरूरी है, जिंदगी बचाना। ये हेड इंजरी का कारण जो है, सबसे पहले सड़क पर गिरने से हेड इंजरी होती है, और उसी से जान जा सकती है,
1: मतलब ज्यादातर एक्सीडेंट्स इन चीजों से रोके जा सकते हैं। सर, बहुत सारी लेडीज नहीं लगाती हैं हेलमेट, बहुत सारी लड़कियां जो हैं कॉलेज की बहुत तेज चलाती हैं, और आजकल तो लोगों ने फोन भी साथ साथ देखना शुरू कर दिया, फोन उठाना, बात करें, एक हाथ से स्कूटी चल रही है, एक हाथ फोन पे कान पे लगा हुआ है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे?
2: ये जो मोबाइल यूज करते हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक मोबाइल यूज भी है, उस पे मोबाइल से बात करेंगे तो उसका ध्यान जो है भटक जाएगा, उसका ध्यान अलग हो जाएगा। मोबाइल उसके यूज के हम जो है वो चलान भी करते हैं, जो कोई हम ऐसे देखते हैं तो उसका मोबाइल यूज के भी चलान जो करते हैं।
1: कितना कितना चलान?
2: 2000 रुपए तक जो है इसका चलान है,
1: 2000 रुपए तक मोबाइल यूज का चलान है। और मोबाइल तो मैंने सर देखा है कि ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा बंदा गाड़ी में यूज कर रहा होता है या बाइक पे यूज कर रहा होता है।
2: उसका हम अगर फोटो ले लेते हैं और जो उसका चलान करते हैं, गाड़ी को रुकवा के फिर उसका चलान करते हैं।
1: अच्छा, और चलान वहाँ पर भी दे सकते हैं या सीधा कोर्ट में जाकर देना?
2: सीधा वहाँ 3 महीने तक हमारे यहाँ रहता है चलानिंग ब्रांच में, सेक्टर 12 में, और उसके बाद हम 3 महीने बाद उसको वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं कोर्ट में।
1: जी जी जी। तो ये तो अपने आप में देखिए, 2000 रुपये आप सिर्फ एक हेलमेट ना लगाने का दे रहे हैं, उससे अच्छा आप 2000 रुपये का हेलमेट खरीदें, उसका इस्तेमाल करें, खुद भी सेफ रहें और बाकी लोगों को भी सेफ्टी प्रदान करें। सर, एक और बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है स्कूल के बच्चे जो 18 साल के नहीं हुए हैं वो बाइक या गाड़ियाँ चला रहे हैं, और ऐसे में वीडियोज़ आती हैं बहुत सारी, पुलिस वीडियो पर एक्शन भी लेती है, उनको पकड़ती भी है। हाल ही में थोड़े टाइम पहले ही अभी बच्चे गाड़ी में हुड़दंग करते हुए जा रहे थे, ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई बहुत ज़्यादा, उनको आपने पकड़ा भी, बच्चे जो थे कॉलेज के या स्कूल के बच्चे, अभी 18 साल के नहीं, और अपने घर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ला के इस तरीके से चला रहे थे। सर, इसका क्या चालान है? क्या बच्चों पे एक्शन लिया जाता है या पेरेंट्स पे एक्शन लिया जाता है?
2: ये तो जो नाबालिग बच्चों को जो अपने गाड़ी दे रहे हैं, ये तो हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को जो है गाड़ी ना दें। अब तो ये प्रावधान आया है कि उसमें जो पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी, अगर पेरेंट्स बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अपने को देंगे तो उनको पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी, ये कानून आया है।
1: क्या कार्रवाई होती है सर पेरेंट्स?
2: इसमें वही जुर्माने का ही प्रावधान है।
1: क्या ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स को अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचता है, एक्सीडेंट हो जाता है सपोज, तो ऐसे में पेरेंट्स को भी जो है जेल वगैरह जाने का?
2: हाँ, पेरेंट्स को भी जो जिनकी गाड़ी है और जिन्होंने अपने नाबालिग बच्चों को, ये देखते हुए भाई ये नाबालिग हैं ये गाड़ी नहीं चला सकेंगे और फिर भी उनको बच्चों को गाड़ी दी है, तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी फिक्स करेंगे और उनको जो है उसमें जो है दोषी माना जाएगा।
1: जी जी जी। सर, स्कूल वैन के बारे में बात करना चाहूँगी, ऑटोज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि इनमें जब बच्चे जाते हैं स्कूल के तो बहुत ज़्यादा भर के जाते हैं, क्या इसमें कितने बच्चे बैठने चाहिए और क्या इन पर भी कोई चालान होता है? क्योंकि ये CNG या LPG से चल रही होती हैं, सिलेंडर लगे होते हैं, फिर भी छोटे छोटे बच्चे उन गाड़ियों में भरे हुए होते हैं।
2: वैसे तो ये है कि ये जो इको वैन है ये कॉमर्शियल यूज में आती है, कॉमर्शियल यूज में जो है ये इनके चलान होते हैं 10,000 रुपये का चलान है, इसका, जो कमर्शियल यूज में अगर इस तरह बच्चों को ऐसे भर के लिए जाएंगे तो उसमें कमर्शियल यूज का 10,000 रुपए का चालान है।
1: 10,000 रुपए का चालान है और गाड़ी उनकी पर्सनल नंबर पे होती,
2: गाड़ी उनकी पर्सनल नंबर पे होती है, कमर्शियल यूज करते हैं तो उस पर 10,000 का चालान है,
1: जो अपने आप में बड़ा चालान है।
2: हाँ, अपने आप 10,000 रुपए कोई मामूली नहीं है। और उनके जो हम चालान करते हैं जो ये अपने इको वगैरह में जो बच्चों को लेकर जो चलते हैं, वैसे तो उनकी जो बस है बस में अपने बच्चों को लेकर जाएं, स्कूल की बस जो
1: है ज्यादा सेफ है, ऑफकोर्स। हाँ, हाँ।
2: ये तो नहीं है, और ये इसमें टू टू उसके जो भर लेते हैं बच्चों को, तो इस पर जो हम चालान करते हैं तो इसका 10,000 का चालान है कॉमर्शियल यूज का, इको का।
1: यानी अगर आपने पर्सनल गाड़ी ली हुई है, प्राइवेट नंबर है और आप उसको कमर्शियल में इस्तेमाल करें बच्चों को लाने ले जाने के लिए, तो 10,000 रुपए का चालान आपका, चाहे उसमें 4 बच्चे बैठे हो चाहे 14 बच्चे बैठे हो, वो चालान हो सकता
2: है। उसको आप कमर्शियल यूज में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो आपकी पर्सनल की है।
1: जी जी जी, तो इसको कमर्शियल में लेंगे तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, सर एक समस्या बहुत ज्यादा आती है, वो आती है सीट बेल्ट को लेकर। मैं सीट बेल्ट की बात सर इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सीट बेल्ट चाहे थोड़ी देर के लिए हटाया हुआ हो, एक्सीडेंट होने पर वो इतना गंभीर हो जाता है कि जानलेवा भी साबित हो जाता है। सीधा सिर जो है वो टकराता है सामने शीशे से, और लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है रूफ खोल के, सनरूफ खोल के और खड़े हो जाते हैं और एक्सप्रेस वेज पे गाड़ियां चल रही होती हैं। सीट बेल्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए सर, क्यों लोग नहीं लगाते, क्या धारणा होती है उनकी मानसिक?
2: वैसे तो देखो सीट बेल्ट लगानी चाहिए सबसे पहले, जब अगर आपकी गाड़ी कहीं टकराएगी

0: तो आपका अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी तो आप सेफ हैं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो सबसे पहला आपका सिर जो है उसमें लगेगा डैशबोर्ड में, और जो वहीं उसमें जो है बहुत ज़्यादा चोट लगने की रहेगी। हाँ, तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा सभी को कि भैया अपनी गाड़ी में बैठें, गाड़ी में बैठते टाइम सबसे पहले सीट बेल्ट ही लगाएं।
1: आजकल तो गाड़ियों में अलार्म भी बजता है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
0: तो गाड़ी में वो तो अलार्म बजता रहता है, तो आप उसको देख के भी, अगर आपने नहीं भी लगाई है तो भी अलार्म देख के कि आपने कुछ सही नहीं किया तो अपना सीट बेल्ट जो है लगाएं।
1: बिल्कुल, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने अच्छे पैसे देकर आपने खरीदी है तो उसके सीट बेल्ट का लाभ उठाएं।
0: और सनरूफ जो अपने खोल के जो चलते हैं, जिसे आउट ऑफ बॉडी पार्ट्स जो ऐसे चलते हैं, तो हम तो उनके जो स्टंट करते चलते हैं, हम तो उनके जो है चालान करते हैं।
1: कितना चालान करते हैं? अभी हाल ही में भी हुआ है, कुछ वीडियोस वायरल
0: हुई, वीडियो जो वायरल हुई है उसमें 10,000 रुपए का चालान,
1: 10,000 का
0: टोटल, 10,000 के चालान हमने किए हैं
1: जी।
0: जो स्टंट करते हुए जो चल रहे हैं, और ऊपर सनरूफ में अपने जो बच्चे खड़े किए हुए हैं या और एक्शन करते चलते हैं, स्टंट करते हैं, तो हमने 10,000 तक उनके चालान किए हैं।
1: तो काफी बड़ा चालान हो,
0: काफी बड़ा चालान हो जाता है, लोगों को सुधारने के लिए भी है और कि ये जुर्माने से जो है आगे से ऐसा ना करें
1: जी। बिल्कुल,
0: ये जानलेवा हो सकता है।
1: बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। और हाल ही में सर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक्सप्रेस वे पर एक गाड़ी के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ के गया था, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं कि ऐसे जो स्टंट करते हैं आजकल के बहुत सारे लोग, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए स्टंट करते हैं, कुछ तो मजबूरी में चलिए ऊपर बैठ गए, बट वो भी एक कोई सेफ तरीका नहीं है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासतौर पर से उन यंगस्टर्स को, उन जवान बच्चों को जो करते ही रहते हैं इस तरीके के स्टंट?
0: देखो, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी इस तरह के जो स्टंट ना करें, जो भी अपने जिसमें गाड़ी अपने चलानी है या बैठ के आना है, तो अपने सही से सीट बेल्ट लगा कर आराम से चलें। ये उस पर जो खड़े होंगे चलेंगे या गाड़ी के जो उससे बाहर जो खड़े होंगे तो उन पर चलान होगा। और अभी हमने KGV पे भी इस तरह का आदमी बैठ के जा रहा था, उन पर मुंबई वडोदरा पे भी मैंने जो है चलान किए हैं उनके।
1: आपने चलान किए 10,000 के?
0: हाँ, उनकी वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो हमारे पास आई है, हमने फिर उनके जो चलान करे।
1: तो आप जैसे कभी वीडियो देख रहे हैं और आपको पता चल गया ये तो फरीदाबाद की वीडियो है, तो आप फिर उस गाड़ी को ढूंढते हैं नंबर से?
0: हाँ, उस गाड़ी को हम नंबर से सर्च करते हैं और उसका देखते हैं कहाँ से ये वीडियो वायरल हुई है, फिर उसकी लोकेशन और टाइमिंग लेके फिर उसका चलान करते हैं।
1: तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, कृपया करके चलान से बचने के लिए ऐसे स्टंट करिए ही मत। क्यों आप अपने 10,000 रुपए लगा रहे हैं?
0: हम इनको सर्च करते हैं किस डेट का है, कब इन्होंने ये स्टंट किए हैं, तो उसका डेट टाइम और लोकेशन लेके उसकी उस दिन का फिर हम चलान करते हैं।
1: क्या बात है, मतलब ये थोड़ी कोशिश है सुधारने की लोगों को
0: जी।
1: बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम है सुरक्षा संवाद, और सुरक्षा संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमारे साथ जुड़ते हैं फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी और बात करते हैं आप ही की सेफ्टी के बारे में, चाहे वो हो ट्रैफिक से जुड़ी हो, चाहे वो महिला सेफ्टी हो, या फिर बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात हो, या फिर साइबर फ्रॉड को रोकने के बारे में। हमारे एक्सपर्ट ऐसे ही हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार, जो कि SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद पुलिस में। आइए जानते हैं और भी बहुत सी बातें रोड सेफ्टी के बारे में।
1: सर, मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं सुधार के बारे में, लेकिन शहर में बहुत सारी ऐसी जगहें जहां पर हमको ट्रैफिक सिग्नल में कैमरे लगे हुए मिल रहे हैं, क्या ये कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हैं?
2: हमारे यहाँ 1300 कैमरे हमारे लगे हुए हैं स्मार्ट सिटी के, रेड लाइट पे लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ कैमरे अभी कुछ खराब क्यों आ रही है, उनके लिए हमने पत्राचार किया हुआ स्मार्ट सिटी को, और बाकी वैसे
1: ज्यादातर
2: कैमरे ठीक हैं। जो हमें पता लगता है कि भाई यहाँ रेड लाइट खराब है या यहाँ कैमरे खराब है, तो हमको स्मार्ट सिटी से जो है ठीक कराते हैं।
1: जी जी, स्मार्ट सिटी से वो कैमरे आप ठीक कराते हैं, और मतलब वो सारे काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अक्सर हमें ये कहते हैं मैडम ये कैमरे काम नहीं करते हैं।
2: उनके दिमाग में ये है कि गलतफहमी है उनको कि भाई कैमरे बंद हैं या कैमरे काम नहीं करें, जबकि ज्यादातर कैमरे चालू हैं
1: और सब दिख रहा है,
2: सब दिख रहा है। मान लिया अगर कोई हो भी ज्यादा खराब, तो हम उनके लिए लेटर लिख के उनको ठीक कराते हैं।
1: जी जी। सर, एक आजकल लोगों के पास कई बार चालान आता है, गलती से आ जाता है, गाड़ी कहीं और खड़ी है, चालान आ गया है, तो उसमें कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो?
2: वो अगर इस तरह की कोई आ जाती है, या तो कोई टेक्निकल मशीन में फॉल्ट हो जाता है, या कैसे जैसे हम एक दबाना होता है तो दो दब जाता है वहीं की वहीं, तो उससे टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, तो हमारे DCP ट्रैफिक साहब है, उनको जो है आप मेल भी कर सकते हैं और उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो उसमें अगर वो जो टेक्निकल जो हुई है कमी, तो उसको जो है गलती जो है ठीक हो जाएगी।
1: जी जी। सर, एक और जानकारी लेना चाहूंगी, अगर हम बाईपास से जाते हैं तो वहां पर अभी रेड लाइट्स नहीं लगी हैं बहुत सारी जगहों पर, और लोगों को बहुत दिक्कत आती है वहां से क्रॉस करने में, एक डर भी बना रहता है खासतौर पर से रात के समय जब नीचे से गाड़ियां तेज आ रही होती हैं सुबह सुबह, सो क्या यहां पर आगे आने वाले समय में ट्रैफिक लाइट्स लगने वाली हैं?
2: हाँ, अभी हमने इनको जो है लेटर लिखा हुआ है NHAI को
1: जी,
2: और अभी मीटिंग में भी हमारे इनसे बात हुई है, तो ये लगाते हुए आ रहे हैं पीछे से, ये अपने आगरा फिरोजपुर झिरका की तरफ से, जैसे मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे, तो उधर से ही लगाते हुए आ रहे हैं, और यहाँ भी जल्दी हमारे लग जाएगा, और उसमें जो है ANPR के कैमरे भी लगेंगे, जिससे ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा ओवर स्पीडिंग का भी।
1: ओके, यानी ओवर स्पीडिंग का भी चालान कटेगा और ट्रैफिक सिग्नल सही तरीके से काम करेंगे तो सुचारू रूप से ट्रैफिक भी चलेगा।
2: वैसे तो हमारी अब भी इन रूट पे जैसे गुड़गांव रोड पे, वहाँ पे भी हमारी इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी होती है ओवर स्पीडिंग के लिए, और यहाँ बदरपुर बॉर्डर फ्लाईओवर पे भी हमारी रहती है, कैली पे भी रहती है, तो यहाँ पे हमारी ओवर स्पीड की इनके इंटरसेप्टर हमारी गाड़ी रहती है, जो ओवर स्पीड के जो चलते हैं तो उनके जो है चालान करते हैं।
1: जी, बहुत सारे लोगों को सर ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट समझ नहीं आता, उनको लगता है कि 60-70-80 पे गाड़ी चलाना शहर में आम बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, स्पीड कितनी रखनी चाहिए हमको?
2: देखो, अगर ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे, उस पे तो हम 100 की स्पीड से अगर आपने गाड़ी चलाई है तो उस पे हम जो है चालान करते हैं, ओवर स्पीड का 2000 का चालान है,
1: 2000 का चालान है 100 से ऊपर जाने का, जैसे 80 तक ज्यादातर
2: और इसी तरह नेशनल हाईवे पे है, नेशनल हाईवे वैसे 65 की गाड़ी जो है चलनी चाहिए,
1: लेकिन 65 पे बहुत कम चलती है।
2: हाँ, 65 पे जो इससे आगे चलेगा वो हमारी इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी होती है और वो कैच कर लेती है स्पीड, वो कैच कर लेती है और उस पर फिर ऑटोमेटिक उनके घर मैसेज पहुंच जाता है चलान का।
1: जी जी जी। और जैसे हम सूरजकुंड रोड से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि रेड लाइट है, कई बार काम भी करती है, चलती भी है, कई बार नहीं भी चलती है, तो ऐसे में क्या स्पीड रखनी चाहिए? 60 के आसपास?
2: 60 के आसपास, हाँ, ये तो वन वे है, 60 के आसपास जो 60-65 पर ही रखनी चाहिए, इससे ज्यादा फिर इस पर मोड भी है वो वैसे भी रिस्की है।
1: जी बिल्कुल,
2: इस रूट पे तो हाँ पहाड़ों पर वहाँ तो मोड भी बहुत है।
1: जी बिल्कुल, तो स्पीड का थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है ओवर स्पीडिंग की वजह से, अक्सर हमने देखा है कि सामने खड़ा हुआ ट्रक या फिर गाड़ी हमें नजर भी नहीं आती है और एक्सीडेंट बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए ओवर स्पीडिंग से बचने के बारे में जरूर एक बार सोचिए, और चालान 2000 रुपए का है, उससे भी आपको खुद को बचाना है तो स्पीड को कंट्रोल में रखिएगा। अनुज जी, चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी शहरवासियों को जो आपको आज सुन रहे हैं?
2: मैं तो SHO ट्रैफिक होने के नाते यही फरीदाबाद की जनता से अपील करूंगा कि भाई यातायात नियमों का पालन करें, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलाएं, और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करें, यातायात नियमों का पालन करें, तभी जो है सबकी जो जान है तो जहान है
1: जी।
2: सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि आप थोड़ी सी एक दो मिनट की जल्दबाजी के चक्कर में आप अपनी जान गंवा देते हो, एक्सीडेंट हो जाता है और फिर सारी जिंदगी बच्चों को पछताना पड़ता है
1: जी,
2: आपके पीछे भरा पूरा परिवार है। तो मैं तो ये कहता हूँ रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं चलाएं और अपने यातायात नियमों का पालन करें
1: जी, यातायात नियमों का पालन करें। बहुत सारे यातायात नियम है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हुए, ये कुछ भी रैंडमली आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आपसे नहीं पूछा था या आपको नहीं याद है तो एक बार इंटरनेट पर जाकर इन यातायात के नियमों को, इनके साइंस को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि किस प्रकार से इनको फॉलो करना है, अगर किसी तरीके से आप भूल भी गए हैं तो। बहुत ज़रूरी है यातायात के नियमों को फॉलो करना अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए भी जो सड़क पर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख लोग हर साल हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। कभी ये लोग सड़क पर चल रहे होते हैं तो कभी ये लोग खुद की गाड़ी में या बाइक पर होते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो कृपया करके खुद को हमेशा सेफ रखें, यातायात के नियमों का पालन करें। अनुज जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और आपकी दी हुई जानकारी से हमें यकीन है कि बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
1: तो कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात अगले हफ्ते नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड फील लाइव, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम है, हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ, लेकिन आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ ना जिन लोगों में मानवता कूट कूट कर भरी है। देखिए भाई, आजकल की प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ लोगों के पास इतना समय नहीं कि पलटकर किसी के दुखों को देख लें, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मानवता की राह पर चल रहे हैं, और चाहे फिर वो इंडिविजुअल्स हों, एनजीओ

0: या फिर ऐसी संस्थाएं हों जो मानवता की राह पर चल रही हैं, उनके बारे में मैं आप तक न सिर्फ उन्हें मिलवाने की कोशिश करती हूं, लेकिन जानकारी लेकर आती हूं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर रजनीकांत सिंह, एक स्पेशल एजुकेटर। करेंगे डॉक्टर रजनीकांत सिंह जी का स्वागत रेडियो मानवरेष्टा 107.8 एफएम के स्टूडियो में। डॉक्टर रजनीकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: रजनीकांत जी, जिस समय दुनिया भागती है कि एक अच्छा करियर चूज किया जाए, उस समय में आपने स्पेशल एजुकेटर होना चूज किया, मुझे बताइए ये मानवता आपके जीवन में कब आई?
1: मैम, आज से 28 साल पहले जब मैं एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का स्कूल ज्वाइन किया, जो मेरा ट्रेनिंग था, वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें सुनने और बोलने की समस्या थी। उन बच्चों के साथ मैंने जब काम करना शुरू किया तो उन बच्चों को जो मुझसे मिला, उनको बोलने की समस्या थी तो उनको कुछ कुछ यानी कि बोलने के लिए सिखाया गया। और उनके पेरेंट्स जब उन बच्चों को देखा कि किस तरह से बच्चे बोल रहे हैं, किस तरह से वो एजुकेशन अपना ले रहे हैं, तो उन पेरेंट्सों को देखकर और बच्चों की खुशी देखकर मुझ मेरे जीवन में ये विचार आया कि मैं इन बच्चों के साथ ही काम क्यों ना करूं। तब से मैं करीब 28 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूं मैं।
0: क्या बात है। देखिए भाई दोस्तों, कोई एक मोमेंट जरूर होता है जिंदगी का जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है। 28 साल से डॉक्टर रजनीकांत ना सिर्फ इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ना सिर्फ इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ढेर सारे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो विकलांग हैं, चाहे वो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, चाहे फिर वो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं नेत्रहीन, हर तरीके के बच्चों के जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी पहल है, लेकिन इस पहल की मुझे ये लगता है बहुत सारी तारीफ होनी चाहिए। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेष्टा 107.8 एफएम के साथ। वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत सिंह जी के साथ। एक स्पेशल एजुकेटर है और एक ऐसे एरिया में जहाँ बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। डॉक्टर रजनीकांत, किस प्रकार से मदद करते हैं इन बच्चों की आप?
1: जी मैम, जिस फील्ड में मैं अभी हरियाणा पलवल में कार्यरत हूँ, यहाँ पे जो मुझे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनमें से ऑटिज्म है, एमआर जो मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं, प्लस सीपी चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी, उनके लिए हम यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कार्य कर रहे हैं। इसमें कि विशेष शिक्षा उनको देना, किस तरह से उनको, यानी कि छोटी छोटी सी जिसे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं या एमआर हैं, उनको किस तरह से एजुकेटेड एजुकेशन दिया जा सके, उनके साथ और स्पीच थेरेपी जो बोलने का उनमें कमी होता है उसको ठीक करना, एकुपेशनल थेरेपी जो आजकल हमारे यहाँ ऑटिज्म बच्चे जो अभी नया ये आया है सिंड्रोम, जो कि मोबाइल का ही देन है मैम। पहले ऑटिज्म बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन ऑटिज्म बच्चे आज के डेट में 3% लगभग इस तरह के बच्चे हो गए हैं। तो उनके लिए मैं अभी कार्य कर रहा हूँ और अभिभावकों को मार्गदर्शन, उनको जागरूक करना, इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको कहीं पे जॉब के लिए और कहीं बढ़िया, यानी कि उनको गवर्नमेंट जो सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व करवाना, यही है हमारा लक्ष्य में।
0: क्या बात है भाई, कितनी अच्छी बात है कि वो बच्चे हैं जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, आप उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पहल है ये बड़ी खूबसूरत सी पहल है, लेकिन दोस्तों सुनना जितना आसान होता है ना, उसे करना उतना ही मुश्किल। तो किस प्रकार की परेशानियां ये फेस करते हैं और ऐसे किस प्रकार बच्चों के जीवन को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत सिंह जी के साथ, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर हैं। डॉक्टर रजनीकांत जी, वैसे तो लगता है कि स्पेशल एजुकेटर का काम मात्र बच्चों को शिक्षा देना है और उन्हें सही दिशा दिखाना है, लेकिन मुझे बताइए, आप तो ढेर सारे काम करते हैं, बच्चों की बहुत सारी मदद करते हैं, बच्चों का ना सिर्फ रख रखाव करते हैं लेकिन उन्हें जीवन की अलग अलग छोटी बड़ी जरूरतों में भी मदद करते हैं, किस प्रकार करते हैं आप ये सब?
1: जी मैडम, इन बच्चों का जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम कार्य कर रहे हैं, उसमें है कि जो हमारे अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको काउंसलिंग करना, खेल खेल के माध्यम से जो एक नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ समावेश करना, जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं एक सामान्य बच्चा और हमारे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके साथ समावेशित करना, यानी कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे 75% 100% अचीव करते हैं तो उसमें हमारे बच्चे 50% भी कर जाते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे उनके यानी कि मुस्कुराहट है देखने को मिलती है मैम। और जो हमारे टीचर, सामान्य टीचर स्कूलों में लगे हुए हैं, उनको भी हम इन बच्चों के बारे में समझाते हैं, पढ़ाने के बारे में भी बताते हैं किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाया जा सके, और उनको पुनर्वास के लिए भी हम कार्य करते हैं। जैसे कि बच्चे 10वीं 12वीं कर जाते हैं तो उसके बाद है कि कोई प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें भी इन बच्चों को जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं पलवल में, जो हमारे संज्ञान में है, मैंने किया है, वो कुछ बच्चे गवर्नमेंट में भी लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं मैम। उनके पेरेंट्स उन बच्चों को जो देखते हैं खुशी, काम करके कुछ कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ लाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उस खुशी को देखकर मुझे भी खुश होता हूँ कि मैं भी कुछ कार्य अलग से कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर रजनीकांत, किस प्रकार की नौकरियाँ हैं जो कि ये बच्चे कर सकते हैं और किस प्रकार के काम हैं जो ये खुद कर सकते हैं?
1: जी मैडम, ये इस पे है कि डिपेंड करता है कि किस तरह के बच्चे, यानी कि जो हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो सुनने बोलने में असमर्थ हैं, वो हर एक फील्ड में, यानी कि आर्मी में भी लगे हुए हैं, इनकम टैक्स में भी लगे हुए हैं इस तरह के, और लगभग यानी सेक्टर में बच्चे कामयाब हो जाते हैं मैम। अभी गवर्नमेंट का स्कीम बहुत सारे आए हुए हैं, जो कि कोक्लियर इम्प्लांट होता है मैम, जो बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा है आज के डेट में, बट अगर 5 ईयर से पहले उसका असेसमेंट हो जाता है, स्क्रीनिंग हो जाता है कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट से जो इम्प्लांट होता है, मशीन लगाया जाता है, जो 100% वो बच्चा सुनता है, सुनने लग जाता है। उनके साथ मेहनत सिर्फ यही करना पड़ता है कि स्पीच का काम, ऑडिटरी ट्रेनिंग, सुनने का जो अंक ए है उसको डेवलप करना, उसके बाद बच्चे एज ए नॉर्मल की तरह पढ़ना लिखना एज नॉर्मल बच्चे को साथ अच्छे अच्छे स्कूलों में, यानी कि वो बच्चे पढ़ते हैं मैम। पलवल में कई बच्चे हैं जो इम्प्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट करवाए हैं, वो बच्चे आज जो पलवल के टॉप स्कूल है, KCM है, इधर फरीदाबाद का है जो भी स्कूल है, उसमें यानी कि अच्छे रैंक पे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में इस पोजीशन में अपनी क्लास में अचीवमेंट कर रहे हैं मैम।
0: जी रजनीकांत जी, एक और सवाल, जो आप कहते हैं जैसे सेरिब्रल पैल्सी वाले बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जो छोटा मोटा मेंटल रिटार्डेशन है, या फिर अगर मैं कहूँ स्पेशल बच्चे हैं, इन बच्चों का जीवन यापन किस प्रकार से किया जाता है, ये कैसे अपना जीवन निकालते हैं?
1: जी मैम, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पलवल में एक सौर्या फाउंडेशन करके एक NGO काम कर रही है इस पर
0: जी।
1: जो कि बच्चे 18 साल से एभव 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए वहाँ पे यानी कि बोर्डिंग स्कूल टाइप का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोला हुआ है मैम
0: जी।
1: जो कि बच्चे जो जिस लाइक जो बच्चे रहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी मैंने बताया, ऑटिज्म जो अपने आप में लीन रहना बिल्कुल, यानी कि सेंस बहुत थोड़ा सा सेंस होता है
0: जी।
1: बट उनके लिए सौर्या फाउंडेशन बहुत अच्छा, मैं उनका रवि गुप्ता है दिल्ली से ही है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि पलवल में आकर उन्होंने इस तरह का एक NGO स्कूल खोला, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे उसमें लगे हुए हैं, और पहले तो काम सिखाते हैं, उसके बाद कंपनी से उनका टाई अप है, वो सामान देते हैं उसी जगह बच्चे पैकिंग का या कुछ भी सामान होता है जिस लायक जो बच्चे होते हैं उनको काम करवाते हैं और उनको सैलरी भी देते हैं।
0: वाओ,
1: बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, पलवल में इस तरह से एक है मैम सौर्य फाउंडेशन करके, उसमें भी मैं शुरू शुरू में रवि गुप्ता जी मुझे किए थे तो मैं जाकर उनका काफी सपोर्ट किया था, इन बच्चों बच्चे की व्यवस्था किया था, टीचर का भी अरेंजमेंट किया था, अब तो बहुत अच्छा यानी उनका रन कर।
0: पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से इन बच्चों का रखरखाव किया जाता है, ना सिर्फ इन्हें कोशिश की जाती है कि इंडिपेंडेंट बने, लेकिन साथ के साथ ये अपना जीवन बड़ी आसानी से बिल्कुल वैसे ही व्यतीत कर सकें जैसे बाकी सभी लोग करते हैं, ये पूरी कोशिश की जाती है। और इसके लिए खास तौर पर डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक तो होता है आपका 9 to 5 का जॉब, लेकिन दूसरी तरफ ये डेडिकेशन होना जरूरी है कि हमें इनके लिए कुछ करना है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत सिंह। फिलहाल तो ले रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किस प्रकार की चुनौतियां हैं जो इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत सिंह जी के साथ, एक बहुत ही जाने माने स्पेशल एजुकेटर हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक बहुत ही कहना चाहिए नेक दिल इंसान है, जो अलग अलग किस्म के बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं और उन्हें जीवन में एक नई राह दिखाने की भी कोशिश करते हैं। डॉक्टर रजनीकांत, सुनने में तो बड़ा आसान सा लगा कि भाई आपने स्पेशल एजुकेटर बन के आपने उन्हें अलग अलग किस्म के काम सिखाने की कोशिश की, और आज वही बच्चे जैसे सीख जाते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, पढ़ जाते हैं, तो वो आगे बढ़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किस प्रकार की परेशानियां आती हैं इन बच्चों के जीवन में? सबसे पहले तो देखिए, जो एक स्पेशल बच्चा होता है या ऑटिस्टिक बच्चा होता है या सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा होता है या विकलांग बच्चा होता है या नेत्रहीन बच्चा होता है, इनका जीवन ही आसान नहीं होता है। जीवन काफी संघर्ष भरा होता है, तो मुझे बताइए किस प्रकार की परेशानियां चुनौतियां आती हैं इनके जीवन में?
1: मैम, सबसे बड़ी जागरूकता जो समाज, हमारे समाज है, वो उनके साथ इस चीज, इन दिव्यांग बच्चों के बारे में जागरूकता फैलाना ही मेन रूप से है। और विशेष रूप से कि जो इनके लिए संसाधन होना चाहिए, वो अभी तक हमारे जो भी इलाके या जो भी क्षेत्र कहिए, वहाँ पे तक इस पूरे संसाधन नहीं है, और संसाधनों की कमी है और जागरूकता की कमी है। फिर भी जब मैं यहाँ पे 2006 में वर्क करना शुरू किया, काम करना शुरू किया गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उस समय तो कुछ भी नहीं था, मैं इनके बारे में कोई जानते भी नहीं थे कि क्या होता है दिव्यांग, क्या होता है CWSN के नाम, बहुत सारे, बहुत 5-6 साल मेहनत किए, ट्रेनिंग दिए, गाँव गाँव घूमे, सब जाकर इन बच्चों के बारे में पता लगा कि CWSN का मतलब क्या होता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। अब है कि सरकार, मोदी सरकार जी ने इन बच्चों को नाम CWSN या विकलांग छोड़ हटाकर दिव्यांग बच्चे रख दिए हैं। दिव्यांग भी अभी गांव रूरल एरिया में जो हम जाते हैं, तो वहां पे भी शिक्षा कमी है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, वहां पे भी दिव्यांग का मतलब वो नहीं जानते हैं क्या होता है, कुछ परसेंट है जो जानते हैं। तो दिव्यांगता के क्या क्या बेनिफिट है, यानी गवर्नमेंट दे रही है, क्या NGO है, कौन क्या काम कर रहा है, उसके बारे में उनको जागरूक करते हैं। अभी भी इनको बहुत सारी चुनौतियां, घर में ही उनके पेरेंट्स उनको बैठा कर रखते हैं, इनका कोई एजुकेशन नहीं है, कोई वर्क नहीं है, कोई ए नहीं है, लेकिन उनको उनको इसके बारे में समझाते हैं, तब जाकर उनको कुछ लगता कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए भी सरकार या कोई NGO इस तरह से काम कर रहा है कि जो हमारा बच्चा आगे चलकर सेल्फ, यानी कि इंडिपेंडेंस बन सकता है। तो उस तरफ से अभी कमी आ रही है कि संसाधनों की अभाव है, लोगों को जागरूक और करने की भी जरूरत है। जी मैम,
0: डॉक्टर रजनीकांत, आपने कहा कि संसाधनों की कमी है, ये तो मैं हमेशा से जानती हूँ, लेकिन साथ के साथ आप ये कह रहे हैं जागरूकता भी नहीं है। पर जब एक बच्चा अपने जीवन को जी रहा होता है, तो वो खुद किन चुनौतियों का सामना करता है?
1: जो जी मैम, वो संसाधन की कमी, यानी कि जो हमारे लोग हैं, हमारे जो मानव हैं, जो भी आप जिस तरह से कर रहे हो, तो उसमें है मैम कि उनको पता नहीं कि इन बच्चों को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। एक बच्चा जिसे दिव्यांग डेफ एंड डम है, वो सड़क पे पलवल से दिल्ली कहीं जा रहा है, तो उस समय मानवता के नाते होना चाहिए कि बस से बच्चा बैठ रहा है तो उनको किस तरह से, वहाँ पे सीट भी अलाउड होता है कि दिव्यांगों के लिए सरकारी बसों में, कि इन दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो वहाँ पे बैठे रहते हैं लोग, बट उतना केयर नहीं कर पाते हैं वो लोग कि दिव्यांग है तो इनको थोड़ा सा सीट दे दूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो चला रखी कि इनके लिए स्पेशल सीट है। बट वहाँ पे मैं देखता हूँ, एक बार मेट्रो में जा रहा हूँ, नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल व्यक्ति बैठे हुए हैं, दिव्यांग बच्चे खड़ा है, उस तरह से इनको महसूस होता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट तो की है, बट उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं।
0: जी, तो देखिए भाई, हमारी भी एक जिम्मेदारी है, हम सभी जितने भी इंसान है, हम सभी एक जिम्मेदारी लेकर चलें कि भाई हम अपने आसपास जब कभी भी किसी भी दिव्यांग बच्चे को देखें या एडल्ट को देखें, तो कोशिश करें कि सिंपति नहीं, एम्पति, और साथ के साथ पूरा बहुत मानवता उनके अंदर रखें, कि हम उन्हें ना सिर्फ कई बार छोटी सी सपोर्ट दे सकते हैं और कुछ नहीं, तो आप उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लाने के लिए उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और उन्हें ये भरोसा दीजिए कि वो उतने ही स्पेशल हैं जितने आप हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी कुछ परेशानियां कम हो जाएंगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत सिंह जी के साथ, जो एक स्पेशल एजुकेटर है। डॉक्टर रजनीकांत जी, अब एक अहम सवाल, आप ढेर सारे बच्चों के साथ डील करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हैं, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज की रोजमर्रा की जिंदगी में हर इंसान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मैं अपना जीवन कैसे सुधारूं। अगर धन अर्जित करना है तो वो अर्जित किया जाए, ज्ञान अर्जित करना है तो वो अर्जित किया जाए, और साथ के साथ ढेर सारा वैभव हो, लेकिन मानवता हमारी लिस्ट में सबसे नीचे आती है। मुझे बताइए कि मानवता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और क्या खास संदेश आप हमारे सभी सुनने वालों को देकर जाना चाहेंगे?
1: जी मैम, मानवता एएमएम के बड़े कार्यों से ही नहीं, छोटे छोटे अच्छे कामों से भी हम शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि बस पे जा रहे हैं बच्चे, गाड़ी पे जा रहे हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, या आप पड़ोस में कोई बच्चा इस तरह का है, तो उसके बारे में अगर मुझे पता है कि इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट या कोई एनजीओ सही काम कर रहा है, तो उनको सही राह दिखाना ही मानवता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति है उसको मदद कर दो, दिव्यांग बच्चों को अपनाएं और उनको सम्मान करें। सम्मान करेंगे मैम, ऐसा नहीं कि पैसा हमारे पास है तभी जाकर उनको हम कुछ दे सकते हैं। वैसे ही बच्चे जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा भी हाय हेलो बोल दीजिएगा तो उसमें उनको बहुत खुशी और सम्मान मिलता है, जिससे वो बच्चे बहुत खुश होते हैं, वही सच्ची मानवता है।
0: कितनी खूबसूरत सी बात कही है आपने डॉक्टर रजनीकांत। वाकई हमें अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हम ये सोचकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने देश को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जरूरत ये कि इसमें हम सभी मिलकर भागीदारी करें, अपने अंदर की मानवता को थोड़ा सा जगा लीजिए, और अपने आसपास जब कभी भी कोई भी चीज ऐसी देखें जहां लगे कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं, तो जरूर होइए। डॉक्टर रजनीकांत का सफर आज हम बहुत ही खूबसूरती से आपको बता पाए। आप जिस तरीके से जीवन में जीते हैं वो आपके जीवन को डिफाइन कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीकांत, आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे सभी लिसनर्स के साथ कनेक्ट हुए और उन्हें आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: थैंक यू।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं यानी बिंदास भावना ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।
2: क्या कहा?

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितनी अच्छी मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिलाता। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ, और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

रेडियो 107.8 एफएम पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन। हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज। जी हाँ, लाइफ जर्नी लेकर आती हूँ लोगों की, जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप भी ना अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम सब अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। हम में से ऐसे ही बहुत कम लोग होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना करें, कुछ ना बने, या फिर अपना नाम ना बनाएं। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। हर किसी को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएं, एक बड़ा नाम हो, किसी की मदद कर सकें और बहुत सारे काम कर सकें। तो बस इसीलिए आप अपनी ये होप ना छोड़ें और आगे बढ़ते रहें। तो बस इसीलिए हर हफ्ते आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल जर्नी लेकर आ जाती हूँ। ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प से और अपने जज्बे से कभी हार ना मान करके उस कामयाबी को हासिल किया और लोगों को ये बताया, दुनिया को ये बताया कि आपके पास ना कुछ ना होते हुए भी आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस आपके अंदर ना वो मेहनत करने की लगन होनी चाहिए, अगर वो है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज भी लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास जर्नी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनसे पूरा देश प्यार करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानता है। जी हाँ, आज हम इनकी जर्नी के साथ चलने वाले हैं। इनकी जर्नी से बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें हम सीखने वाले हैं, इंस्पायर होने वाले हैं। बहुत सारी कहते हैं ना कि लाइफ में अगर होप छूट जाती है तो किसी की जर्नी से, किसी की बातों से हमें होप मिल जाती है, तो शायद आज इनकी बातों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ, यानी कि आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, जहां पर आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही प्यारे से गाने भी लेकर आई हूँ आपके लिए, वो भी सुनाऊंगी आपको। तो शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, संकल्प से और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज की हमारी कहानी भी है एक भारत के ऐसे सपूत की जिन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर ना सिर्फ देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में अपनी जगह बनाई बल्कि भारत के राष्ट्रपति बनकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरा देश प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जानता है। दोस्तों, हर सफलता की कहानी किसी बड़े महल या फिर शानदार शुरुआत से नहीं होती है बल्कि कई बार इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जिनके पास सपने तो बड़े होते हैं लेकिन साधन बहुत कम होते हैं। वैसे ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी हाँ, 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर नाम के एक छोटे से द्वीप पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बहुत साधारण से बोट ओनर थे जो यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। उनकी माँ आसिमा बहुत ही दयालु और संस्कारी महिला थी। घर में कोई ऐसी ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी लेकिन ईमानदारी, मेहनत और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। बचपन में ही अब्दुल कलाम ने समझ लिया था कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है। इसीलिए स्कूल जाने के साथ साथ वो सुबह सुबह अखबार भी बांटा करते थे ताकि परिवार की मदद कर सके। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जो दिन की शुरुआत जिम्मेदारी निभा कर कर रहा था और फिर स्कूल जाकर पूरी लगन से अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन इस कठिन परिस्थितियों ने कभी उनके सपने को छोटा नहीं होने दिया। जी हाँ, उन्हें बचपन से ही साइंस और उड़ते हुए हवाई जहाजों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जब भी वो आसमान की तरफ देखते थे तो उनके मन में हमेशा एक ही सवाल उठता था कि आखिर इंसान इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचता है। शायद वही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें भारत का महान वैज्ञानिक बनाने वाली थी। उनके टीचर्स ने भी उनकी प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लिया था। एक अच्छे टीचर की तरह उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि बड़े सपने देखने का हौसला भी दिया। अब्दुल कलाम अक्सर कहा करते थे कि उनकी जिंदगी की दिशा देने में उनके टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की कहानी हमें बताती है कि आपका जन्म किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, ये आपकी मंजिल तय नहीं करता बल्कि आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके सपने ही आपकी पहचान बनाते हैं। यही से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पहला सक्सेस मंत्र मिलता है, जो कि है कि सपने वही नहीं होते हैं जो सोते वक्त देखते हैं बल्कि असली सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं APJ अब्दुल कलाम के साथ। जी हाँ, उनकी जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं, उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से बहुत सारी चीज़

सीखने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा एक घंटे का ये सफ़र रहता है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत प्यार प्यार से गाने भी सुनते हैं, साथ ही एक मोटिवेशन लेते हैं उनकी लाइफ से कि ताकि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सके। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे एक साधारण से परिवार में जन्मे बच्चे ने आर्थिक कमियों के बावजूद अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। अखबार बांटने से लेकर स्कूल की पढ़ाई तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाई है। लेकिन दोस्तों, उनकी असली उड़ान अब शुरू होने वाली थी। जी हाँ, अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मेहनती थे, खासकर साइंस और मैथमेटिक्स उनकी पसंदीदा विषय हुआ करती थी। और आजकल जैसे हम सुनते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि मैथ्स और साइंस तो सच में नहीं पढ़े जाता, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और वहीं पर ही उनका ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। उनके टीचर्स अक्सर कहते थे कि कलाम सिर्फ किताब पढ़कर उनका मन शांत नहीं होता है, बल्कि हर चीज़ के पीछे का कारण जानने का कोशिश करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। उनके अंदर सीखने की एक अलग ही भूख थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के ST जॉपिंस कॉलेज में फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून सिर्फ थ्योरी पढ़ना नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट और इंजीनियरिंग की दुनिया को समझना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में, जहां पर उन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। दोस्तों, MIT में एडमिशन मिलना उनके लिए जितनी खुशी की बात थी, उतनी ही बड़ी चुनौती भी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी इंजीनियरिंग की फीस आसानी से भर सके। एक समय ऐसा भी आया जब फीस जमा करना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई जारी रखने की मदद की थी। ये सिर्फ परिवार का त्यागी नहीं था, बल्कि अब्दुल कलाम के सपनों का उनके ऊपर विश्वास था। MIT में पढ़ाई के दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। जी हाँ, उन्हें एक एयरक्राफ्ट डिजाइन प्रोजेक्ट दिया गया था। जब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस धीमी थी तो उनके प्रोफेसर ने साफ कहा था कि अगर निर्धारित समय पे काम पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो सकती है। ये बात अब्दुल कलाम के लिए एक वेकअप कॉल जैसी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपना प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा किया और अपने प्रोफेसर का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान उन्होंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली कि टैलेंट तभी चमकता है जब हम उसके साथ अपना डिसिप्लिन और हार्डवर्क भी देते हैं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता है दोस्तों, उन्हें पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग, लगातार मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भी जरूरी होता है। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा की ये जर्नी हमें बताती है कि मुश्किलें रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर इरादे आपके मजबूत होना, तो हर चुनौती एक नई सीख की तरह बन जाती है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का दूसरा सक्सेस मंत्र भी मिलता है, जो कि है कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन के बिना कोई भी सपना हकीकत नहीं बन सकता। हर दिन की छोटी छोटी सी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता का रास्ता बनती है। तो वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हम सबको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। कौन ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि नहीं, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं ना, हर किसी को चाहिए, क्योंकि हर कोई कामयाब होना चाहता है। तो बस उसके लिए ना क्या करना होता है, आपको अपनी लाइफ में ना एक मोटिवेशन लेना ज़रूरी है। और दूसरा, उस मोटिवेशन को लेने से ही काम नहीं चलेगा, आपको जो अपनी लाइफ में करना है उससे पहले डिसाइड कर लीजिए और उस पर निरंतर मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप देखिए, आपको एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। शायद कुछ रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाते हैं पर कुछ रिजल्ट हमें लेट मिलते हैं। तो बस आपको होप नहीं छोड़नी है और उस पर निरंतर आपको काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप देखना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ आज आपको जो मोटिवेट करने के लिए मैं जर्नी लेकर आई हूँ, वो जर्नी है आज APJ अब्दुल कलाम की। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, आज उनकी जर्नी के बारे में हम जान रहे हैं, बहुत सारी बातें उनकी लाइफ से मोटिवेशन ले रहे हैं। तो चलिए, पिछले सेगमेंट में जैसे कि हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया और डिसिप्लिन और एजुकेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन दोस्तों, डिग्री हासिल कर लेना ही सब कुछ नहीं होता या फिर मंजिल मिल जाना नहीं होता। उनका सपना था कि देश के लिए कुछ ऐसा करना जिसे भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया के सामने गर्व से खड़ा हो सके। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO से की। यहाँ उन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, लेकिन उनके दिल में हमेशा एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग ही जुनून था। और बस इसी जुनून ने उन्हें बाद में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO तक पहुंचाया। ISRO में डॉक्टर कलाम को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग ही नहीं था बल्कि भारत के सपनों का प्रोजेक्ट था। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी और देश की नजरें भी उन्हीं पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। साल आया 1979 जिसमें जब SLV-3 का पहला लॉन्च हुआ तो मिशन सफल नहीं हो सका। जी हाँ, रॉकेट अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, कई लोग निराश हो गए। डॉक्टर कलाम के लिए भी ये पल बहुत ज्यादा कठिन था। सालों की मेहनत एक पल में असफल होती नजर आ रही थी, लेकिन यहीं पर एक सच्चा लीडर सामने आता है। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी, उन्होंने गलतियों का गहरा विश्लेषण किया, सीखा और दोबारा तैयारी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, सिर्फ एक साल के बाद ही 18th of July 1980 को SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोशनी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक ऐतिहासिक पल था। इस उपलब्धि ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बना सकता है। डॉक्टर कलाम अक्सर कहते थे कि फेलियर कभी भी अंत नहीं होता, अगर हम उसे सीख लें तो वही फेलियर हमें सफलता की तरफ ले जाता है। उनके लिए हर असफलता एक नई सीख थी, ना कि रुकने का कारण। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब हम मेहनत के बाद भी देखते हैं कि हमें परिणाम नहीं मिला, हमें रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। लेकिन इस टाइम पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो निराशा में भी उम्मीद ढूंढते हैं और दोबारा उसे पूरी ताकत के साथ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तीसरा सक्सेस मंत्रा भी मिलता है, जो कि है, असफलता से डरना नहीं है, उसे सीखना चाहिए, बल्कि उससे हमें सीखना चाहिए। हर फेलियर आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाने का मौका देती है। तो इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। उनकी जर्नी के बारे में आज हम जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो में काम करते हुए भारत के स्पेस प्रोग्राम को एक नई दिशा दी। SLV-3 प्रोजेक्ट की सफलता ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे आपके मजबूत हो और टीम में विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल काम मुमकिन बन सकता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर कलाम की उपलब्धियों का सफर यही नहीं रुका, उन्होंने भारत की सुरक्षा और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसरो के बाद डॉक्टर कलाम ने फिर से DRDO में अपनी जिम्मेदारी संभाली। यहाँ उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में साल 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था भारत को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, किसी भी देश के लिए अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर कलाम ने भी अपनी वैज्ञानिक सोच, लीडरशिप और टीम वर्क के दम पर इस क्षेत्र में नए मुकाम को हासिल किया। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल का विकास किया है, जिसमें पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रमुख हैं। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण ही डॉक्टर कलाम को पूरे देश में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उनकी लीडरशिप थी। वो अपनी टीम को, हर सदस्य को महत्वता देते थे और हमेशा उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करते थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि एक लीडर की असली पहचान तब होती है जब वो सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है और सफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है। उनका ये विचार आज भी हर फील्ड में लोगों के लिए एक बड़ी सीख बन गया है। फिर आया साल 1998 में, जिसमें पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान भी डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस उपलब्धियों ने भारत की वैज्ञानिक और रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जर्नी हमें बताती है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता है, बल्कि उनके लिए विजन, टीम वर्क और पेशेंस और देश के प्रति समर्पण भी जरूरी होता है। उन्होंने कभी अपनी सफलता को सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं मानी है, बल्कि उसे देश की प्रगति का हिस्सा समझा है। तो दोस्तों, यही सोच उनकी उन्हें एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान इंसान भी बनाता है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चौथा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि बड़ी सफलता के लिए एक बड़ा विजन, लगातार मेहनत और टीम पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकें और आप भी सक्सेस को हासिल कर सकें। और इस जर्नी में आज हम चल रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम को एक नई पहचान दी और अपनी मेहनत, लीडरशिप और साइंटिफिक विजन के दम पर देश को मजबूत बनाने में योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का एक और खास अध्याय भी अभी बाकी था। एक वैज्ञानिक जो हमेशा लेबोरेटरीज और रिसर्च के बीच रहे, एक दिन भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। जी हाँ, साल आया 2002 जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये पल अपने आप में बहुत खास था क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध सीधे तौर पर आम लोगों, खास करके युवाओं और विद्यार्थियों से था। उनकी सादगी, ईमानदारी और विनम्रता ने उन्हें देश के हर वर्ग के लोगों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वो हमेशा की तरह सरल जीवन जीते रहे और अपना समय देश के भविष्य, खास करके युवाओं के साथ बिताना पसंद करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहने लगे। डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा विश्वास था कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। वो देश भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टूडेंट से मिला करते थे, उनसे बातचीत करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित भी करते थे। उनका मानना था कि एक युवा के अंदर देश को बदलने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। वो अक्सर कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत भी करनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्रपति बनना सफलता के अंतिम पड़ाव नहीं था, बल्कि देश की सेवा करने का एक और मौका था। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप स्टाइल भी बहुत अलग थी। वो हमेशा नए विचारों को बढ़ावा देते थे और लोगों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा लीडर सिर्फ कुर्सी से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से पहचाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जर्नी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने काम को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो सम्मान और सफलता अपने आप आपके पास आ जाती है। यहाँ से हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का 5वां सक्सेस मंत्रा भी

0: करता है, जो कि है कि असली लीडरशिप वही है जो लोगों को इंस्पायर करे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे और देश के हित में काम करें। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है सक्सेस जर्नी को आपके साथ, ताकि आप भी अपनी लाइफ में मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, जिससे आप अपना तो भला करेंगे ही साथ ही देश का, अपने आस पास की सोसाइटी में लोगों का भी भला कर सकें। और आज हम जिनकी जर्नी के साथ चल रहे हैं उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक महान वैज्ञानिक से भारत के राष्ट्रपति बने और कैसे उन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और युवाओं के प्रति अपने लगाव से हर भारतीय के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर कलाम की पहचान सिर्फ एक साइंटिस्ट या फिर एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं थी, वो एक महान लेखक, एक प्रेरणादायक वक्ता और एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों को अपने देखने और उन्हें पूरा करने का सिखाया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का मानना था कि देश का असली विकास तभी संभव है जब युवाओं के पास बड़े सपने, सही सोच और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी किताबों और स्पीचेस में के माध्यम से लोगों तक इन सब चीजों को पहुंचाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है विंग्स ऑफ फायर, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस किताब में उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने संघर्ष तक, वैज्ञानिक सफर और सफलता तक पहुंचने की कहानी को बहुत ही सरल तरीके से बताया है, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो सकें। ये किताब आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, और क्योंकि इसमें एक साधारण परिवार के बच्चे की असाधारण सफर की कहानी है। इसके अलावा उन्होंने इग्निटेड माइंड्स और इंडिया 2020 जैसी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें उन्होंने एक विकसित और मजबूत भारत का सपना देखा था। उनका विश्वास था कि अगर देश के युवा अपनी सोच को बड़ा रखें और अपने ज्ञान का सही उपयोग करें, तो भारत दुनिया के सबसे आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की सबसे खास बात तो ये थी कि उनकी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी उन्होंने खुद को हमेशा एक टीचर माना है। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद भी वो स्टूडेंट्स के बीच जाते रहे, लेक्चर्स देते रहे और उन्हें नए आइडियाज के लिए प्रेरित करते रहे। उनका मानना था कि अच्छा टीचर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता है, बल्कि स्टूडेंट्स के अंदर सोचने और कुछ नया करने की चिंगारी भी जगाता है। शायद इसी वजह से स्टूडेंट्स के साथ उनका रिश्ता इतना खास था। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले, जिनमें से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी शामिल है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था लोगों का प्यार और युवाओं का विश्वास। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इंसान जितना ज्यादा सीखता है उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। यहाँ से हमें उनकी जिंदगी से एक और सक्सेस मंत्रा मिलता है, जो है कि जिंदगी में सीखना कभी मत रोकिए, क्योंकि ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें नए रास्ते दिखाती है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव। नाइस।

भी असली सेठ भी असली नकली माल बनाए, ऊपर असली लेबल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलीन का बदल के नंबर टेरी लीन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल के लूटता जाए।

छोटा जूट संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे, लेकर भी गाड़ी में

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज के इस प्रेरणादायक सफर में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी के कई पहलुओं को जाना। एक छोटे से शहर रामेश्वर में जन्मे एक साधारण बच्चे से लेकर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने तक का उनका ये सफर हमें ये सिखाता है कि अगर इरादे आपके मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी जर्नी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है बल्कि संघर्ष, मेहनत और सीखने की और देश के प्रति समर्पण की कहानी थी। और उनकी जिंदगी से हमें ऐसे सक्सेस मंत्रास भी मिले जो हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, बहुत सारी चीजें समझाते हैं जिनसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ उनके बहुत सारे सक्सेस मंत्रा भी मिले जो कि हमने बात करी कि पहला सक्सेस मंत्रा था कि बड़े सपने देखिए। जी हाँ, सपने हमेशा बड़े देखिए, खुली आंखों से देखिए और इसे पूरा करने के लिए काम करिए। दूसरा सक्सेस मंत्रा था शिक्षा और ज्ञान को अपनी ताकत बना लीजिए, पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा था असफलता से डरना नहीं चाहिए, चाहे फेलियर्स कितने भी क्यों ना आ जाए पर हमेशा ट्राई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चौथा सक्सेस मंत्रा था मेहनत और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लीजिए, ये लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। अगर किसी ने इसे ट्राई कर लिया ना तो समझ लीजिए आपकी लाइफ ना हमेशा के लिए बन गई, तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पांचवा सक्सेस मंत्रा है अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के लिए कीजिए। जी हाँ, हम अपने लिए तो सक्सेस होते ही है पर अपनी सक्सेस को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही खास बात होती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ ये सारी चीजें जो हमने सीखी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी ली इस जर्नी में उनकी बातों से, उनकी लाइफ जर्नी से, वो हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम बड़े सपने देखें, ईमानदारी से मेहनत करें और अपने देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। इसी के साथ आज के सक्सेस मंत्रा में हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक जर्नी से विदा लेते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ स्नेहा और ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और ऐसी ही शख्सियत की जर्नी के साथ, उनकी कहानी के साथ जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्रा मिलेगा। तब तक के लिए याद रखिए, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। एक ना एक दिन आप सक्सेस जरूर होंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और इसी के साथ जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ। बाय।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारु विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम।
1: हाँ जी नमस्कार, मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव। हमारा शो हर बार बहुत स्पेशल होता है, लेकिन आज का शो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। ये मैं रिवील बाद में करूंगा, क्योंकि देखिए प्रोसेस होता है, पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, फिर कंपनी के बारे में बताया जाएगा। कंपनी जो है आज एक ऐसे अभिनेता की कंपनी है, मतलब जो बहुत फेमस है, शी इज एन एक्ट्रेस और काफी काम किया है इन्होंने, इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, उनकी एक कंपनी है। अगर आप जानते हैं उसके बारे में तो कृपया करके व्हाट्सएप पर हमें बता दीजिए 8010781078 पर, और नहीं जानते हैं तो आराम से भैया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और चिल करिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर तो मैं बता ही दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी लेंगे हम एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री की, फिर हम लेकर चलेंगे कंपनी, फाउंडर, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

0: सफर होता।
1: एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। एडटेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेडटेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें। अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं।

Apart from this, there are other innovations, जैसे कि AI powered skin care devices होते हैं, AI powered जो virtual try-ons होते हैं, या personalized आपको beauty solution चाहिए। For an example, आप online कुछ देख रहे हैं, आपके पास time नहीं है physically market जाने का। अब जब आप online कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए makeup की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप maybe mascara देख रहे हैं, आपके ऊपर वो suit करेगा, नहीं करेगा। जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मींस कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीज़ों में। सेकंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहाँ पर स्मार्टफोन है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज़्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने हैं, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा। उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर, और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैज वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्ना 107.8 एफएम। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चले तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री कहीं भी आप चले जाए, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। और जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा, क्या मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझाया वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो उसमें पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफ़ी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज़ अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीज़ें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी।

0: हटा दो।
1: दोस्तों अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एजन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकेंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सोल्यूशन प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको वहाँ की कोई चीज़ देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ आप जान चुके हैं अभी तक। चलिए आगे लेकर चलते हैं शो को और फाइनली बात करते हैं आज की कंपनी की। आज की कंपनी जो ब्यूटी टेक में डील करती है, इसका नाम है हाइफन। हाइफन एक इंडियन D2C डायरेक्ट टू कस्टमर स्किन केयर ब्रांड है, जिसको जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। इट वॉज को फाउंडेड बाई एन एक्ट्रेस एंड हर नेम इज कृति सैनन। यहाँ कृति सैनन का ये ब्रांड है एंड इसके साथ साथ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली। टीम जिसने मैककैफीन कंपनी स्टार्ट करी थी वो इसमें शामिल है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि कृति ने सिर्फ ये नहीं किया कि मैं एक सेलिब्रिटी फेस की तरह आऊँगी, एंडोर्स करूँगी और हो गया मेरा काम। यहाँ पर वो एक्टिवली इन्वॉल्व रही, यहाँ पर हर एक चीज़ में, हर एक प्रोडक्ट में, उसके आइडिएशन में, टेस्टिंग में, ब्रांडिंग में, कस्टमर फीडबैक में। एंड कंपनी यहाँ पर कंबाइन करती है साइंस बैक्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ताकि मल्टी बेनिफिट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जा सके। इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक, डील करती है स्किन केयर में, D2C कस्टमर ब्रांड है, पर्सनल केयर में फॉल करता है अगर इसको हम सब कैटेगरी वाइज देखें तो। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। तो कृति बहुत पैशनेट रही है शुरू से ही अपने स्किन केयर को लेके। इन्होंने देखा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो सेवरल प्रोडक्ट्स जो हैं बाय करते हैं डिफरेंट कंसर्न्स के लिए। हाइड्रेशन के लिए अलग प्रोडक्ट होते हैं, पिगमेंटेशन के लिए अलग, ग्लो के लिए अलग, एक्ने के लिए अलग, बैरियर रिपेयर के लिए अलग। और जब आप इन सारी चीज़ों को मर्ज करते हो, कंबाइन करते हो, तो ये बहुत एक्सपेंसिव और कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ बनाते हैं

प्रॉपर लॉन्च करने में, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कंपनी, क्यों ये कंपनी स्टार्ट हुई. तो यहाँ पर इतना हमें क्लियरली समझ में आता है कि कृति को एक प्रॉब्लम नजर आई, एंड प्लीज हेयर इट आउट. उन्होंने ये नहीं किया कि मेरा फेस बिक जाएगा या मेरे फेस को देख करके लोग खरीद लेंगे. उन्होंने सिंपली एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने का सोचा. एंड इन चीज़ों की वजह से कोई भी कंपनी अलग होती है कि आप एडवांटेज ले सकते हैं. आपके पास ऑलरेडी कोई एडवांटेज है तो यू शुड टेक दैट एडवांटेज. बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर हैज़ टू बी समथिंग जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करे, जो इस कंपनी ने किया. फिलहाल लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव.

0: बेकरार।
1: फील गुड, फील लाइफ। मैं सागर, शो चल रहा है पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। कंपनी का नाम है हाइफन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया इसका, क्या करती है हाइफन, ये आपको ओवरऑल हमने बताया, एक ओवरव्यू मिला है। लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बात करते हैं। एग्जैक्टली स्किन केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। सनस्क्रीन्स हैं इनके पास, फेस सीरम्स हैं इनके पास, मॉइस्चराइजर्स हैं इनके पास, क्लींजर्स हैं इनके पास, लिप बाम्स हैं इनके पास, फेस मास्क हैं इनके पास, ठीक है। कंपनी सेल कहाँ कहाँ पर करती है, पहली बात अपनी खुद की वेबसाइट पर, दूसरा अमेजोन पर, तीसरा नायका पर, चौथा ब्लिंकिट पर, पांचवा जेप्टो पर, छठा फ्लिपकार्ट पर, एंड देर आर अदर क्विक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। फिलॉसफी बहुत सिंपल है, वी यूज 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन वन प्रोडक्ट कैन सॉल्व मल्टीपल स्किन कंसर्न्स। व्हाई आर वी डूइंग इट। तो ये इन्होंने सिंपल सा लॉजिक लेकर के आए और प्रॉब्लम जो है, मतलब आपके 3 प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया। अच्छी बात ये है कि मार्केट को बहुत अच्छे से समझा है कंपनी ने कि भैया क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स जहां से जो हो सके करो, हर जगह पर आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। ये इस कंपनी ने एक मंत्र जो है वो फॉलो किया। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक तो भाई एम कैफीन अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रांड है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो जो फाउंडर्स हैं उन्होंने उस चीज को एक्सेल कर लिया कि काम कैसे करता है, स्किन केयर ही पूरा सेगमेंट कैसे काम करता है, लोग क्या पसंद करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कृति सनन भी वहां पर आ गई और आई भी इस थॉट के साथ कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट्स नॉट जस्ट सेल द फेसेस, लेट्स सेल द सॉल्यूशन।

जो मुझे लगा बहुत बहुत आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट पार्ट। तो ये एग्जैक्टली चीज़ है जो स्ट्राइक की। अच्छा, कंपनी स्टार्ट कैसे हुई? कृति को अपना स्किन केयर कंपनी स्टार्ट करनी थी, उन्हें करियर वहाँ पर बनाना था अपना, ऑलरेडी बॉलीवुड में है लेकिन उन्हें करना था वहाँ पर। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, उन्होंने पार्टनरशिप की विद द पीपल जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, आई एम कैफीन के फाउंडर्स। ओके, उन्होंने रिसर्च की इंडियन स्किन केयर के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कंज्यूमर हैबिट्स के ऊपर, स्किन केयर पेन पॉइंट्स के ऊपर। देन उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया जिसमें उन्होंने कंबाइन किया मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रोडक्ट टेस्टिंग की बिफोर लॉन्च, एंड देन जुलाई 2023 में इस कंपनी को लॉन्च कर दिया। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे फाइनली फाउंडर्स के बैकग्राउंड की। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ हर बार की तरह कि आपको ये वाइब अच्छी लग रही है, शो आपको पसंद आ रहा है, शो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। लेट्स टेक इट अहेड, फाइनली बात करते हैं कंपनी के फाउंडर्स की। हाइफ़न हमारी आज की कंपनी है और एक चेहरा अभी तक आपको पता है, कृति सैनन। तो चलिए शुरुआत इनसे ही करते हैं। सो कृति सैनन इज अ को फाउंडर एंड चीफ कस्टमर ऑफिसर CCO ऑफ हाइफ़न। इनके एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने बीटेक किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से, नोएडा से। ओके, प्रीवियस बैकग्राउंड इनका एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, अभी एंटरप्रेन्योर भी इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। ये ब्रांड बिल्डिंग लेकर के आती हैं, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आती हैं, मार्केटिंग लेकर के आती हैं, प्रोडक्ट का फीडबैक लेकर के आती हैं। सो अनलाइक पैसिव सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स, शी इज पोजिशनड एज एन एक्टिव ऑपरेटर। मतलब होता क्या है कि पैसिव अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो एक तरीके से पैसा ले लो भाई, बनाओ तुम लोग, हम अपना चेहरा दिखाने आ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर एक्टिवली काम किया, प्रॉपर कस्टमर को समझा, कस्टमर की नीड क्या है उसको समझ के तब जाकर के जो है इन्होंने मार्केट में उतरे और उसको प्रोडक्ट को अपने बेहतर बनाते गए। दूसरा नाम आता है तरुण शर्मा, ये को फाउंडर हैं एंड CEO हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें तो को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, इनको जाना जाता है D2C ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ब्यूटी स्टार्टअप्स के लिए, स्केलिंग कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए, स्केलिंग में बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है। तीसरा नाम है वैशाली गुप्ता, इनका रोल है को फाउंडर एंड चीफ ग्रोथ ऑफिसर CGO। प्रीवियस एक्सपीरियंस, को फाउंडर ऑफ एम कैफीन, ब्रांड मार्केटिंग, ग्रोथ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर सौरभ सिंगल का, रोल है इनका चीफ सप्लाई ऑफिसर। इनका बैकग्राउंड है मैन्युफैक्चरिंग का, ऑपरेशंस का और सप्लाई चेन का। एंड नेक्स्ट नेम आता है यहाँ पर मोहित जैन का, फाइनेंस समझते हैं, व्यापार समझते हैं, फाइनेंस को फिक्स करना इनका काम है। तो ये ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस देखते हैं प्लस फाइनेंस देखते हैं। तो ये भी जो है एम कैफीन जो है उस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर आप कह सकते हैं, एक तरीके से रह चुके हैं। तो ये 5 लोग हैं जिन्होंने मिला करके स्टार्ट किया, कुछ मार्केटिंग लेकर के आए, कुछ फाइनेंस देख के आए, कुछ सप्लाई को फिक्स करने का बेड़ा लेकर के आए, कुछ अपना अनुभव लेकर के आए, कुछ अपना चेहरा लेकर के आए, साथ साथ झील के साथ कि कुछ सीखेंगे। दैट्स हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड। तो ये है जी इनके बैकग्राउंड सबके। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी गानों की चॉइस आपको पसंद आ रही है। तो चलिए जी, इसी नोट पर शो को आगे लेकर चलते हैं। कंपनी का नाम है हाइफ़न। हम आपको कंपनी के बारे में बता चुके हैं, कब स्टार्ट हुई, क्या स्टेप्स रहे, कौन को फाउंडर्स हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, सब कुछ आपको पता है। थोड़ा बिजनेस मॉडल समझते हैं यहाँ पर। D2C प्लस ओमनी चैनल ब्रांड। इनका रेवेन्यू आता है वेबसाइट सेल से, मार्केट प्लेसेस से, रिटेल पार्टनरशिप से, क्विक कॉमर्स से। ओके, तो अच्छी बात यह है कि आपको किसी एक चैनल के ऊपर रिलाई नहीं करना है। यू शुड ओपन एज मैनी गेट्स एज पॉसिबल। अभी हम बात करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर्स की। कैसे कंपनी भैया ग्रो कर रही है? पहला तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेलिब्रिटी फाउंडर। कृति सैनन जो है बहुत बड़ा नाम है, और अगर वो किसी ब्रांड के साथ आ रही है तो इमीडिएट विजिबिलिटी बढ़ेगी उसकी। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ वो उसके साथ जुड़ी रही है शुरू से ही, बिल्कुल डे वन से, जहां पर एक थॉट, एक विजन, एक मिशन क्लियर था उनके पास, तो उस थॉट के साथ काम किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल फर्स्ट स्ट्रेटजी। बहुत इन्वेस्ट किया इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटली अपने आप को एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, रेगुलर लॉन्चेस करते हैं, फटाफट इनोवेट करते हैं। मौसम बदल रहा है, कोई नया इशू आया है, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट अगर हमारे एंड पर पॉसिबल हो सकता है तो। उसके अगला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग D2C एक्सपीरियंस, क्योंकि एम कैफिन भैया बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी अगर टीम इनके साथ जुड़ गई है तो इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन एक एडवांटेज आपके पास होता ही होता है जी। तो ये पांच हैं वो ग्रोथ ड्राइवर जिनकी वजह से कंपनी ग्रो करके यहां तक पहुंची है। अच्छा, इस कंपनी ने अलग क्या किया? सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इंग्रेडिएंट्स दे सोल्ड सॉल्यूशंस। कस्टमर्स को नहीं चाहिए भैया विटामिन सी, नायासिनामाइड एंड सेरामाइड एंड सो ऑन, दे सिंपली वांट अ क्लियर स्किन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी देखते ना हम लोग एड्स में आता है नायासिनामाइड इसमें जी, इसमें विटामिन सी, हमें नहीं पता है, हमें इतना जानना है कि मेरी स्किन के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मेरे को एक और स्ट्रेस मिल गया ना कि अब मेरे को ये समझना है नायासिनामाइड होता क्या है भाई और ये काम कैसे करता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर स्ट्रेटजी को समझा और समझा कि कस्टमर को यार सिंप्लीफाई करके देते हैं ना, कॉम्प्लेक्स क्यों करना। ये इन्होंने थोड़ा सा अलग किया जो इनके काम भी आया, दिखा भी। सो यार दैट इज एग्जैक्टली द थिंग जो इन्होंने अलग किया जिसकी वजह से ये आउटशाइन कर पाए। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शो को आगे लेकर चलेंगे और बात करेंगे कंपनी की USPs की। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं सागर शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम पर। कंपनी की यूएसपी की अगर बात करें, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, तो पहला तो है कि मल्टीपल पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक बॉटल में मिल रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो कोई एक सिंगल हीरो इंग्रेडिएंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मिक्स करके प्रोडक्ट बेचना शुरू किया है, मतलब अलग अलग उसको लेबल ना लगा करके, अलग अलग आपकी पॉकेट के ऊपर उसको हैवी ना करके इन्होंने सिंपली किया गया है। ठीक है, लेट्स पिक वन प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व इट, और जितने इंग्रेडिएंट उसमें डालने डाल देते हैं जो सेफ हो। सेकंड है नेचर प्लस साइंस। कंपनी अपने आप को पोजीशन ऐसे करती है कि वी आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर्स गुडनेस प्लस साइंस बैक्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी हमारे पास हैं। सो इट अपील्स मॉडर्न कंज्यूमर्स, जिनको प्रोडक्ट चाहिए जो नेचुरल फील हो बट डर्मेट्स की दुनिया में जिसको सपोर्ट किया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अफोर्डेबल प्रीमियम स्किन केयर। सो रेदर देन लग्जरी प्राइसिंग, उन्होंने टारगेट किया मिडिल सेगमेंट को, प्रीमियम क्वालिटी विदाउट लग्जरी प्राइसिंग। ये अगेन मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव होता है कि किसी के लिए हो सकता है ये भी लग्जरी हो, बट कंपनी खुद को ऐसे पोजिशन करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिब्रिटी ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एक सेलिब्रिटी खुद इन्वॉल्व है जो सिर्फ वहां पर ब्रांड शूट करने के लिए नहीं आ रहा है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, को फाउंडर है, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस। आई मीन लोगों को एक ट्रस्ट फैक्टर आता है, एक अपर हैंड मिल जाता है उस ब्रांड को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टेस्टिंग हुई है, इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर फीडबैक, सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों के सामने होते देखा है और उसमें वो शामिल रही हैं। तो ये है जी, 2023 में ये कंपनी जो है लॉन्च की गई थी, 1 मिलियन से 4 मिलियन कस्टमर्स जो है इन्होंने विद इन 1 ईयर इन्होंने ग्रो किया था इतना। ठीक है, रिपीट परचेज रेट है एज पर कंपनी ऑलमोस्ट 60% जो है इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है जो कंपनी क्लेम करती है। 19,000 से ज़्यादा पिन कोड्स के ऊपर इन्होंने प्रोडक्ट्स अपने डिलीवर किए हैं एंड 400 करोड़ जो है वो विद इन 2 ईयर्स इन्होंने ग्रॉस सेल करी थी। सो इट शो सो मच यार, इट टेल सो मच कि कंपनी ने एक्चुअली अच्छा काम किया है। तो ये थे हमारी आज की कंपनी जिसका नाम है हाइफ़न। आपको कैसी लगी बताइए हमें। फिलहाल मेरा वक्त है भैया शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा। अब चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो लेकर, हम मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज आरजे सागर।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहां होती है बातें आपकी हेल्थ के बारे में। और इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आ रहे हैं एसएसपी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल इस सीजन से जुड़ा हुआ है, बरसात का मौसम। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है आप इस भीगी भीगी बारिश के मौसम में जब अपनी बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जहां ये मौसम बहुत खुशी लाता है वहीं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लाता है, खास तौर पर से हेल्थ रिलेटेड। और इस बारिश के मौसम में बात करना जरूरी है आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि हाल ही में आए एक सर्वे के मुताबिक फरीदाबाद के ही सरकारी अस्पताल में हर रोज लगभग 2000 से ज्यादा पेशेंट्स बारिश से होने वाली प्रॉब्लम्स की वजह से जा रहे हैं ओपीडी में अपना इलाज कराने, और प्राइवेट का आंकड़ा तो इसमें है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश का मौसम कितनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। लेकिन आज जब इस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उसमें हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना जरूर चाहेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर अंशुल मित्तल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में। सबसे पहले सर मैं जो सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, बरसात का मौसम इतना ज़्यादा जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो बारिश में हमने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हो ही जाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो खांसी को लेकर होती है। इतने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक या फिर यंगस्टर्स को भी कहीं ना कहीं आप हर घर में देखेंगे एक आधा पेशेंट तो मिल ही जाता है जिसको खांसी आ रही हो, तो ऐसा क्यों होता है?
5: देखिए बारिश के सीज़न में आपके अराउंड का वेदर चेंज हो जाता है। नॉर्मली हम एक ड्राई सीजन में रहते हैं जहाँ पर तो हमें उसको एक्लोमेटाइजेशन हो जाता है। बारिश का सीजन नॉर्मली 1 या 2 महीने रहता है, तो उस टाइम पे आपके आसपास के पेड़ चेंज हो जाते हैं, आपके आसपास हरियाली हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, आप घर में एसी में रहते हैं, बाहर जाते हैं ह्यूमिडिटी से एक्सपोजर हो जाता है, तो दिस चेंज इन वेदर खांसी को प्रिडिस्पोज करता है
4: जी।
5: तो इसीलिए इस मौसम में वायरल टाइप की खांसी हो जाना बहुत कॉमन है।
4: इसके साथ साथ कोल्ड बहुत लोगों को हो जाता है।
5: वही कोल्ड, खांसी, नाक बहना, छींके आना, सुबह के टाइम पे खांसी होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो इस सीजन में आपको मिलेंगे
4: जी। यानी पोल्यूशन लेवल कम हो जाता है बारिश से, पर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो दोस्तों ऐसी कुछ बातें हम भी करने वाले हैं आपके साथ। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा, नंबर बहुत आसान है 8010781078। बारिश में होने वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा हो रही है। आज प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसपी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे आप तक लेकर आए हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुल मित्तल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन। डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम की बात कर रहे हैं, वैसे तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस मौसम में आपको घर में कहीं ना कहीं बीमारी भी मिल जाती है, क्योंकि आपने कहा ह्यूमिडिटी बहुत होती है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है, खांसी जुकाम बुखार बहुत कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ कई गंभीर समस्याएं भी हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को एस्मा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो इनमें डिफरेंस कैसे पहचाने कि ये प्रॉब्लम्स अब हो गई हैं?
1: देखिए, सबसे पहले वायरल की तरफ चलते हैं। अगर आपको वायरल बुखार होगा तो यूजुअली आपको फीवर आएगा, खांसी के साथ आपको फीवर होगा, गले में दर्द होगा, बहुत वीकनेस महसूस होगा, बदन तोड़ बुखार टाइप के आपको सिम्टम्स आएंगे। वायरल का फीवर नॉर्मली 3 से 4 दिन रहेगा, उसके बाद फीवर सेटल हो जाएगा, लेकिन खांसी सेटल होने में आपको 2 to 3 weeks लग सकते हैं पूरी सेटल होने में। वायरल में जो आपको ध्यान देना है, अगर वायरल बुखार के साथ आपको कभी भी सांस फूलने की दिक्कत हो, शरीर पे रैशेज हो, या आपको लगे बहुत लो फील हो रहा है, तो ये सब डेंजरस साइंस हो सकते हैं, इसके साथ आपको इमिजिएटली कंसल्ट करना है। एस्मा के मरीजों के साथ क्या होता है, वो एक एनवायरमेंट पे रहते हैं, जब जैसे ही उनका एनवायरमेंट चेंज होता है, उनके आसपास का एलर्जन लेवल बदल जाता है, एलर्जन का टाइप बदल जाता है, एलर्जन की क्वांटिटी बदल जाती है, जो भी जिस एलर्जन से वो सेंसिटिव है, तो वो एलर्जन जब आपके एनवायरमेंट में आ जाता है तो आपका बेसलाइन एस्मा बढ़ जाता है। इसको बचाने के लिए अगर आप रेगुलर इनहेलर्स यूज कर रहे हैं, अपने रेगुलर मेडिकेशंस पे हैं, तो ये नहीं होगा। एस्मा में यूजली ड्राई कफ होगा। जब आपको ब्रोंकाइटिस होता है, जो कॉमनली स्मोकर्स में बहुत कॉमन होता है, जो स्मोकर्स होते हैं उनके लिए बारिश के सीजन में ब्रोंकाइटिस होता है, उनको बलगम आने लगेगा। वो पीला है तो उनको साथ में इन्फेक्शन भी है, वाइट है तो इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ एलर्जी की वजह से है। ये सब कॉमन सिम्टम्स जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको तीनों में से क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, इस मौसम में धूल मिट्टी नहीं उड़ती है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास इतनी ह्यूमिडिटी रहती है, इतनी ज़्यादा, आप एसी के बिना बैठ नहीं सकते हैं, और ऐसे में आप भीग जाते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, सब डैम्पनेस होती है। अब ऐसे में एक पेशेंट जिसको एस्मा है, एस्मा की बात मैं इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी होता है और ये बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है कई बार, तो कैसे अपना ध्यान रखें?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप एस्मेटिक है तो अपना ट्रीटमेंट जो है उसको रेगुलर तरीके से लें, प्रिस्क्राइब तरीके से लें, रूटीन फॉलो करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपको अपना एक्सपोजर कम करना है, तो आइडियली तो बारिश में बहुत ज़्यादा भीगना अवॉइड करना चाहिए, हो सके ना भीगें, अम्ब्रेला यूज़ करें। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं, पार्क्स में सुबह के टाइम पे, पार्क में, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका आसपास का फ्लोरा फौना, जिसे हम कहते हैं पेड़ पौधे, बदल जाएंगे, तो आप मास्क यूज़ कर लें, तो ये सब चीज़ें आपको बेहतर जिंदगी जीने में हेल्प करेगी।
0: जी जी, तो बहुत सारी और भी बातें हैं हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कैसे आपको ये पता लगे कि आपकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपको खांसी जुकाम हो रहा है, ये नॉर्मल वायरल नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या असर दिखाती हैं वैक्सीन्स, ये भी हम जानेंगे, और बहुत से और भी सवाल कि अपने आसपास घर को कैसे ठीक रखें ताकि ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ना आ पाएं। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, और ऑल इज वेल में आज हम बात करें हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में, खास तौर पर से मानसून सीजन में। मानसून वैसे बहुत प्यारा सा सीजन होता है, लेकिन अगर किसी को सांस से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो और ज्यादा गंभीर होने के चांसेस बढ़ते हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बुजुर्ग, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हर घर में खांसी करता हुआ कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा। आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनको खांसी जुकाम नॉर्मल तौर पर है, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, डॉक्टर अंशुल मित्तल। डॉक्टर साहब, निमोनिया के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक समय में इतनी खतरनाक हो जाती है, अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो जाती है, और कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका जो बेसिक चेस्ट इन्फेक्शन था वो निमोनिया बन गया है। सो ये कैसे पहचाने और किन पेशेंट्स को ये हो सकता है?
1: देखिए, निमोनिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ज़्यादा कॉमन होगा। अगर आप उम्रदराज हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपके पहले से कोई लंग की बीमारी है, आपके लिवर ख़राब है, किडनी ख़राब है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको पहले से ही कोई और कोमॉर्बिडिटी है, तो आपको ज़्यादा चांस है निमोनिया होने का। देखिए, मुश्किल सीज़न है, इसमें क्या डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, डायरिया, ये टाइफॉइड, ये सब बहुत कॉमनली होते हैं, तो बुखार सभी का एक जैसा होता है, तो डिफ्रेंशिएट करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना है, कोई भी बुखार हो, अगर उसमें आपको बलगम पीला आ रहा है, आपका बुखार हाई ग्रेड है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कॉमनली क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ आदमी को नॉर्मल एक्टिविटी पे नहीं होती, आदमी को लगता है कि मैं एक स्टेयर चढ़ रहा हूँ, सांस फूल रही है, बुखार की वजह से है। लेकिन इसको आपको रियलाइज करना है, जितना जल्दी आप इस बात को रियलाइज करोगे और जितना जल्दी आप कंसल्ट करोगे, अर्ली ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली आउटकम आपका बदल देता है। बहुत लोग ओपीडी बेसिस पे ठीक हो जाते हैं, वार्ड्स में ठीक हो जाते हैं, आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटर्स पे जाने की, बायपैप के यूज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो आपको तीन साइंस बहुत ध्यान रखने हैं। फीवर हाई ग्रेड है, तीन दिन के बाद भी रह रहा है, आपको फीवर के साथ खांसी है जिसमें पीला बलगम आ रहा है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ है उन एक्टिविटीज पे जो आप नॉर्मली आराम से कर लेते थे,
0: जैसे आप वॉक कर रही हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है,
1: आप वॉशरूम जा रहे हैं, आपको सांस फूल रहा है, तो ये जो एक्टिविटीज जो आप आम तौर पे कर लेते हैं जब आपकी इनमें सांस फूले, तो ये डेंजरस साइन, रेड फ्लैग साइन।
0: जी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, टीबी की भी बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस अपने आप में बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, और इस पे हम पूरा एक एपिसोड भी कर चुके हैं, जिसमें आपने बताया कि जिनका ट्रीटमेंट अगर छूट जाता है तो वो और ज्यादा रिस्की हो जाता है। बट अगर कोई व्यक्ति ट्रीटमेंट ले रहा है,

0: बुखार जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें भी रूल आउट करना बहुत जरूरी है
1: जी। यानी टीबी के पेशेंट्स को ध्यान रखना बहुत ज्यादा चाहिए, और जिन व्यक्ति को डॉक्टर साहब या तो डायबिटीज है या फिर उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, क्या उनमें भी ये मॉनसून में ज्यादा दिक्कत हो सकती है?
0: जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज है, डायबिटिक्स है, किस स्टेरॉइड्स पे हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट पे हैं, जिनको कार्डियक डिसीज है, या फिर जिनका लिवर कमजोर है, जिनके जो डायलिसिस पे हैं किडनी के, ये मरीज होते हैं जिनमें स्पेसिफिकली इस सीजन में निमोनिया होने का रिस्क 10 टाइम्स हायर देन नॉर्मल पॉपुलेशन है
1: जी, यानी ज्यादा बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम बात करेंगे आगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीन बहुत सारे बच्चों को लगाई जाती है फ्लू की, और बहुत सारे बड़े लोग भी फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं, क्या ये इस सिचुएशन में काम आ सकती है? ये सवाल और इस सवाल के जवाब इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और हम बात करें हैं मॉनसून सीजन में होने वाली सांस की प्रॉब्लम्स के बारे में। ये कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती हैं, खास तौर पर से अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर हैं, किसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आप डायबिटिक हैं, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो अपना ध्यान आपको हर सीजन में थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ समय से काफ़ी अवेयरनेस आई है कि फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो फ्लू बहुत जल्दी बच्चों को भी हो जाता है, बुज़ुर्गों को भी हो जाता है, और ख़ास तौर पर से वो लोग जो मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर पैरामेडिकल, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वैक्सीन की। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये वैक्सीन कब कब लगवानी चाहिए, किस उम्र से लगवानी चाहिए, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं?
1: देखिए, फ्लू का वैक्सीन हर किसी के लिए है। फ्लू का वैक्सीन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, आपकी कोमोर्बिडिटी, सबके लिए है। एक बात इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं फ्लू लग का वैक्सीन लगाया तब भी फ्लू हो गया, तो ये जानना जरूरी है कि फ्लू का वैक्सीन आपको नॉर्मल फ्लू से प्रिवेंट करने के साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट सिवियर फ्लू इन्फेक्शन, जो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, उससे बचाने की मंशा से लगाया जाता है। नॉर्मल फ्लू जिसमें आपकी नाक बहेगी या फिर आपको एक दिन बुखार आ जाएगा, आपको हल्की खांसी हो जाएगी 2 दिन, उसके लिए फ्लू वैक्सीन टारगेट नहीं है।
0: अच्छा,
1: टारगेट इज फ्लू वैक्सीन, फ्लू जो सिवियर निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्लू वैक्सीन इररिस्पेक्टिव ऑफ एज है। यूजुअली हमारी कंट्री में सितंबर के महीने में फ्लू वैक्सीन आती है। कभी कभार फ्लू का स्ट्रेन चेंज होता है तो जनवरी फरवरी में एक और वैक्सीन आती है। तो यूजुअली हम कहते हैं साल में एक बार, लेकिन किसी किसी साल 2 बार भी लगानी पड़ जाती है।
0: ओके, तो ये किसी भी एज में लगवाई जा सकती है। जैसे अगर बच्चे हैं, बच्चों में बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फैलती हैं, फ्लू तो बहुत जल्दी होता है, और एक बच्चा अगर बीमार स्कूल में गया है तो आधी क्लास अगले दिन बीमार हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फ्लू की वैक्सीन क्या कोई साइड इफेक्ट भी देती है बच्चों को?
1: नहीं, बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, लेकिन दे आर लेस देन 0.01%। सो फ्लू वैक्सीन इज सेफ फॉर एवरीबॉडी एंड इट शुड बी टेकन बाय एवरीबॉडी, स्पेसिफिकली पीपल हु गो इन लॉट ऑफ क्राउडेड एनवायरनमेंट, जिनको पहले से ही बीमारियां हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है
0: जी।
1: बाकी सब लगा सकते हैं, इट इज रिकमेंडेड बाय गाइडलाइंस फॉर एवरीबॉडी।
0: तो इसको जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्लू हो गया लगाने के बाद भी, तो क्या इसके बाद जैसे फीवर है अगर 102 आ रहा है तो थोड़ा कम आएगा या एक आधे दिन में ठीक हो जाएगा?
1: हाँ, आपका फ्लू की सिवियरिटी कम हो जाएगी, आपको सिवियर फ्लू होने का, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन, निमोनिया, ऑक्सीजन कम होना, सांस में तकलीफ होना, ऐसे होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है,
0: खांसी बहुत दिनों तक जो रहती है।
1: नॉर्मल फ्लू जिसमें 2-3 दिन खांसी, 2-3 दिन आपको बुखार रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा नहीं, लेकिन सिवियर फ्लू होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं।
0: यानी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेंगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे घरों में बहुत सारी डैम्पनेस होती है, फंगस लगा होता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखेंगे घरों में अपने आप सीलन आने लग जाती है और बारिश के मौसम में वो बढ़ जाती है, ये अगर किसी के घर में है तो ये कितना डेंजरस है, खास तौर पर से सांस की बीमारियों को लेकर?
1: देखिए, फंगल एलर्जी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो हमारे पास एस्थमेटिक्स आते हैं, जो सीवियर एस्थमा में होते हैं
0: जी,
1: उनको काफ़ी कॉमनली फंगल एलर्जी निकलती है
0: जी।
1: फंगल एलर्जी, फंगस हर जगह है, आपके लिए एक जगह पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉमनली डार्क डैम्प प्लेसेस, जैसे आपके लिफ्ट के शाफ्ट्स हो गए, अंडरग्राउंड बेसमेंट्स हो गए, बंद कमरे हो गए, जो स्टोर रूम्स हो गए जो महीनों बंद रहते हैं फिर अचानक खुलते, उन जगह कॉमन है। तो किसी को भी एक्यूट एक्सपोजर टू फंगस अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी एरिया में जा रहे हैं तो आप मास्क यूज़ कर लें, अपने स्टोर रूम्स खोलें तो उस टाइम मास्क पहन लें, स्पेसिफिकली इस सीजन में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस बीमारी को ABPA कहते हैं, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्पर्जिलोसिस।
0: ओके,
1: ये सिवियर एस्थमेटिक्स में होती है, और एस्थमा की एक खासियत है वो लंग्स को खराब नहीं करता अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट। ABPA एक एस्थमा का ही टाइप है जिसमें आपकी लंग्स सुकुड़ जाती हैं, जैसे आपने फाइब्रोसिस सुना होगा वो हो जाता है। तो इसको 2 तरीके, एक तो इलाज और एक अवॉइडेंस, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी। यानी फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस सीजन में, और बारिश की वजह से घरों में सीलन आना बहुत कॉमन है, इसलिए अगर आपके घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है तो प्लीज़ उसका ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। बहुत सी बातें और भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अगर किसी व्यक्ति को बारिश के मौसम में हो रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वैक्सीन इसमें कोई बड़ा असर दिखाती है, और घर पर क्या रेमेडीज हैं जिनसे आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ऐसे कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुल मित्तल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन, SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। और इनसे हम ऐसे ही सवालों के जवाब जान रहे हैं। डॉक्टर अंशुल, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी खांसी या उनका जुकाम जो है वो काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। जुकाम फिर भी ठीक हो जाए पर कहीं ना कहीं खांसी जो है वो हफ्तों तक चलती रहती है, और मजाक में लोग एक दूसरे को बोल भी देते हैं कि भाई आप TB का टेस्ट करा लो। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस मौसम में अगर खांसी 1, 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो ये क्या नॉर्मल वायरल है या फिर एक्चुअली में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है?
1: देखिए, अगर हम टेक्निकल पार्ट में चलें तो किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसको इवैल्यूएट तो कराना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जो इस सीजन में वायरल खांसी होती है उसके बाद एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट वायरल ब्रोंकियोलाइटिस।
0: ओके।
1: वो परसिस्ट कर सकती है, उस वजह से 3 to 4 weeks तक कभी कभार खांसी रह जाती है जो हल्की हो सकती है, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगी। खांसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सांस नहीं फूलना चाहिए। अगर आपको खांसी के साथ सांस फूल रहा है तो ये नॉर्मल पोस्ट वायरल खांसी नहीं है।
0: Okay.
1: आपको और कोई दिक्कत हो सकती है। खांसी के साथ आपका वजन कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, आपको कंटिन्यूअस बलगम आ रहा है, तो ये पोस्ट वायरल खांसी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है वो पोस्ट वायरल के बाद हो गई है, उसे मान के हफ्तों तक महीनों तक बैठे रहते हैं और फिर जब आते हैं तो काफ़ी कुछ हो रखा होता है ऑलरेडी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस स्टेट में इलाज करना। और किसी भी कोई भी इलाज करो, अगर आप एक हिस्से में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको ठीक तो कर सकते हो, 100% रिकवरी तो कभी किसी चीज़ की नहीं होती
0: जी,
1: तो कुछ डैमेज रह जाता है। तो अगर आपको पोस्ट वायरल 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो यू शुड कंसल्ट
0: जी। यानी पोस्ट वायरल 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी अपने आप में एक वार्निंग साइन दे सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अपने आप ही दवाइयाँ खरीद के खा लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है कि आप खुद जाएं केमिस्ट के पास जाते हैं और अपने आप से कफ सिरप और अलग अलग किस्म की दवाइयाँ ले आते हैं या एंटी एलर्जिक ले आते हैं कि हाँ ठीक है इससे ठीक हो जाएगा। ये किन सिचुएशन में ठीक नहीं होता है?
1: देखिए, पहली बात तो कभी भी कोई भी अनप्रिस्क्राइब मेडिसिन खानी ही नहीं चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन हमारे साथ प्रॉब्लम आती है एंटीबायोटिक्स के साथ। जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो 1 या 2 एंटीबायोटिक के कोर्स कर चुका होता है, उससे आपका क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई नहीं और आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर आपको हायर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन की नीड पड़ती है, ओरल देने का जो स्पेक्ट्रम है वो खत्म हो जाता है, फिर आपको लगता है कि गलती हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, लोग वायरल समझ के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, उनको टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, फिर वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। तो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स खाना तो इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दूसरी बात एंटी एलर्जिक्स और कफ सिरप्स की, तो ये ओवरडोज में नुकसान करेंगे। इनिशियल फेजेस में आप चाहो तो 1 या 2 दिन खा सकते हो, लेकिन अगर आपका इसके बाद भी परसिस्टेंट ऑफ सिम्टम्स है तो यू शुड गो टू योर डॉक्टर
0: जी। यानी कफ सिरप दिन में कितनी बार लेना चाहिए? बहुत सारे लोग ना हर 2-3 घंटे में एक चम्मच पी लेते हैं।
1: देखिए, कफ सिरप्स जो है वो मैक्सिमम कोई भी कफ सिरप 30 ml से ज्यादा तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। उसके ऊपर आप सिर्फ ओवरडोज कर रहे हो ना, उसको आपको कोई बेनिफिट होना है, मे बी सम साइड इफेक्ट्स ही होंगे, बेनिफिट नहीं होगा। काफी लोग कफ सिरप्स के बाद आते हैं, मेरे ट्रेमर हो रहे हैं, घबराहट हो रही है, उसका रीजन होता है उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, कई कफ सिरप्स में एस्थैलिन होता है, उसके टर्ब्यूटालीन होता है, ये सब सॉल्ट्स आपको ट्रेमर्स, स्पेसिफिकली ओल्ड एज वालों को घबराहट, टैकीकार्डिया, ये सब करने, हार्ट की गति बढ़ाने की, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। स्लीपीनेस, मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कफ सिरप पिलाते जाते हैं, वो सोते रहते हैं, वो सोते हैं तो उनकी खांसी कम हो जाती है, आपको लगता है कफ सिरप से हुआ, ये तो सोने से हुआ है, आपने प्राइमरी प्रॉब्लम को ट्रीट ही नहीं किया। तो कफ सिरप एडजंक्ट ट्रीटमेंट है। एडजंक्ट का मतलब होता है उनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है हमारे पास, 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन वॉट एवर दे हेल्प इन अ रिक्वायर्ड डोज, दे आर नॉट टॉक्सिक।
0: बिल्कुल यानी खुद से अपने डॉक्टर ना बने वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक कफ सिरप आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने कफ सिरप लिए, घर में रखे हैं, वो 1-2 महीने बंद रहे हैं, मतलब आपने एक बार यूज़ करे और फिर बॉटल भरी हुई है, फिर आपने जब 2 महीने बाद खांसी हुई फिर उसका इस्तेमाल किया, लेकिन जनरली एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आप जो भी सिरप्स यूज़ कर रहे हैं वो 1 महीने से ज़्यादा अगर खुल गए हैं तो ना यूज़ करें, क्या वाकई ये सच है?
1: बिल्कुल, आप अगर किसी कफ सिरप की बॉटल देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि जब तक बॉटल खुली नहीं है तब तक उसकी एक्सपायरी डेट ये है, जब आपने बॉटल खोल ली है तो उसके अंदर की दवाई 15 दिन, महीना, कई सिरप्स पे 2 मंथ्स लिखा होगा, उसके अंदर आपको यूज करनी है। उसके ऊपर वो इनफेक्टिव भी हो सकती है और नुकसान भी कर सकती है
0: जी। यानी आपको ये भी देखना है कि आपका जो कफ सिरप है या आप जो भी मेडिसिन बॉटल के थ्रू ले रहे हैं, सिरप ले रहे हैं, उसकी कब तक वैलिडिटी है। एक बार अगर उसका ढक्कन खुल गया, आपने इस्तेमाल कर ली, तो वो कितने दिनों तक ठीक रहने वाली है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमारे घर में खांसी जुकाम होता है, सबसे पहले स्टीम ली जाती है। स्टीम में कभी कोई लौंग डालता है, कोई थोड़ा सा मेंथॉल डाल देता है, या यूकलिप्टस ऑयल वगैरह डाल दिए जाते हैं, ये कितना अच्छा रहता है, आराम तो मिलता है इससे, तो ये कितने टाइम में करना चाहिए और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा बेटर है।
1: देखिए, जो भी ये स्टीम एक अलग चीज़ है, नेबुलाइजेशन एक अलग चीज़ है, यहाँ मैं क्लियर करूँगा
0: जी।
1: स्टीम जब आप करते हो तो आपके जो पार्टिकल बनते हैं वो 10 to 12 micron, 15 micron के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने पानी को कितना बॉइल किया है
0: जी।
1: लंग्स में किसी भी पार्टिकल को जाने के लिए 5 micron से नीचे होना पड़ता है। तो जो भी आप स्टीम लेते हो लंग्स में नहीं जाएगी, और आपको समझना है कि स्टीम लंग में चली जाएगी तो लंग्स जल जाएंगे। तो गॉड ने बनाया है कि स्टीम्स लंग में नहीं जाती। तो हमें हमेशा याद रखना है, हम गले की खांसी से जूझ रहे हैं या लंग्स की खांसी से जूझ रहे हैं। स्टीम आपके सिर्फ गले को सूदिंग एजेंट की तरह काम करती है। जैसे आप स्ट्रेप्सिल्स खाते हो ना, तो स्ट्रेप्सिल्स या फिर कोई लोजेंजेस लेते हो, तो वो सिमिलर है। बस आपने उसको स्टीम फॉर्म में मेंथॉल ये सब लेके वो आपके गले को सूद कर देती है। आपके गले में जो इरिटेशन है उसको थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर देते हैं, तो आपकी खांसी रुक जाती है। तो जब आपको सोर थ्रोट है ये हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपको लंग से खांसी हो रही है, अगर आपको इन्फेक्शन है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है।
0: सो डॉक्टर साहब, हम पहचाने कैसे कि खांसी, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, आप पहचान सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान कैसे पहचाने कि खांसी लंग की मेजर प्रॉब्लम है या फिर गले में वैसे ही।
1: देखिए, 2-3 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बलगम आना, अगर आपको येलोइश बलगम आ रहा है तो मोस्ट लाइकली खांसी लंग से होगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, क्या सोने से खांसी रुक जाती है। आपके गले में खांसी होती है, आप इरिटेशन से खांसते हो, अगर आप सो जाते हो तो आपकी खांसी एकदम से रुक जाती है, आप खांसी से उठते नहीं हो। अगर कोई बंदा खांसी से बार बार उठ रहा है नींद में से, तो ये चेस्ट से खांसी होगी, गले से नहीं होगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, जो गले की खांसी होती है वो आपको खांसी से पहले गले में इरिटेशन महसूस होगा। जब आपके चेस्ट से खांसी होगी तो वो सडनली आएगी, आपको उससे पहले कोई प्री सिम्टम्स नहीं होंगे, आपको एकदम से आएगी। तो ये कुछ माइनर साइंस होते हैं जिनसे हम अलग करने की कोशिश करते हैं। इट विल नॉट ऑलवेज वर्क, बट Most of the cases it will work.
0: जी, और nebulization कई लोग खुद कर लेते हैं, बच्चों को कई बार करा देते हैं, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब पहले कभी किया होता है, उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं, तो क्या नेबुलाइज करने का भी तरीका अलग अलग होता है।
1: तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए पहले बताऊंगा, 6 मंथ्स के नीचे नेबुलाइजेशन रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि 6 मंथ्स के नीचे जो नेबुलाइजेशन जिस रिसेप्टर पे एक्ट करती है वो आपके ट्रैकिया में बने ही नहीं होते।
0: अच्छा।
1: उनकी डेवलपमेंट 6 मंथ्स के ऊपर होती है, तो 6 मंथ्स के नीचे आप कर नेबुलाइज कर रहे हो तो आप हार्म ज्यादा कर रहे हो, फायदा कुछ नहीं होने वाला। 6 मंथ्स के ऊपर फिर भी हम नेबुलाइजेशन रिकमेंड कर देते हैं बच्चों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: दूसरी बात, नेबुलाइज करने के लिए आप गले की खांसी, फिर वही बात, गले की खांसी में नेबुलाइजेशन का कोई रोल नहीं है। नेबुलाइजेशन इज मेड फॉर कफ विच इज कमिंग फ्रॉम चेस्ट, जो छाती की खांसी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी बात, नेबुलाइजर्स में जो दवाइयाँ आती हैं वो मिक्स नहीं करनी होती। बहुत कॉमनली होता है लोग दो रेस्प्यू लेते हैं, दो दवाई लेते हैं, एक साथ डालते हैं और फिर नेबुलाइज कर लेते हैं। आपको ये समझना है, अगर कंपनी चाहती है आप मिक्स करो तो मिक्स करके ही देती, आपको मौका नहीं देती,
0: अलग
1: अलग दिया है इसीलिए, क्योंकि वो अलग अलग नेबुलाइज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
0: तो दोनों में गैप होना चाहिए, थोड़ा सा
1: गैप होना चाहिए, मिक्स नहीं करना है। कोई भी नेबुलाइजर मिक्स करने के लिए आप अगर पैकेट पढ़ोगे, आजकल रिकमेंडेशन आती है, उस पर लिखा ही नहीं है मिक्स करने के लिए। दूसरी बात, आपका नेबुलाइजर साफ होना चाहिए, आपका नेबुलाइजर का फिल्टर क्लीन होना चाहिए। नेबुलाइजर पुराने रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनसे वो ऑन कर दे तो सिर्फ आवाज करते हैं,
0: अच्छा,
1: भाप नहीं बनती है क्योंकि वो ब्लॉक्ड होते हैं। तीसरी बात, एक दूसरे का मास्क नहीं यूज करना है, आपको मेरा मास्क, मैं आपका मास्क, बच्चे का मास्क अडल्ट लगाए, अडल्ट का मास्क बच्चे लगाए, बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों की प्रिस्क्राइब मेडिसिन और अडल्ट की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मेजोरिटी केसेस में सेम हो सकती है, 12 साल के ऊपर सब सेम हो जाता है, लेकिन उसके नीचे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ दवाइयां बच्चों में यूज नहीं कर सकते। फिर नेबुलाइजेशन जब भी आप करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेबुलाइजर मास्क को अपने फेस पे टाइट बांधो। दवाई थोड़ी थोड़ी निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है सारी यहाँ से निकल रही है, इट इज इम्पॉर्टेंट। और जब भी नेबुलाइज करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ब्रीथ इन करके, आपने ब्रीथ इन किया, आप अपनी ब्रेथ को 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, जितनी देर आप होल्ड कर सकते
0: हैं
1: ताकि वो अंदर काम करें। अंदर गई, आप उसको होल्ड किया, तभी वो रहेगी। इंपॉर्टेंट नेबुलाइजेशन के साथ ये है, वो बॉडी में और किसी ऑर्गन पे नहीं जाती, वो आपकी लंग्स में जाती है, आपकी लंग्स में ऐड करती है और बाकी दवाई मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। और कोई भी नेबुलाइजर यूज करने के बाद मुंह गार्गल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दवाई मुंह में जमा हो जाती है, थोड़ी बहुत मुंह को जमा हो जाती है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसको गार्गल्स करके निकाल दें, क्योंकि अगर वो जमा रहेगी तो एक तो साइड इफेक्ट्स करेगी, सिस्टमिक ज्यादा जाएगी, दूसरी मुंह में छाले हो जाएंगे, टेस्ट लॉस बहुत कॉमनली नेबुलाइजर के बाद लोग, मेरे को टेस्ट खराब हो जाता है नेबुलाइजर, इसलिए कहते हैं क्यों मुंह की दवाई साफ नहीं करते। तो नेबुलाइज करने के कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉलाइज तरीके हैं, वो समझाने बहुत जरूरी हैं और समझने भी बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि एक आम इंसान को नहीं पता होता, नेबुलाइजर घर में होता है, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, पर सबसे बड़ा पॉइंट मिक्स कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो मिक्स कर देते हैं,
1: पानी भी डाल देते हैं।
0: हाँ,
1: एक्स्ट्रा पानी भी डाल देते हैं
0: जी, कि शायद भाप थोड़ी ज्यादा बनेगी। और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो डॉक्टर साहब ने बताई है कि आप सांस को होल्ड नहीं करते हैं, वो एक बहुत सारे लोगों में देखा है कि बस नेबुलाइजर लगा हुआ है और भाप जा रही है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही, उसका इफेक्ट फिर काफी समय बाद आता है। सो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक आम इंसान को नहीं पता होती है, इसीलिए एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ प्रोग्राम ऑल इज वेल में। डॉक्टर अंशुल, आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगी, अपनी चेस्ट को, अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए मानसून में या किसी भी सीजन में क्या टिप्स आप देना चाहेंगे सभी को?
1: देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। आप अलूम विलूम नॉर्मली हम सुनते हैं, सब करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, एक थ्री बॉल स्पायरोमीटर आता है, जितने भी लोग कोमोरबिडिटी के साथ ओल्ड एज हैं आप उन्हें प्रमोट कीजिए, वो थ्री बॉल स्पायरोमीटर यूज करें
0: जी।
1: आपके घर में किसी को भी खांसी है, आपके घर में किसी को भी वायरल है, ट्राई टू कीप उसको सेपरेट रखें बाकी सबसे, या फिर वो बंदा मास्क यूज कर ले जब वो बैठा है बाकियों के बगल में। अपनी वैक्सीनेशंस करा लें, अपनी मेडिकेशंस के साथ रेगुलर रहें, टेम्परेचर शिफ्ट जितना हो सके अवॉइड करें। अगर आपको एसी में बैठे हो बाहर जाना है, थोड़ी देर आके अपने कमरे में बैठ जाइए, पहले बाहर पंखे में, उसके बाद बाहर चले जाइए, ये आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनाएंगी चीजें। यही सब इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना है तो चेस्ट डिसीज कम होगा
0: जी। यानी कुछ छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान रखेंगे तो हर मौसम में आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, ना कि बीमारियों से परेशान रहेंगे। डॉक्टर अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल प्रोग्राम ऑल इज वेल में इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, दिस इज दीक्षा।

0: फिर कहना शर्माना।
1: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
2: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
3: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
4: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?

हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज मैंने अपने शो की शुरुआत ये वाला गाना गाकर क्यों की है। वैसे तो मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, इसलिए मैं अपने हर शो की शुरुआत एक गाने से ही करती हूँ। बट यस, आज ये गाना मैंने इसलिए गाया है क्योंकि हमारे शो के जो आज गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस शेफ हैं। ये बहुत ही शानदार शेफ हैं, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बहुत अमेजिंग मुकाम हासिल किए हुए हैं। सो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे विजनरी लीडर मौजूद हैं जिन्होंने इंडिया के फूड इंडस्ट्री में इनोवेशन और एक्सीलेंस का एक नया बेंचमार्क सेट किया है। ही इज द सीईओ ऑफ फेटर्निटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड मैनेजमेंट कंपनीज, एंड द माइंड बिहाइंड आइकॉनिक ब्रांड्स लाइक जोका, सिडेली, तुलसी, नुमाई, फायर्ड अप, मिर्च, ग्रेनॉस, मदुराई, ब्लिंक, योलो एंड हरमनोज। He has also been associated as CEO with Anardana, the biggest Indian restaurant chain in Delhi NCR, and Romeo Lane, the biggest high energy bar in India and Dubai. Iske alawa, inko Face of the Future India aur President Award 2016 se bhi sammanit kiya gaya hai by the Indian Hospitality Congress. He brings over 26 years of rich experience in world-class hotels.

0: hotels and premium restaurants. So friends, स्वागत करते हैं a true culinary visionary and business leader Mr. मनोज के राय जी का. So sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में.
1: Thank you very much for calling me.
0: So sir, किस तरीके से आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे.
1: तो मेरी जर्नी जो है इस इंडस्ट्री में शेफ बनने की और बाद में जो बीच में बदना, दिस वाज नॉट अ प्लान्ड वन, इट वाज मजाक में बन गया. मैं आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्स खेलने का बड़ा मन था लेकिन स्पोर्ट्स सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी रीज़न से. मेरे साथ के लोग इंडिया के लिए खेले, मैं नहीं खेल पाया. तो जब मैं वाज लिटिल डिसहार्टन, तो मैं दिल्ली घूमने आया था
0: जी.
1: तो जब मैं घूमने आया तो ट्रेन में कोई मुझे मिल गए, हमारे फौजी अंकल, उन्होंने बताया मेरे बेटे ने होटल मैनेजमेंट किया है और वो बहुत पैसा कमाएगा.
0: अच्छा.
1: तो मैं वापस गया, मैं कहा मैं भी यही करूँगा. लेकिन जब वहाँ पहुँचे मालूम चला कि ये तो कहानी उल्टी थी, यहाँ तो बहुत मेहनत करना पड़ता है
0: जी.
1: तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड.
0: ओके. सो जब आपने ये शुरू किया लाइक कॉलेज होटल मैनेजमेंट, और पहली तो बताइए आपने कहाँ से किया?
1: गोवा से.
0: हाँ जी. ओके. और तो फैमिली में किसी ने मना किया? पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं इंजीनियर डॉक्टरी ये चीजें करनी है, थोड़ा सा होता है ना माइंडसेट हर पेरेंट का.
1: मैं तो बिहार से हूँ. अच्छा. तो मुझे तो बोला अरे पंडित का बेटा खाना बनाएगा.
0: अच्छा.
1: ये और तुमको कोई लड़की देगा शादी करने के लिए? तो ये तो पहले से मुझे मिल गया था कि ये नहीं हो पाएगा.
0: अच्छा.
1: तो जब मुझसे पूछा मेरे मामा ने क्या करते, मैं कहा शेफ हूँ. कह रहे हिंदी बताओ क्या बोलते हैं उसको. मैं बावर्ची. कह रहे यार तुम पंडित होकर ये काम करोगे अब
0: जी.
1: अब तुम खाना पकाओगे. तो मेरे खानदान ने ही मुझे छोड़ दिया था 6 साल तक. जब तो मैं टीवी पे नहीं आया
0: जी, जी,
1: जब मैं टीवी पे आया था तो आई थिंक दे स्टार्टेड लाइकिंग मी अगेन. बट हाँ ठीक है.
0: तो वहाँ से लेकर टीवी तक का सफर किस तरीके से आपने किया उसके बारे में बताएं?
1: बहुत हार्ड वर्क. मतलब जब मैं कॉलेज पढ़ने गया तो समझ में आया कि जो सुन के आया था वो यहाँ पे रियलिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
0: जी.
1: और हमारे टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 97, 98, 99 कॉलेज, अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी. रेस्टोरेंट नहीं थे, होटल थे, होटल बहुत लिमिटेड थे. अब तो खैर हर एक कोने में 5-star होटल भी है, 4-star होटल है, रेस्टोरेंट है. हमारे टाइम पे ऐसा था नहीं, ना गूगल था, ना इंस्टाग्राम था, ना कुछ ये थी. तो वॉट एवर यू वॉन्ट डू, यू डू हैव टू डू बाय सेल्फ. सो वी वर स्केयर्ड कि एटलीस्ट जॉब मिल जाए हमारे को, मतलब कुछ कर लें. तो मैं बोला यार शेफ बनते हैं. मेरे को तो शेफ बोलने में भी एक दिन लग गए थे. मैं बोलता सेफ. ठीक है. तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई स्कूल में कि क्या शेफ बोलो. मैं क्या सेफ बनूंगा, सेफ. तो जब पता चला कि करना है तो वो बहुत ही हार्ड वर्क था. लेकिन जब आँख खुली समझ में आया कि यार अब आगे हैं तो पीछे हटेंगे नहीं
0: जी.
1: तो मैंने डिसाइड किया कि जो जर्नी मुझे 8 साल में करनी है, जो अगर कहते हैं कि ये इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको 7-8 साल लगेंगे, मैं इतनी मेहनत करूँगी मैं 4 साल में पहुँच जाऊँगा. तो मैंने मेहनत को डबल किया अपने, और बहुत दिन रात मेहनत की. दिन रात मतलब 18 घंटे 19 घंटे. मुझे याद है वो टाइम भी आया था जब मैं बहुत कम एज में आई बिकम लिटिल बिगर पोजीशन पे आ गया था. मैं नंबर 2 पे आ गया था. नंबर 2 पे आने के बाद भी आई हैड गोरा शेफ फ्रॉम कनाडा, जिसकी जो उसके टाइम पे मैंने 9 महीने तक आई वर्क विदाउट टेकिंग अ डे ऑफ. तो वो मुझे बोलता था भाई तू क्या करता है? बोला सर मुझे बड़ा बनना है. तो वो जोश था बड़ा बनने का उस टाइम पर
0: जी.
1: और फिर बट आई थिंक 2000 में मैंने करियर शुरू किया था और 2004 में आए बिकम एग्जीक्यूटिव शेफ. 4 साल में जर्नी पूरी कर ली मैंने अपनी, मतलब पोजीशन वाली
0: जी.
1: तो वो स्ट्रगल था बस, बट मजा ही बताया स्ट्रगल करने में.
0: मतलब अब जिस मुकाम पर आप पहुंच गए हैं तो जब ये वक्त याद करते हैं तो कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा होता है. इट्स साउंड्स वेरी इंस्पायरिंग व्हेन आई थिंक अबाउट कि मैंने ऐसे मेहनत की. व्हेन आई सी आज के जो लड़के हैं तो मैं उनको इसे इतना बोलता हूँ भाई अगर तुम मेरी मेहनत के 30% भी काम कर लोगे ना तो जिंदगी में कुछ बन जाओगे.
0: बिल्कुल.
1: देखो मैं ये नहीं कहता हमने जो किया बहुत अच्छा किया, हमने जो किया अपने नॉलेज में किया, गलत भी किया सही भी किया. गाइडेंस नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था, ना कोई रेफरेंस था जैसे आज है. तो उस वक्त पे मेहनत बहुत की. आज तो हर चीज़ अवेलेबल है, अच्छे मेंटर्स भी हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इंस्टा है, गूगल है, प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैज बिकम वेरी चीप. तो यू गॉट लॉट ऑफ थिंग्स. एंड बहुत सबसे अच्छी बात बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. तो लोगों को आज उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती
0: जी। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो सर, जैसे हम देखते हैं आजकल, आपने बताया आप प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली आपने कॉलेज से, उसके बाद इतना स्ट्रगल किया, बट अब जो ये रील्स का एक ज़माना चला हुआ है, हम देख रहे हैं बहुत लोग खाना बनाने की रील्स डाल डाल के फेमस हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक, किस हद तक सही है आपके अकॉर्डिंग?
1: मैम देखो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ भी और नहीं भी हूँ। हूँ इसलिए कि शायद ठीक है, वो अपने पैशन को दिखाते हैं, बट मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि जो जो दिखता है वही सच नहीं होता। मतलब जो मैंने दिखाया या किसी ने दिखाया सच नहीं होता, सच के पीछे बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद वो रील बनी, अच्छा कंटेंट है तो वो चल जाती है, बट वो कंटेंट को यू कैन नॉट टेक एज अ नॉलेज, मेरा ये मानना है। नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये मुझे भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जिस बिजनेस में मैं हूँ, जब मेरे क्लाइंट मुझे भेजते हैं कि मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैं क्या बन जाएगा, नहीं मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या, ये है क्या, एंड दे हैव नो क्लू कि वो उन्होंने मुझे क्या भेजा।
0: ओके,
1: ठीक है। सो नाउ इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग मी एंड टीचिंग मी कि दिस इज व्हाट दे वांट। जिसको इस इंडस्ट्री का अता पता नहीं था, जिसने अपने ही रेस्टोरेंट को खोलने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर किया या कंसल्टेंट हायर किया, वो आपको एक महीने बाद सिखाता है। तो मैं आपको ये सुना कहानी, बड़ी अच्छी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कैसे। तो मेरा एक बॉस था, जब मैं इंडिया आया तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, उस कंपनी के बारे में बताऊँगा नहीं भाई आपको
0: जी।
1: तो उसने मुझसे पूछा ये क्या है, किसी बहुत ही स्पेशल महंगी सब्जी के बारे में से पूछा जो उसने, और वो बहुत वो मेरा बॉस था
0: जी।
1: तो मैंने कहा ये इसको ये बोलते हैं, एस्पैरागस बोलते हैं। करे क्या होती है, मैंने कहा ये इंग्लिश वेजिटेबल है, बहुत अच्छी होती है, ऐसा है वैसा है। थैंक यू मनोज भाई, सिखाया मुझे आपने। चार दिन का वो मुझसे पूछता, मनोज भाई आज ना अच्छा पका नहीं एस्पैरागस,
0: अच्छा
1: आज एस्पैरागस अच्छा पका नहीं है
0: जी।
1: तो मैं खूब हंसा, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि सीख के सिखाओ मत,
0: बिल्कुल
1: सीख के बताओ।
0: बहुत ही एक फनी मोमेंट भी है आपका।
1: ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट है, ऐसे तो बहुत सारे फनी मोमेंट लाइफ के अंदर हमने किए हैं, देखे भी हैं, बहुत है देखे। मतलब मैं आई वॉज वेरी क्या बोलते हैं, हार्ड वर्किंग, बहुत ही बिगड़ा हुआ वो था मैं, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट।
0: अच्छा,
1: मैंने बहुत लोगों की रैंकिंग की अपने हाथ काम करते हुए।
0: अच्छा, तो सर आपका जैसे 26 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, आप बता
1: जैसे 26 साल का ही है,
0: 26 साल का ही है। चलिए, सो हम तो कहते हैं इंशाल्लाह बहुत आगे और बढ़े, लेकिन इसमें कोई कोई पल ऐसा हो जो जहाँ पर आपने एकदम हार मान ली हो, कुछ ऐसा समय आया आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगे कि नहीं वो चीज जो मैंने सोची है वो नहीं हो पाएगी?
1: 3 बार।
0: अच्छा,
1: अपने करियर के स्टार्टिंग में जब मैं करना, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, वो टाइम हार्ड वर्क इसलिए था क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कमाना मजबूरी थी, लेकिन एक टाइम ना लगा कि यार नहीं हो पाएगा ये मेरे साथ के लोग ना, उस टाइम पे ये आपके कॉल सेंटर का बड़ा वो चल रहा था, एंड दे वर पेड वेरी हैंडसमली, मतलब अब हम जहाँ 2-2.5 हज़ार पे काम करते वो 10 हज़ार पे काम करते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे लगा यार मैं भी छोड़ दूँ नौकरी एक बार, मैं भी कहाँ फंस गया, क्या बाबूची उनके लगा हुआ हूँ, ना जिंदगी है, रात दिन सुबह शाम लगाऊँ।
0: बिल्कुल।
1: तो आई थॉट, तो मैं एक बार किसी बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू चला भी गया लाइन छोड़ के, मतलब टू बी रेस्टोर मैनेजर
0: जी।
1: फिर मैं बैठा इंटरव्यू में, तो उसने मुझसे कुछ पूछा, मैंने उससे बायोडाटा मांग लिया, बोला भाई 6 रुपये खर्च किए लाया बायोडाटा दे, मैं जहाँ था वहीं ठीक हूँ। देन अगेन आई केम बैक एज अ शेफ, इमैच्योरिटी, मोर ऑफ इमैच्योरिटी दैट आई कुड सी। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि एक बार मैं रेस्टोरेंट खोलने के लिए गया, शायद मुझसे कुछ गलती हुई, व्हेन आई वाज एट माय प्राइम आई टुक अ डिसीजन टू ओपन माय रेस्टोरेंट। बोलते हैं ना सेलिब्रिटी शेफ बनने के बाद रेस्टोरेंट खोलने का मजा अलग आता है
0: जी जी।
1: तो वो एक विश्वास किया किसी के ऊपर, और फिर जब रेस्टोरेंट खोलने बैठे तो मालूम चला कि उसके पैसे नहीं थे और मैं हो गया, खुद हो गया बैंकक्रप्ट। तो हुए, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप किसी ब्रांड को बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी एस्पैरागस का
0: जी,
1: वो ब्रांड आज इंडिया का टॉप ब्रांड है।
0: अच्छा,
1: और उस ब्रांड को बनाने वाला आदमी मैं ही हूँ, और मैं एक खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि जब मैं आया तो वो ब्रांड वॉज नोवेयर। आज लोग उसके बारे में बात करते हैं, आज की 400-500 करोड़ की वैल्यूएशन लगाते हैं, तो मुझे पता है वो ब्रांड कहाँ से कैसे पहुँचा,
0: ठीक
1: है। लेकिन जब वो ब्रांड बनना शुरू हुआ, जब उस ब्रांड पर पूरा काम किया, जब वो ब्रांड बन चुका था ना, तो मुझे ये बताया गया कि यार अब नए स्टाफ की जरूरत नहीं है, अब हम पुराने जो लोग थे ना थॉट प्रोसेस वाले वही कराएंगे। सो वो पुराने और नए लोगों के कॉम्पिटिशन में ना वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो बना के उस ब्रांड को खड़ा करने की थी वो ख़राब हो गई, और जब वो ख़राब होने लगी ना, तो आपका आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए, देयर हैज़ टू बी इमोशनल अटैचमेंट दैट यू डू, और हमें कौन करेगा मोटिवेट इस एज के अंदर, यू हैव टू सेल्फ मोटिवेटेड। कहीं ना कहीं लगता है कि यार जिस ब्रांड को मैं खड़ा कर रहा था, एंड आई कुड हैव डन मच बेटर, शायद मैं इसको बीच में छोड़ के चला गया बिकॉज आई वॉज मेड द सर्कमस्टेंस वेयर आई हैड टू कम एंड लीव द जॉब दो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी बिकॉज जो ओनर थे ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टॉप मी इन द कंपनी बट ओनर फर्क क्या होता है ना कि ओनर के साथ डेली काम नहीं करते
0: जी.
1: आप काम करते हैं टीम के साथ
0: बिल्कुल.
1: और अगर आपकी टीम के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे. मैंने कहा कि हर काम के लिए लोग करते हैं वेट एंड वॉच. हमारी जो इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री ये वेट एंड वॉच नहीं होती बिकॉज आप जो भी काम करते हैं ना उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप काम करते हैं वो करते हैं आप किसी भी गेस्ट का इमोशन बाय करते हैं. कोई भी गेस्ट आपके रेस्टोरेंट में आया वो अपना वो पैसे उसके हैं वो अपने इमोशन के एक्सपीरियंस लेने आया. अगर आपने वहाँ गलती कर दी वो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा. मैं क्यों चाहूँ कि जो भी गेस्ट मेरे रेस्टोरेंट में आ रहा है वो उसका एक्सपीरियंस गलत हो मेरी वजह से या मेरी टीम की वजह से या मेरे अपने अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से. ऐसा क्यों नहीं है जो मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर कैलिबर है दिखाने का या करने का वो मैं हर उस गेस्ट को दिखाऊँ वो बोले यार दिस इज़ व्हाट इज़ अ प्लेस. ऐसे बनता ब्रांड. तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप चाहते हैं बहुत कुछ करना बट आपके हाथ शायद नहीं हो पाते उस काबिल. शायद इसलिए मैंने टाइम ले लिया जल्दी.
0: जी मनोज जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप हमें बता रहे हैं इस फील्ड के बारे में. सो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब जो एक सेलिब्रिटी शेफ का जो टैग है आपके साथ जुड़ा हुआ, ये किस तरीके से आप तक आपके पास आया या आप खुद इस तक पहुंचे, आपने कितनी मेहनत की, इसके बारे में हमें बताइए।
1: देखो मैं ना, मुझे ये पता भी नहीं कि ये टैग मुझे कब लग गया।
0: अच्छा,
1: मुझे नहीं आइडिया इसका, मुझे टैग कब लगा। आई थिंक 2014-13 में शायद चीज़ें शुरू हो गई थी, मतलब नॉट एज सेलिब्रिटी शेफ बोलूँगा, लेकिन हाँ अच्छा मच्छा काम कर रहे थे। वो सेलिब्रिटी शेफ बोलना, क्योंकि मैं कुणाल, हम इकट्ठे काम करते थे, कुणाल मैं रणवीर इकट्ठे काम करते थे, तो वो तो हमें भी नहीं मानते कि ऐसा भी कुछ टैग होता है। वो किसी दिन किसी जगह छप गया और वही चीज़ रेप्लिका होती गई, सेलिब्रिटी शेफ हर पेपर के कटिंग पे या कहीं भी आपको इंट्रो किया। तो वो किसने दिया मुझे, आज मैं ढूंढ रहा हूँ मन देखो कि किसने मुझे टैग दिया। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, खुद ढूंढ रहा हूँ कि भाई तू कौन था जिसने मुझे सेलिब्रिटी शेफ बोला। मैं इस वर्ड से बहुत अहमियत नहीं रखता। सेलिब्रिटी शेफ बहुत अच्छी चीज़ होती है बनना, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं एक जो वर्ल्ड शेफ आया था, मैं उससे बहुत बड़ा खुश हूँ। डॉक्टरेट में डिग्री से अच्छा वही है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका काम ही आपकी, जैसे डॉक्टर है वैसे शेफ है। तो आप शेफ बोलें या सेलिब्रिटी शेफ बोलें, शेफ बोलेंगे तो आई विल बी वेरी ग्राउंडेड। डोंट टेल मी सेलिब्रिटी शेफ, देन आई हैव टू बी, मेरे को अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छी गाड़ी चलानी पड़ेगी, टीवी पे आना पड़ेगा, 1 मिलियन फॉलोअर होना चाहिए मेरे पास,
0: बिल्कुल
1: है ना। वो मैं उसे पीछे हट चुका बहुत पहले। अब
0: मतलब आपका उसमें इतना
1: इंटरेस्ट, मैंने 6 साल पहले आई हैव बिकम वेरी लो प्रोफाइल जानबूझ के।
0: अच्छा, सो सर कभी ऐसा, मतलब आप बहुत हैंडसम लुक के हैं, तो कभी कुछ मॉडलिंग या इन चीजों में इंटरेस्ट रहा आपका, या कभी कुछ ऐसा मौका मिला करने के लिए? क्योंकि एक जब टैग जुड़ता है ना सेलिब्रिटी शेफ, तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे निकल के आती हैं, कभी कोई एड ब्रांड।
1: मैं आपको बड़ी एक ऐसी इंटरेस्टिंग बताऊं जो शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे बोली नहीं आज तक। सो जब मैं दुबई था तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम था अपने लिए, तो मैंने बहुत अच्छी फिटनेस भी बॉडी बनाई थी, मतलब आई वाज डूइंग लॉट ऑफ थिंग एंड लकली आई वाज डूइंग टीवी। तो मैं जी सोनी पे काम कर रहा था, वहाँ पे आई डिड अबाउट 45-50 एपिसोड किए मैंने उसके ऊपर। तो जी के जो सीईओ थे मनोज जी, आई थिंक ही मेट मी एट वन ऑफ द इवेंट एंड मुझे बोला कि यार तू ना यू मेक योर पोर्टफोलियो एंड अप्लाई फॉर अ मॉडलिंग। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मैं तो खाना पकाता हूँ। तू कर एक बार, तू कर
0: जी।
1: तो मैंने आई डिड माई पोर्टफोलियो, आई सेंड इट टू फ्यू, ही गेव मी सम कॉन्टैक्ट, मैंने उनको दिया। तो मुझे ना बड़े सारे ऐड के और मॉडलिंग के वहाँ लगे, तो मैं जब आने लगा तो मैं हंसने लगा कि मैं करूँगा मॉडलिंग। खैर जो भी है, तो आई डिड सम प्रिंट मॉडलिंग, जिसमें बैंक से ज़ारा है, दूध की कंपनी थी, सब चीज़ों की। इस बीच में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ कि आई वॉज इंजर्ड और मेरे को एक फ़ोन आता है कि आर यू अवेलेबल फॉर द शूट फ्रॉम दिस अप्रैल, टाइम था 2021 मुझे याद, 2021 का, फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स।
0: अच्छा
1: ठीक है, और मैंने उनको ना बोल दिया। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि गेम थ्रोन होता क्या है, ठीक है। और जब मैंने मैसेज दिखाया बेटी को, तो उसने मुझसे एक तरह बात नहीं की।
0: ओह माय गॉड,
1: 10 मिनट का फाइटिंग शॉट ऑन डेजर्ट विद द मेन एक्टर, वो सपोज टू बी मी, और मैंने उसको 1 मिनट बोला नहीं मैं आई एम नॉट फ्री। तो चीज़ें हुई भी, बट आई डोंट टेक थिंग्स एज दैट, जो है वो है, काम आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो कोई।
0: जी जी जी, मतलब आप थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल टाइप के भी है ना, कि आपको नहीं पता वो चीज़ें क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में भी नहीं पता था।
1: नहीं, नहीं तो बिहार के लड़के को कहाँ क्या पता होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या होता है, आप उसे पंचायत के बता देंगे पंचायत के भी।
0: हाँ, और जैसे आप बोल रहे हैं कि जो ये सेलिब्रिटी टैग है आपको पता ही नहीं है कैसे दे दिया, किसने दे दिया।
1: हाँ, मुझे नहीं पता
0: बिल्कुल, यही तो खासियत है ना फिर आपकी।
1: ये तो आप सेवा करो ना, लोगों की सेवा करो आप सोसाइटी को दो, जिससे मेरी एनजीओ चलती है,
0: बिल्कुल
1: गरीब बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए वाइफ करती हैं, आप वहाँ करो ना जहाँ पे आपको मन शांत रहे, जहाँ चीजें देख के लगे कि यार हमने कुछ सोसाइटी को वापस दिया है।
0: बिल्कुल,
1: लाके
0: मतलब आप इस चीज के अलावा आपका एनजीओ भी है और बहुत बच्चों की आप सेवा भी कर रहे हैं।
1: जब मैंने गरीबी देखी तो किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा
0: जी,
1: तो हमें लगा कि जब हम कुछ लायक हो जाएंगे तो हम शायद 2 बच्चों की किसी वक्त की रोटी खरीद लें या दे पाएं, तो शायद थोड़ा सा पुण्य, थोड़ी सी खुशी मिलेगी हमारे को।
0: बिल्कुल, और अगर ईश्वर ने इस काबिल बनाया तो डेफिनेटली करना चाहिए। बहुत से लोग मतलब सोचते भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आपने सोचा और आप लोग कर रहे हैं, सो बहुत बड़ी बात है, वेरी इंस्पायरिंग।
1: थैंक यू मैम।
0: सो मनोज जी, आप बहुत से ब्रांड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो किस

0: तरीके से इन सबको मैनेज किया जाता है, मतलब रेस्टोरेंट्स और बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो
1: हाँ, तो बेसिकली अभी करंटली जो एक कंपनी है फर्टिनिटी फूड्स का मैं सीईओ हूँ, इस बिना भी ईयर नाउ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था इनके साथ, मेरे दोस्त ही हैं अच्छे, वेरी यंगस्टर, वेरी डायनेमिक पीपल, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका एक ब्रांड है ज़ोका, इन्होंने 87-90 के करीब खोला था, देन दे हैड अ प्लान, सो व्हाट दे डू इज दे क्रिएट अ ब्रांड एंड दे सेल द फ्रेंचाइज, और इसके बाद जब मैं ज्वाइन किया तो आई थिंक दे ऑलरेडी हैड बिल्ड अ ब्रांड, का है तुलसी है, नमई है, फायरडप है, उसको हमने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब इट केम आउट रियली वेल, तुलसी हैज बीन डूइंग फिनोमिनली वेल, फायरडप इज डूइंग वेरी गुड, नमई इज डूइंग वेरी गुड, अब तुम तुलसी को लेके जा रहे हैं इंडिया के बाहर, नाउ वी ओपनिंग इन यूएस, नाउ ओपनिंग ज़ोका इन यूएस, नाउ वी आर ओपनिंग नमई पैन इंडिया, तुलसी पैन इंडिया, ये सारे ब्रांड को मैं मैनेज करता हूँ विद अ टीम, एंड अच्छा था, मतलब दिस इज एक्सपर्टीज, दिस इज नॉट अ वेरी बिग रेस्टोरेंट, 70-80 का रेस्टोरेंट है, छोटे रेस्टोरेंट चलते अच्छे हैं, लो कॉस्ट हैं, तो उतना फर्क है नहीं, मतलब आई कीप एंजॉयिंग व्हाट आई डू,
0: मतलब इंडिया में तो बहुत आपने सेटल कर दी चीजें, अब बाहर उन्हें ले जाने का भी प्लान,
1: अब यूएस साइन कर चुके, काम शुरू हो गया
0: जी, जी जी जी जी, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के। सो इसमें कैसे ये जैसे कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी मेंटेन किस तरीके से आप लोग करते हैं?
1: देखो मैम, ये ना ये बहुत ही बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है,
0: अच्छा
1: समझाने के लिए, तो क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड रेसिपी होती है, आप पहले व्हेन यू मेक मेन्यू, तो मेन्यू आने के बाद आप देखते हो कि किसके लिए बेस्ट शेफ कौन होगा, देन आई हैव अ कॉर्पोरेट शेफ, देन आई हैव अ रीजनल शेफ, जो सडन यू नो प्री ओपनिंग से लेके पोस्ट ओपनिंग तक उनके साथ खड़े हुए ट्रेनिंग करते हैं, देन वी हैव अ स्ट्रांग रेसिपीज, एंड देन वी कीप डूइंग लॉट ऑफ ऑडिट्स, मतलब कॉर्पोरेट टीम्स कीप मूविंग आउट, वी कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन कमेंट्स, कि जो कमेंट आते हैं रिव्यूज गेस्ट के, चाहे जोमेटो पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे वो कमेंट्स कार्ड पे हो, वी कीप थिंक क्या होता है, एंड जो ऑडिट करते हैं व्हेन वी गेट द रिपोर्ट एवरी मंथ, तो वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या कॉस्ट हो रही है, इफ इस कॉस्ट इज अंडर कंट्रोल, मतलब आपका चीज ही चल रही है, इफ इज नॉट अंडर कंट्रोल, इसकी मतलब आपकी स्पॉडेज हो रही है, और हर चीज़ का अपना एक फॉर्मेट है टू मेंटेन इट, तो दैट यू गेट टू सी कि कहाँ पे क्या है, क्या रेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वेंडर मैनेजमेंट, अगर आपका अच्छा वेंडर मैनेजमेंट है, आपकी अच्छी स्किल है, तो स्पॉडेज कॉस्ट कंट्रोल विल बी ऑलवेज इन कंट्रोल।
0: ओके,
1: हाँ जी।
0: और सर जैसे किसी को नहीं इस लाइन की नॉलेज है, उन्हें अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है,
1: ना करें आजकल तो हर बंदा रेस्टोरेंट खोल के बैठा हुआ है।
0: जी जी जी, ये तो
1: 100 खोलते हैं 110 बंद होते हैं,
0: बिल्कुल, तो मतलब इसमें आप क्या सलाह देंगे हमारे?
1: सलाह ये दूंगा कि भैया अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो प्लीज उससे खोल के ना घर की रूटीन ना चलाएं।
0: Okay.
1: You should have another business to run your family, run your house. Restaurant खोले, hire a professional consultant. आपके पास साल 6 महीने का फंड होना चाहिए टू इन्वेस्ट, बिकॉज इट्स नॉट कि आपने आज खुला आज ही पैसे कमा रहे हैं लेके चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, शुड हैव अ गुड बैकअप, क्योंकि जो पैसे आप लगा रहे हैं वही आपके हार्ड अर्न मनी है, कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है फंड, उसके इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और थर्डली आप कहाँ खोल रहे हैं
0: जी।
1: आपकी जेंट्री क्या है, आपने क्या उस जगह के बारे में लोगों से पता किया कि वो लोग खाते क्या हैं, क्या है, कैसे, हमें तो जगह मिलती है एंड वी जस्ट ओपन द रेस्टोरेंट। आजकल तो हिंदुस्तान में रियल एस्टेट हैज़ बिकम अ बिगेस्ट स्कैम, आप आइए मेरे यहाँ दुकान खोलिए मैं आपको पैसा दूंगा, ठीक है, अब वो पैसे तो दे देगा दुकान खोलने के, लेकिन वो वहाँ फुटफॉल नहीं है, तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट वो कौन देगा फिर?
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत ही डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री,
0: और जब तक मतलब साइड बाय साइड आप इसे कर सकते हैं।
1: एग्जैक्टली।
0: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। एक और बात मेरे जहन में ये आ रही है कि हमारे सेलिब्रिटीज हैं बहुत सारे, लाइक शिल्पा शेट्टी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इन लोगों ने भी अपने रेस्टोरेंट्स की चेन स्टार्ट की हुई है। सो क्या सेलिब्रिटीज का इसी में इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है?
1: नहीं, कोई इंटरेस्ट तो शायद इंटरव्यू तो ये बोलते हैं कि हमें खाने का बड़ा शौक है। अब सेलिब्रिटी तो योगा की इतनी बड़ी टीचर हैं तो खुद ही खाना कम खाती हैं। ठीक है, फेम है, लोग अपना फेम यूज़ करते हैं। आई थिंक सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट बेस्टियन इज डूइंग वेरी गुड। सचिन सर का रेस्टोरेंट क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ, ही हैज़ अ रेस्टोरेंट, वो तो गॉड ऑफ है, तो उस पर तो मैं कमेंट कभी नहीं करूँगा। विराट का रेस्टोरेंट है वनट कम्यून, आई थिंक कुछ रेस्टोरेंट के हैं जो दे मैनेज बाय देमसेल्फ, बाकी दे रन ऑन फ्रेंचाइजी। सो आई एम श्योर विराट एज अ बिग नेम, वनट कम्यून उसकी जर्सी का नाम है, वनट कम्यून पे एनीबडी कैन पुट मनी ऑन हिम, सो दे गेट ऑल इन्वेस्टर्स, दे गॉट ऑल फ्रेंचाइजी, सो दे मेक ऑल मनी आउट ऑफ दिस। दे डोंट ऑपरेट, दे डोंट ऑपरेट बिंग 100%। आई थिंक मुझे नहीं पता विराट कोहली अपने रेस्टोरेंट में आखिरी बार खाने कब गया होगा।
0: बिल्कुल,
1: अभी अब देखें तो बेस्टियन बॉम्बे था सिल्वर शेट्टी का, गॉट क्लोज फॉर फ्रॉड, 55 करोड़ का फ्रॉड हुआ उस रेस्टोरेंट में।
0: अच्छा,
1: तो क्यों हुआ ये मैं नहीं पता ना, आई एम वन टू। ठीक है, लोग खोलते हैं, चलता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि अजीत सिंह ने एक रेस्टोरेंट खोला है कैकड़ा में जो 40 रुपये का खाना बेचता है। That's a genuine celebrity who has done this.
0: जी।
1: चाहे गौतम गंभीर हो।
0: अच्छा।
1: जब वो थी सांसद, तूने एक कैंटीन खोला जहाँ पे 10 रुपए में खाना मिलता है।
0: 10 रुपए में, बिल्कुल।
1: आपने मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, आप रेस्टोरेंट खोलें, बिजनेसमैन है, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक वी ऑल फील गुड अबाउट थिंग्स। अभी युवराज सिंह ने रेस्टोरेंट खोला गुड़गांव में, उसी उनका नाम लिया गया, पैसे किसी और लगाए, बट रेस्टोरेंट युवराज सिंह के नाम पर चलता है। बट व्हेन यू गो एंड सी द बिजनेस इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट।
0: जी।
1: सो मैंने समझा ना कि ये बिजनेस उतना आसान है नहीं। अब सेलिब्रिटी है, एट योर नेम इट माइट क्लिक एट सम टाइम, बट टू सस्टेन द रेस्टोरेंट यू रियली नीड टू हैव अ ग्रेट टीम एंड अ ग्रेट कॉन्सेप्ट।
0: जी, तभी वो एक मुकाम तक पहुंचेगा।
1: एंड अ ग्रेट प्रोडक्ट।
0: बिल्कुल।
1: अगर अच्छा खाना, अच्छा ड्रिंक नहीं है तो
0: हाँ, फिर तो कोई क्यों ही जाएगा। बिल्कुल। और सर, अभी जैसे आपने रेस्टोरेंट्स का बताया, बिजनेस की भी बात हो गई यहाँ पे, अब अगर किसी को एक्चुअल में शेफ बनना है, तो हमारे लिसनर्स अभी सुन रहे हैं काफ़ी, हो सकता है इसमें कई लोग इसमें करियर ढूंढ रहे हों, सो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करें कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं कुछ ऐसे, और क्या रास्ता है 12th के बाद, क्या किस तरीके से वो जाएं इसमें?
1: देखिए, बेस्ट कॉलेज का तो मैं किसी के लिए नाम नहीं लूँगा। आई थिंक जो इंडियन गवर्नमेंट के IHM इंस्टीट्यूट्स हैं पूसा वाले, इनके साल में एक बार इसकी इंटरेस्ट होती है, पैन इंडिया इनके इंटरेस्ट होते हैं। अच्छे, सारे अच्छे कॉलेज ही हैं, फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, ग्वालियर, सब अच्छे कॉलेज हैं। डिपेंड ये नहीं करता किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। ऐसे भी कॉलेज हैं जैसे औरंगाबाद IHM है, और महंगे महंगे कॉलेज भी हैं। आई थिंक शेफ बनने की इंडस्ट्री में, जो भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं ना शेफ बनने के लिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैशनेट है। आई थिंक जो हमारे टाइम में नहीं था, जो इनके टाइम पे है, कि हमारे टाइम पे शेफ वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड।
0: जी,
1: दिस टाइम दे आर रिकग्नाइज्ड, ऑलवेज दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट एज अ बिग करियर बूस्ट। मतलब जब से टीवी शो आए हैं और सब शेफ बड़े बने हैं, तो इनके पास तो बहुत बड़ा करियर है। और जिस लेवल के रेस्टोरेंट्स इंडिया में खोल रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, या इंटरनेशनल चीन इंडिया हमारी, स्कोप बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। बट मेरा एक मानना है कि आप शेफ बने, ये करियर बहुत अच्छा है, बहुत ही हार्डवर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा बताता है। मतलब यू नो, खाना पकाना अपने आप में एक कला है,
0: कला है।
1: मैं तो बहुत इसको एंजॉय करता हूँ।
0: जी,
1: पेशेंस रखें, अपने बेस को बहुत क्लियर करें। आजकल लड़के बहुत जल्दी बहुत बड़ी पोजीशन के लिए सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ, पहुँचें, बिल्कुल पहुँचें, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करें कि आप जब वहाँ पहुँचें तो आपका जो बेस है बहुत स्ट्रांग हो।
0: जी,
1: क्योंकि आगे पहुंचने में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे पहुंचने के बाद जो कंपटीशन बढ़ता है, 10,000 से 1,00,000 की सैलरी बहुत आसान है, 1 से 2 लाख सैलरी बड़ी आसान है, 2 से 3 लाख सैलरी थोड़ी डिफिकल्ट है, 3 से 4 लाख सैलरी बहुत डिफिकल्ट है।
0: जी।
1: तो हर उस मुकाम में पैसे बहुत हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, इंडियन शेफ को तो बहुत डिमांड मार्केट में।
0: अच्छा।
1: मतलब आपको बताऊं कि इंडियन शेफ्स हैज बिकम द टॉप प्रायोरिटी फॉर द वर्ल्ड, मतलब उनसे टैलेंटेड बंदा, हार्डवर्किंग बंदा वर्ल्ड में कोई नहीं है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: और ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक ज्यादा डिमांड है इंडियन शेफ्स,
1: बहुत डिमांड है।
0: ओके, सो सर खाने की भी यहाँ पे बात हुई, शेफ के बारे में आपने बताया और डिमांड की, आपका अपना फेवरेट कुजीन कौन सा है?
1: मेरे दो हैं, मेरे बेसिक घर वाला जो है वो दाल चावल चोखा, बिहारी हूँ तो बिहारी वाला खाना, दाल चावल चोखा, आलू की भजिया देसी घी डाल के, और व्हेन आई गो टू रेस्टोरेंट आई वांट टू ईट फूड, जापानीज फूड।
0: अच्छा,
1: आई लाइक जापानीज फूड अ लॉट।
0: और आप ऐसे घर में बहुत सी बार ऐसा तो होता होगा आप बनाते हैं, या लास्ट कब बनाया था आपने कुछ?
1: लास्ट कब बनाया था मतलब महीने में एक बार,
0: कभी फैमिली को खुश करने के लिए?
1: नहीं, फैमिली महीने में एक बार। तो मैंने बोला ना कि मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट भी और भी रेस्टोरेंट हैंडल करता हूँ, तो अभी रेस्टोरेंट हैंडल कर रहा हूँ मैं दिल्ली में ही है, आईवरी के नाम से, उसका नया मेन्यू है, उसके नए मेन्यू का ट्रायल भी मैंने खुद ही करवाया था, उसको कुछ दिन में लॉन्च है।
0: अच्छा,
1: तो अभी मैं यहाँ से जाके मैं खाना पकाने वाला हूँ।
0: अच्छा,
1: सो मैं महीने में एक बार अपना हाथ पक्का किचन में ले जाता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैं
0: जी
1: व्हाट्स माय बैकग्राउंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही,
1: जरूरी भी है ना, वरना हाथ नहीं चलेगा फिर।
0: जी जी जी। और सर आपका फ्यूचर विजन क्या है?
1: मेरा तो मैंने ना अभी अभी एक मार्केटिंग कंपनी खोली अपनी।
0: अच्छा,
1: मैंने अपनी एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। मेरा लोगों ने, मैंने देखा लोग ना आजकल एवरी बडी वॉन्ट्स टू बी इन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे रील डालनी डालनी, तो मैं कहा मैं भी ये काम खोलता हूँ।
0: अच्छा।
1: तो हमने अभी 4 महीने पहले कंपनी खोली है कथा लैब के नाम से, एंड वी आर डूइंग सोशल मीडिया फॉर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉर्पोरेट्स, और मुझे ना बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने समझा कि जो बाकी लोग सोशल मीडिया संभाल रहे हैं उनके पास एफ एंड बी का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वो कर रहे हैं लेकिन दे डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस एफ एंड बी। मेरे पास क्या है कि मैं वो एक्सपीरियंस है तो मैं शायद वो काम अच्छा कर पाऊंगा। और मैं अब वैसे कंपनी की ओनर मेरी बेटी है, मैं उसके ब्याह पे जॉब करता हूँ उसी कंपनी में, ठीक है, मतलब उसके ब्याह पे काम करता हूँ मैं, मेरे दो कोफाउंडर और भी हैं, तो ये मैंने स्टार्ट किया, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। प्लस फर्टर्निटी के जो भी नए ब्रांड चल रहे हैं तुलसी वगैरह वगैरह लॉन्च के लिए रेडी हैं, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। इस साल शायद मैं अपना ब्रांड भी लेके आऊँ।
0: अच्छा,
1: हाँ, शायद इस साल के मिड तक मैं अपना ब्रांड भी लेके आ रहा हूँ।
0: वाओ, हमें वेट रहेगा।
1: बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत ही इतिहास इतिहास को वापस लेके आने की थोड़ी सी कोशिश है, मतलब इतिहास तो नहीं बोलूंगा लेकिन
0: मतलब मुझे लग रहा है कुछ आपके अपनी साइड का,
1: लेकिन वेज। हाँ, वेज तो मेनली आप मान लीजिए बनारस, लखनऊ और बिहार का कुछ लेके आ रहा हूँ मैं।
0: अमेजिंग, हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा सर
1: जी,
0: और हम तो गॉड से यही प्रे करेंगे कि जल्दी ये आए। और
1: नहीं नहीं, अभी बेसिकली नाम हम सब रजिस्टर हो गया है, सब पे काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो को फाउंडर, मेरा जो पार्टनर है, ही मेट एन एक्सीडेंट, तो उसका आई एम वेटिंग फॉर रिकवरी टू हैपन। आई थिंक मई जून जुलाई तक आई विल बी एबल टू स्टार्ट माय फर्स्ट रिटेल। सो बहुत छोटी सी जगह बनाएंगे, और जो असली चाट, तो बेसिकली इज अबाउट चाट, जो चाट खाने की मिलती है आपको बनारस में या बिहार में या
0: लखनऊ में,
1: तो वही के कारीगर, वही के पत्तल में, वही के सकूरे में सब कुछ, इवन चाय बनेगी अंगीठी के अंदर। तो वी वॉन्ट टू गेट दोस एरा ऑफ 1780s का एरा वापस लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि लोग देखेंगे कि पहले कैसे खाना बनता था।
0: बिल्कुल,
1: लोग खड़े हों उस चीज़ को बनते हुए देखें, पेशेंस रखें ताकि चीज़ अच्छी है, और ये सबके लिए, दिस इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दिस इज फॉर एवरीवन हु इज ऑन द रोड, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो करोड़पति लेडी हो, ये सबके लिए है यहाँ पे ऑप्शंस।
0: अमेजिंग कंसेप्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कुछ ऐसा आने वाला है, बिकॉज NCR में मुझे ऐसा लगता है जो ये चाट है ना वो कुछ अलग ही कर देते हैं, छोले प्याज सब कुछ डल जाता है, वो एक फील खत्म हो जाती है।
1: मैं ना मेरे बचपन की कुछ टेस्ट मेरे अभी तक दिमाग में हैं जो मैं शायद बिहार जी जा गया नहीं है, खा नहीं पाया है, और मैं अब चाट नहीं खाता, आई डोंट ईट चाट।
0: अच्छा,
1: मतलब मैं खाना भी नहीं खाता, चाट तो छोड़ दीजिए अब, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लगा कि शायद वो एक चीज़ है जहाँ पे हिंदुस्तान को वो चीज़ से आप अलग नहीं कर सकते
0: जी,
1: और मुझे लगता है कि मैं शेफ होने के बाद भी इतना छोटा सा काम क्यों खोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जहाँ भीड़ है वहाँ खाना है, और अच्छा खाना जहाँ है वहाँ फिर से भीड़ आएगी।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है, तो भीड़, अच्छा खाना और वो पुराना इतिहास दिखाना का जो संगम है वो आएगा इलाहाबाद से, जहाँ मैं रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत मतलब ये सुन के बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि आप एक ऐसी चीज लाने वाले हैं और हमें दिल से इसका इंतजार रहेगा।
1: नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल, बुलाएंगे आपको,
0: बुलाएंगे, उसके बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे सर। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से मनोज जी के साथ अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन शेफ मिस्टर मनोज के राय जी। सो अब एक लास्ट में, मतलब लास्ट तो नहीं कहूंगी, बहुत मजा आ रहा है, मन करे ये चलती रहे बातें। बहुत डिफरेंट टॉपिक है आज बहुत ही, आप जैसे आपने समय निकाला हमारे लिए, क्योंकि अभी तक मेरे शो में यहाँ पे म्यूजिशियंस, मॉडल, फैशन डिजाइनर, इवन डांसर्स आल्सो, तो सब आ चुके हैं, बट सेलिब्रिटी शेफ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। शेफ, यस। तो सर एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे जो रियलिटी शोज हैं, तो अभी हमने देखा मास्टर शेफ ही आई थिंक है ना शेफ के लिए, तो आपको क्या लगता है ऐसे और शोज होने चाहिए, क्योंकि सिंगिंग डांसिंग के तो हम बहुत देखते हैं, नहीं होने चाहिए? अच्छा, ऐसा क्यों?
1: वो रियलिटी में रियलिटी नहीं है ना।
0: बिल्कुल, अच्छा, मतलब वहाँ भी सेम ही चीज है, जो म्यूजिक डांस में वही उधर भी है।
1: वो रियलिटी नहीं होती है।
0: अच्छा,
1: इट्स जस्ट अ शो, एंजॉय लाइक अ नॉर्मल डेली शो।
0: जी,
1: क्या था? डेली शो,
0: डेली शो, मतलब नॉर्मल टीवी सीरियल की तरह हमें उसे एंजॉय करना चाहिए ज्यादा।
1: मैं पार्ट रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है,
0: तभी मैंने आपसे पूछा ये।
1: मैं इसके पार्ट रहा हूँ
0: जी,
1: तो इसके ऊपर मैं बहुत चीजें नहीं बोलूंगा।
0: हाँ जी,
1: मतलब सारे मेरे दोस्त यार हैं, वो अगर उन्होंने सुन लिया तो मुझे रिमांड पे ले लेंगे।
0: जी जी जी, चलिए ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं। और सर आपको बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी मिले हैं, हमें उनके बारे में बताइए।
1: नहीं, मुझे ना इसके बारे में बात करने में बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि जो भी अवार्ड मिले, कई फ़ोन आया, सर आपको अवार्ड मिल रहा है, मैं दे दे भाई। तो मैं बॉम्बे था, तो मुझे किसी ने फिर से फ्यूचर का अवार्ड दे दिया। मेरे साथ दो तीन बड़े शेफ भी थे, एक हरपाल था, सारांश था, बहुत अच्छे लोग थे। तो मुझे आया कि सर आपको ना, वी वॉन्ट यू टू कम एंड टू बॉम्बे टू टेक द अवार्ड, दीपा पाटिल का था अवार्ड। तो ना मुझे क्यों दे रहे फिर फ्यूचर में, तो मैं तो नहीं, सर आप तो अभी यू आर कमिंग आउट रियली वेल, पीपल नो अबाउट यू। आप 2014 की बात है, मैं रेस्टो खोल रहा था अपना। तो मैं कहा ठीक है, अवार्ड दे देते हैं अवार्ड, अगर कोई अवार्ड दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज आपने पैसे नहीं पे किए तो। फिर मैं दिल्ली आया, तो मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपको ये अवार्ड मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, कहाँ मिल रहा है? मैं यहाँ मिलते हैं। तो मैं इसके बारे में इसलिए बात नहीं करता कि रिकग्निशन, मुद्दा ये कि जितने भी अवार्ड मिले उसमें लोगों ने बुलाया आपको और अवार्ड दिए। तो जब आपको अवार्ड मिल रहा है ना, तो आपको लगता है कि हाँ शायद आपने ऐसा कुछ किया होगा
0: जी,
1: जिसके लिए आपको लोग फोन करके बुला रहे हैं अवार्ड लेने के लिए। मैंने कभी किसी से अवार्ड नहीं मांगा कि भाई मुझे अवार्ड ला के दो तो मैं आऊँगा। मतलब ठीक है, वो अवार्ड आएगा, एक दिन फोटो लेके डालोगे इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, या अपने उस पर, उसके बाद वो इट्स अ शो मोमेंटम एट योर हाउस, नोबडी इज गोइंग टू लुक एट थिंग्स। मेरे घर पे तो मेरे अवार्ड दिखते भी नहीं मेरी बीवी के सामने, मतलब शी हैज़ गॉट सो मच अवार्ड। तो ठीक है, मतलब हाँ, यू फील गुड, बट जैसे होता है, मतलब द वे इट कम्स आई टेक इट, आई डोंट फील वेरी गुड अबाउट द सेम। मतलब आई फील गुड अबाउट सेम, बट ऐसा नहीं कि मुझे हर साल अवार्ड मिल रहा हो या मैं यहाँ जाऊँ, उसको जिसने याद किया दे दिया, दे लिया हमने अवार्ड
0: जी। बट आपकी इन बातों को सुन के लग रहा है कि आप सच में बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने जैसे बताया आप बिहार से हैं, तो वहाँ के लोग हम देखते हैं बिहार यूपी के बहुत ही ऐसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा उन्हें चमक धमक का शौक भी नहीं होता।
1: नहीं, मुझे तो है।
0: अच्छा।
1: मुझे है। अब हो गई है
0: जी,
1: अब हो गई है। अब ना अभी क्या है, अब बच्चे बोलते हैं, बेटी बोलती है, अब जा रही है बैंगे जाना, ये बैंगे जाओ, ये बैंगे जाओ, ये घड़ी पहनो, ये लेके जाओ, तो अब लगता है हाँ ठीक।
0: मतलब वो आपको स्टाइल करते हैं?
1: नहीं, शायद मैं खैर आई वॉज डूइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर, तभी बना था, मैं मॉडलिंग भी कर नहीं पाता, बट ठीक है, अच्छा लगता है करने में।
0: नहीं बिल्कुल, जैसा बच्चे बोले, फैमिली बोले, वो तो जरूर उनके लिए करना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: सो आपने अभी अपनी वाइफ का भी जिक्र किया, सो उन्हें कैसा लगता है कि उन्हें भी शौक है खाना वाना बनाने का? अच्छा,
1: शी इज बेटर कुक देन मी।
0: अच्छा,
1: शी इज बेटर देन, शी इज बेटर देन मी,
0: मतलब वो आपसे ज्यादा
1: बढ़िया। हाँ, अच्छा खाना पकाती है। मैं रेस्टोरेंट का खाना पकाता हूँ, जिससे तो मैं ये कहता हूँ कि मैं वो कमाता हूँ जिससे घर का घर चलता है
0: जी,
1: वो खाना पकाती है जिससे घर वाले खुश होकर खाना खाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो सर अब लास्ट में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस शो को सुन रहे हैं उसमें हर एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे?
1: क्या, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसा कभी सोचा नहीं कि मैं क्या मैसेज दूँ लोगों सुनने के लिए। जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी को करियर बनाना है, तो आई एम श्योर आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, जो यंगस्टर जिनको हु वॉन्ट टू परस्यू, हु वॉन्ट्स टू गो एंड डाइन एट द रेस्टोरेंट। अंडरस्टैंड कि जब हम बोलते हैं कि जल्दी ला खाना, ये नहीं है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है. तो वी एज अ गेस्ट शुड बी एबल टू एड्रेस देम वेरी नाइसली. वी शुड बिहेव नाइसली. रेस्टोरेंट में जाके वी आर नॉट किंग एंड देयर आर आर स्लेव्स. मेरा ही मानना है हिंदुस्तान में बहुत कमी है, हिंदुस्तान में बहुत कमी होती है. हिंदुस्तान में लगता है वी आर किंग एंड देयर आर स्लेव्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्डली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं. खाना खाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट जाइए, रील कम देखिए.
0: जी.
1: रील रील को अपना वो ना बनाए, क्या बोलते हैं, ट्यूटर.
0: जी
1: ठीक है, रील इज नॉट ए ट्यूटर. एंड आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ स्टाफ ऑन वेब वेर यू कैन अंडरस्टैंड एंड लुक एंड सर्च फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फूड कि क्या खाना कहाँ से आया है. मेरे लिए शेफ के लिए इतना ही बोलना काफ़ी. मैं किसी को क्या ही बोलूँगी क्या क्या करें क्या नहीं करें.
0: नहीं नहीं, आपने जो ये बात बोली है ना कि रेस्टोरेंट्स में जाके एक अच्छा बिहेव, मतलब देखा जाए तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने आप को. किंग भी नहीं समझे, ये इस ये झलक आता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त निकाला और इतना हमें इंस्पायर किया आपने. सो थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू जी.
0: सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइक.

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: अब सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। ये शो अपने आप में बहुत खास हमारा है, रीजन बीइंग यहाँ पर जो एक्सपर्ट हमारे पास लेकर के आती हैं, वो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपर्टीज से, अपनी स्किल्स से हमें कुछ चीजें बताती हैं, जिनको यहाँ पर हम लोग डिकोड करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग डोमेन्स में आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं और क्या क्या स्किल सेट होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। आज हमारे साथ है मिस्टर ऋषभ सिंह। ऋषभ, बहुत टाइम से मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, साथ साथ बहुत ही होनहार, बहुत ही मेहनती एक इंसान है जिन्होंने अपना करियर स्विच किया सेल्स से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में, और साइबर सिक्योरिटी में भी ऐसे नहीं, मतलब अच्छी खासी जगह पर आज ही बैठे हुए हैं। तो आज अगर आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसको साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना है, कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो अपने करियर में एक नया पार्ट ढूंढ रहा है, कोई भी अगर ऐसा इंसान है जिसको ये वर्ड तो समझ आता है साइबर सिक्योरिटी, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि इसमें करियर कैसे बिल्ड करना है, तो उन तमाम सवालों के जवाब आज के शो से आपको मिल चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने शो की और सबसे पहले स्वागत करेंगे। हाय ऋषभ, वेलकम टू आवर शो।
2: हाय सागर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। तो
1: बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषभ, मेरा पहला प्रश्न आपसे रहेगा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपके बैकग्राउंड के बारे में। आपने सेल्स में काम किया है, तो सेल्स के काम से साइबर सिक्योरिटी में जब आपने स्विच किया, शुरुआत करेंगे उस एक ट्रांजिशन से, कैसे आया कि साइबर सिक्योरिटी में काम करना है और क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ी थी यहाँ पर आने के लिए।
2: तो मैंने बीकॉम किया है और बीकॉम करने के बाद मैं सेल्स में गया था। तो सेल्स में क्या था कि वहां पर कुछ सीखने को मुझे नहीं मिलता था ज्यादा, और मेरा स्टार्टिंग से है कि मुझे लर्निंग पसंद है। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं जहां पर मैं सेल्स करता था, मैं वहां का एक्सपर्ट हो गया था, मैं अच्छी सेल्स भी करता था, पर एक टाइम पर मेरी लर्निंग रुक गई थी। तो उस टाइम मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा करियर अपना बनाता हूँ जहाँ पे इनफाइनाइट लर्निंग हो और उसे मैं कंटिन्यू कर सकूँ। तो उस टाइम पर फिर मैंने अपना जो है करियर सेल्स से साइबर सिक्योरिटी में स्विच किया था।
1: लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्टक रहते हैं, अगर एक डोमेन पकड़ लिया तो उसी डोमेन के होकर रह जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कितना आसान था, कितना मुश्किल था, क्या प्रोसेस था एक करियर से, चूंकि टिपिकल एक कन्वेंशनल मेथड पे चलता है, वहां से एक ऐसे करियर पे जाना जो हर रोज चेंज होता है, हर रोज इसमें कुछ नया आता है, तो वो थोड़ा सा बताइए।
2: सफर आसान नहीं था, क्योंकि मैंने सेल्स की जॉब के साथ साथ मैंने साइबर सिक्योरिटी का मैंने सीखा था। तो मैं दिन में जॉब करता था और फिर मैं रात में आकर अपना पढ़ता था, और मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें तो मुझे पहले से ही पता थी, आई मीन हाउ टू ऑपरेट एंड ऑल, विंडोज चलाना, उस पर काम करना, वो मुझे पहले से ही आता था, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था। और बाकी पर हाँ, मुश्किलें तो आई थी, पर अगर आपको अपनी जीवन में कुछ करना है, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, तो उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: ये बात बिल्कुल सही बोली। अब मैं जानना चाहूंगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आप साइबर सिक्योरिटी में क्या करते हैं, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, थोड़ा डोमेन समझाइए अपना हमें।
2: तो देखिए सागर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है। हम सभी ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, सोशल मीडिया, डिजिटल सर्विसेज हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा एंड प्राइवेसी, ये सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यही काम साइबर सिक्योरिटी करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। सो दिस इज साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, अभी यह है कि इंडिया इतनी तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे सारी चीजें डिजिटल हैं, ऑनलाइन बैंकिंग और AI भी आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है। तो इसी में साइबर क्राइम्स भी इतने बढ़ रहे हैं, आप देखते हैं जैसे फिशिंग अटैक्स होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट है, डेटा ब्रीच होते हैं, बैंक्स के डेटा ब्रीच हो जाते हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी अब केवल आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक डिजिटल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। जो स्मार्टफोन यूज करता है, जो इंटरनेट यूज करता है, ये उस सब इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है।
1: तो आपका जो काम है वो इस एक चीज का ध्यान रखना है। इसमें क्या पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप टेक केयर करते हैं? इसमें सेगमेंट्स भी होंगे ना, प्रोफाइल्स भी होंगे डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा वो समझा सकते हैं कि क्या क्या चीजें फॉलो करती हैं और उसमें से आप क्या करते हैं?
2: जी सागर, तो इसमें क्या रहता है, देखिए साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग डोमेन रहते हैं, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं, डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एनालिस्ट रहते हैं। मेरा जो पर्टिकुलर रोल है, मेरा है पेनिट्रेशन टेस्टर का। तो हमारे पास क्या रहता है सागर, कि हम जैसे वेबसाइट है, ठीक है, तो या वेबसाइट है वो हम उनको टेस्ट करते हैं ताकि अटैकर्स उन पर अटैक ना कर सकें। तो हम बेसिकली अटैकर्स से पहले उन वेबसाइट्स को हम टेस्ट करते हैं, और जिस कंपनी की वो वेबसाइट है हम उसको रिपोर्ट बना कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये कमियां हैं, आप इन्हें ठीक कर लीजिए। देन उनके डेवलपर्स उन जो कमियां रहती हैं उनको वो फिक्स करते हैं, एंड देन वो पब्लिकली लाइव होती है वेबसाइट।
1: All right, so amazing. तो अभी तक हमने जाना है ऋषभ के डोमेन के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में, कैसे सेल्स से उन्होंने ट्रांजिट किया, किस तरीके का प्रोसेस रहा। आई मीन इट टेक्स सो मच ऑफ एफर्ट्स एंड एट फर्स्ट इट टेक्स सो मच ऑफ करेज टू जस्ट गेट स्टार्टेड। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू अचीव एवरीथिंग। आई मीन एवरीथिंग इज पॉसिबल, बी इट साइबर सिक्योरिटी, बी इट कोडिंग, बी इट एनीथिंग, इट्स जस्ट यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। और आपको मानना पड़ेगा पहले कि आपको जीरो से शुरू करना है सब कुछ। तो ये अभी तक की यात्रा में रहा, अभी आगे लेकर चलेंगे शो को और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपनी शो में आगे बात करेंगे। ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत बातें हम ऋषभ से कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट स्टे ट्यून्ड विद अस। फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: नौ बरस लंबी थी ना।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहा है यहां पर वॉइस ऑफ यूथ। हमारे साथ आज के मेहमान है हमारे मिस्टर ऋषभ सिंह। ऋषभ साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। अभी तक हमने ऋषभ के डोमेन के बारे में जाना है। ऋषभ, अब मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा एक और डीपर लेवल की। बहुत सारे लोग इस टाइम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, उनमें से काफी ऐसे लोग हैं जिनको अपना करियर परस्यू करना है साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, बट उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, कहां से शुरू करना है। आप बताइए, साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट करने के लिए क्या रोड मैप रहता है, कैसे स्टार्ट किया जाए, किन स्किल्स की हमें जरूरत होती है?
1: जी सागर, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, जिसके लिए आप कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने हैं, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग, आपको एक लैंग्वेज सीख लीजिए, आइदर पाइथन या C++। उसके बाद आप वेब सिक्योरिटी को आपको सीखना है। उसके लिए ऑनलाइन लैब्स भी अवेलेबल हैं, जैसे पोर्ट्स वगैरह है, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके आप वेब सिक्योरिटी के बारे में पढ़ सकते हैं और लैब्स कर सकते हैं। क्लाउड फंडामेंटल्स आपको सीखने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ सागर, इसमें कैप्चर द फ्लैग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेट्स रहते हैं, जैसे अगर कोई एंट्री लेवल पर जाना चाहता है तो एक सर्टिफिकेट है CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, तो आप उस सर्टिफिकेट को कर सकते हैं। उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं इस डोमेन के अंदर।
0: ओके, और इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, चाहे कॉमर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
1: देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है वो स्किल बेस्ड करियर है, इसमें डिग्री इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स उतनी ज्यादा हैं तो डिग्री मैटर नहीं करेगी कि आपने BCom किया है या BCA है, BSc है, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। बट आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको जॉब लग जाए आपकी और आप वहां पे सीखते रहें रोजाना।
0: ओके, आपने बताया कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, आपने बताया लिनक्स विंडोज के बारे में, पाइथन C++, वेब सिक्योरिटी लैब्स, क्लाउड फंडामेंटल्स। शुरुआत कैसे की जाए, सबसे बेसिक से बेसिक चीज कहाँ से आपको ऐसा होगा कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, वो कौन सा कोर्स होगा या कौन सा डोमेन हो सकता है जिसको ऐसे समझा जा सकता है?
1: देखिए, इसके लिए सागर, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्किंग या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, इसके लिए आइदर आप यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वीडियोज काफी अवेलेबल रहती है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं या ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, आपको एक लर्नर बनना पड़ेगा, आपको

0: रहती हैं, तो आप वो लैब्स कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने वो सारी लैब्स कर ली तो आपको उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि आप आसानी से अपना डे टू डे वर्क कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी।
1: कौन से सॉफ्टवेयर से टूल्स की जरूरत होती है इनमें?
0: देखिए टूल्स की अगर हम बात करें तो सागर, इसमें देखिए आपको स्टार्टिंग में पहले फाउंडेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए फर्स्ट थिंग। अब आप वेब सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं सागर, तो वेब सिक्योरिटी में क्या है कि आप पोर्ट स्विगर लैब्स हैं आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको प्रैक्टिकल सारी नॉलेज मिल जाएगी उनकी लैब्स के ऊपर अगर आप उनको करते हैं, तो वो एक आसान रास्ता है, आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं अपने कैरियर को।
1: ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं लैब्स अटेंड करिए जो कि होती हैं, एंड वेब सिक्योरिटी लैब्स उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपके बेसिक फाउंडेशन है वो आप यूट्यूब के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जो ऋषभ ने बताया कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, एंड दिस डोमेन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल स्किल्स। So it doesn't matter ki you whether you are coming from a medical domain, you are coming from engineering background, or you are coming from commerce arts, all that matters is you should have those practical skills. Ye abhi tak hame samajh mein aaya mota mota. Ab isi ke sath lete hain ek musical break. Aage baat karenge career opportunities kya hain, future kaisa dikh raha hai, ye sab cheezein. But filhal stay tuned with us, feel good, feel live.

0: इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लग रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है, इसी उम्मीद के साथ कि आपको शो में कुछ जानने को मिल रहा है, आइए शो को अब अपने आगे बढ़ाते हैं। ऋषभ हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अगला पॉइंट ऋषभ आपसे जो मैं पूछना चाहूंगा वो मेरा होने वाला है, प्लीज थोड़ा सा मुझे बताइए कि करियर कैसे शुरू किया जाता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर जॉब किसी को लेनी है या फ्रीलांस किसी को अगर करना है तो वो कैसे देखा जाए, ये थोड़ा सा बताइए। कोर्स हो गया, बेसिक्स क्लियर हो गए, अब आगे क्या?
1: जी सर, तो इसमें है कि जब आप देखिए, इसमें वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, उसके बाद क्लाउड है, और इसी के साथ साथ IoT डिवाइसेस की भी सिक्योरिटीज हैं। तो आपको जॉब लेने के लिए आपको एक पहले पकड़ना पड़ेगा, जैसे आप वेब सिक्योरिटी पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वेब सिक्योरिटी में आप उतने एक्सपर्ट हो जाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लैब्स करके उतना आप सीख जाते हैं कि आप प्रैक्टिकल उनको चीजों को कर पाएं अपनी डे टू डे जॉब के अंदर, ठीक है। तो आप उनको ऐसे कर सकते हैं, और सबसे पहला देखिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अच्छा लगता है, नई चीजें सीखने का जुनून है, तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन है, क्योंकि इस फील्ड में लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, और देखिए अपॉर्चुनिटीज तो लगातार बढ़ ही रही हैं, एंड इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर फील्ड इन द वर्ल्ड। तो करियर ऑप्शंस इसमें काफी हैं सागर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसमें सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, एथिकल हैकर बन सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, साइबर ऑडिटर बन सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, हर क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर किया जा रहा है, देखिए गवर्नमेंट भी, बैंकिंग भी, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, डिफेंस, एजुकेशन, इवन प्राइवेट कंपनीज जो आजकल कर ही रही हैं हायर। तो इसमें करियर ऑप्शंस अभी बहुत ग्रोइंग स्टेज पर है ये, तो आने वाले टाइम में भी और इसमें जॉब्स आएंगी ही। तो अगर कोई अपना करियर स्विच करना चाहता है या कोई स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है, तो आप स्टार्ट कीजिए सीखना, ठीक है, YouTube पर आप सीख सकते हैं, और बाकी आप लैब्स कीजिए। एक आपको पहले एक डोमेन पकड़ना है, जैसे आप वेब सिक्योरिटी आप पकड़ लीजिए, वेब से आप स्टार्ट कीजिए, आप वेब के बारे में सारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो स्किल्स, वो आप डेवलप कीजिए, और फिर आप एक जॉब ले लीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए, बाद में तो आप और भी चीजें सीख सकते हैं ना, लर्निंग का इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो आपको सीखना पड़ता ही है। अभी जैसे AI आया, तो आपको AI की टेस्टिंग सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी डे टू डे लाइफ में, तो आप ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, आप नई नई चीजें सीखते ही जाएंगे इस जॉब के अंदर।
0: ऑलराइट। क्या इसमें AI का कोई योगदान है? AI से बहुत लोग घबराते हैं कि भैया AI जॉब खा जाएगा, क्या आपकी इस डोमेन में लागू होती है सेम चीज?
1: देखिए, AI एक पावरफुल टूल है, AI हमें यूज भी करना चाहिए, इवन हमें डे टू डे लाइफ में भी यूज करना चाहिए, बट साइबर सिक्योरिटी में AI से कोई खतरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए साइबर सिक्योरिटी में क्या रहता है कि अब ये समझिए कि ह्यूमन के जो डिसीजन मेकिंग है या इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, वो एक AI नहीं कर सकता अपने आप, ठीक है। तो इसलिए, और साइबर सिक्योरिटी में क्या है कि ह्यूमन एक्सपर्टीज जरूरी रहती है, और वो AI नहीं कर सकता, AI अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी में AI को हम यूज करते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, उसके हेल्प आप ले लीजिए, और बाकी ऐसा कोई खतरा नहीं है जॉब्स में AI की वजह से।
0: ऑलराइट। क्या फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, अगर कोई जॉब ना करना चाहे और एज अ गिग वर्कर काम करना चाहे, तो क्या गिग्स मिलती हैं इसमें?
1: आप एक बार रिपीट करेंगे सागर?
0: मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यहाँ पर फ्रीलांस वर्क मिलता है, अगर कोई इंसान अपनी जॉब ना करना चाहे और यहाँ को एज अ फ्रीलांसर अपना काम ढूंढता है, तो क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस डोमेन में?
1: जी, तो सागर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखिए, अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं तो आप फ्रीलांस कर सकते हैं, और आपने सुना भी होगा कि बग बाउंटी एक चीज रहती है, बग बाउंटी जो रहती है सागर, वो पब्लिकली अवेलेबल जो वेबसाइट्स हैं या जो हैं, तो वहां पर आप कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स अपने पब्लिक प्रोग्राम स्टार्ट करके रखती है, तो उन पर क्या है, उन पर कोई भी अपनी जो प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से अगर कोई वहां पे उनकी वेबसाइट में बग निकालता है, तो वो कंपनी उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिवॉर्ड्स भी देती हैं। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर जैसे फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। ठीक है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको क्या क्या आता है, आप अपनी स्किल्स वगैरह अपग्रेड कर दीजिए, और फिर आपको वहां से भी फ्रीलांसिंग, आप वर्क वहां से ले सकते हैं।
0: ऑल राइट, आई एम डन विद माई क्वेश्चन ऋषभ। कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आप कहना चाहते हो, लोगों को पता होनी चाहिए आपके डोमेन से रिलेटेड, तो प्लीज आप बता सकते हैं। मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं।
1: तो बाकी मेरा कुछ सिंपल मेरी टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा अभी आपके सभी लिसनर्स को, कि देखिए, साइबर सिक्योरिटी खाली जो उसमें जॉब कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। हम सब आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप स्ट्रॉन्ग अपना पासवर्ड रखें। आप इवन आप ईमेल या अकाउंट कहीं पर भी बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, जिसके मिनिमम जो कैरेक्टर्स हैं वो 12 होने चाहिए, 12 to 14, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ ओटीपी और पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अननोन लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं लिंक्स को, तो कभी भी उन पर ना करें। और अपने मोबाइल और कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखें, अगर कोई भी अपडेट आता है आप उसे अपडेट करें, क्योंकि जो मोबाइल की कंपनी है उन्होंने वो अपडेट इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि उनकी लास्ट वर्जन में कुछ उनको टेक्निकल ग्लिच या कुछ बग मिला था, उसके लिए फिर उन्होंने नया अपडेट लाए। तो कभी भी कोई अपडेट आता है आप अपडेट करके रखें आप मोबाइल और कंप्यूटर। इसी के साथ साथ पब्लिक वाईफाई और बैंकिंग ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें पब्लिक वाईफाई के ऊपर। ठीक है, कभी भी पब्लिक में जो वाईफाई रहते हैं उसमें आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन ना करें, और किसी भी ऑनलाइन ऑफर या प्राइस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। तो थिंक बिफोर यू क्लिक, तो मैं यही कहना चाहूंगा। जी
0: ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषभ। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच हमारे लिसनर्स को गाइड करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी लोग कंफ्यूज होंगे या साइबर सिक्योरिटी को सुना होगा, आज थोड़ा और अच्छे से समझ पाए होंगे क्या करियर ऑप्शंस आपके पास हैं, स्किल्स क्या चाहिए, कैसे गेन कर सकते हैं। आई होप ये शो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई फीडबैक है आपके पास तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच ऋषभ।
1: थैंक यू सो मच सागर।
0: थैंक यू सो मच दोस्तों। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, लेकिन अब लेकर लौटेंगे हम अगला एपिसोड अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: देखिए किसान भाइयों, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है रसीले चारे की फसल की बात। उसका नाम है मकचरी। मकचरी का वानस्पतिक नाम यूकेलियाना मैक्सिकाना है। ये रसीले चारे की फसल है जिसका औसतन कद 6 से 10 फीट होता है। इसके पत्ते लंबे और चौड़े होते हैं। पौधे की चारों तरफ बहुत लंबी शाखाएं होती हैं। मादा पौधे जब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं ना किसान भाइयों, और फूल और शाखाएं निकल आती हैं, तो उसे मुख्य भाग को बालियां कहा जाता है। इसमें 5 से 12 दाने होते हैं। इसका मूल स्थान मेक्सिको और केंद्रीय अमेरिका है। भारत की बात करें तो भारत में पंजाब सबसे ज्यादा मकचरी उगाने वाला राज्य है। ये मुख्य तौर पर नवंबर के महीने में चारा पैदा करने वाली फसल है और लंबे समय तक हरी बनी रहती है। तो मकचरी के बारे में, यानी कि रसीले चारे की फसल के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, बात हो रही है आपसे मकचरी के बारे में, तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये फसल चिकनी से रेतीली मिट्टी में उगाई जा सकती है। ये भारी मिट्टियों में बढ़िया पैदावार देती है। हल्की रेतीली जमीनों में इसकी खेती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फसल के विकास पर बुरा प्रभाव डालती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका बढ़िया विकास हो, तो उसके लिए मिट्टी का जो पीएच है, पीएच 5.8 से 7.0 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किस्मों की। एक किस्म है जिसका नाम है TL1। ये किस्म 1993 में तैयार की गई थी और इस किस्म का पौधा दानों के सुरंगी कीटों का रोधक होता है। इसके पत्ते पकने तक हरे बने रहते हैं। इसके बीजों की परत सख्त होती है और स्लेटी भूरे रंग के होते हैं। अगर हम दूसरे राज्यों की किस्मों की बात करें, तो सिरसा इम्प्रूव्ड और रूररी नाम की किस्में भी तैयार की गई हैं। लेकिन किसान भाइयों, जमीन की जब तैयारी की बात आती है, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जमीन की तैयारी किस तरह की जानी चाहिए मकचरी के लिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जमीन की तैयारी की, मक्षरी की। जब भी आप फसल बोएं तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तैयारी की अगर बात करें तो मक्षरी की बिजाई के लिए ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। ज़मीन को बढ़िया तरीके से समतल करने के लिए एक बार हैरो से जुताई ज़रूर करें और फिर दो बार सुहागा ज़रूर फेर दें। फसल की बिजाई तैयार किए बैंडों पर की जाती है और बिजाई की अगर हम बात करें तो इसका समय भी होता है। मई जून महीने में नर्सरी तैयार करें और जून जुलाई महीने में बीजों की बिजाई करें। अगस्त में बिजाई बिल्कुल न करें, क्यों? क्योंकि इससे पैदावार कम हो जाती है। फासले की बात कर लेते हैं पौधे के विकास के लिए। पौधे के विकास के मुताबिक बीजों को 30x40 सेंटीमीटर के फासले पर बोएं और बीज की गहराई की अगर बात आती है तो बीज को 3-4 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोएं। बिजाई को केरा विधि, कौन सी विधि? केरा विधि या बिजाई वाली मशीन की सहायता से की जाती है। तो ये हो गया आपका बिजाई का ढंग, बीज की गहराई, फासला क्या होना चाहिए और बिजाई का समय क्या होना चाहिए, जमीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अब बात आती है बीज की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा बीज होगा फसल आपकी उतनी ही बेहतर होगी। तो बीज के बारे में आपसे कुछ जरूरी बातें करूँगा और खाद की बात भी करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है उस फसल के बारे में जिसका नाम है मगशरी। जमीन की तैयारी कैसे की जाए, इस बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, बिजाई का तरीका भी बता दिया। बीज की जब बात आती है तो हमें बहुत सारी सावधानियों की जरूरत होती है। बीज की मात्रा का जरूर ध्यान रखें। बढ़िया अंकुरण वाले किस्मों के लिए 16 किलो प्रति एकड़ बीजों का प्रयोग करें। अब बात आती है खाद की, तो इसको भी जरा ध्यान से सुनिएगा। खेत की तैयारी करते समय रूड़ी की खाद 8 टन प्रति एकड़ जरूर डालें। नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो की मात्रा का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बिजाई से एक महीने के बाद नाइट्रोजन 20 किलो यानी यूरिया 44 किलो का छींटा जरूर दे दें। लेकिन किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे खेत में जो फसल है वहाँ पर अगर खरपतवार आ जाती है तो उस खरपतवार से कितना नुकसान होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फसल चाहे कोई भी हो, खरपतवार उसकी एक तरह से दुश्मन है, दुश्मन। अब इस दुश्मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता फहीम के साथ।

0: दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खरपतवार की, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है हमारी फसल के लिए। नदियों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए बार बार गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर नदियों पर काबू ना पाया जाए तो पैदावार में भी बहुत कमी आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसकी अच्छी रोकथाम करना चाहते हैं तो प्रभावशाली रोकथाम के लिए एट्राटॉफ 50WP 400 ग्राम प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई से 2 से 3 दिन के बाद स्प्रे करें। मिट्टी का तापमान और नदियों को कम करने के लिए मल्चिंग का तरीका भी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, जिससे ये जो खरपतवार है इसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये तो बात रही खरपतवार की। अब बात जब आती है सिंचाई की तो वो भी जानना जरूरी है। भाई देखिए किसान भाइयों, जलवायु और मिट्टी के आधार पर 8 से 10 दिनों के फासले पर हमें इस फसल की सिंचाई करनी चाहिए, जो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात आती है कि भाई पौधे की देखभाल कैसे करें, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उन कीटों की रोकथाम कैसे की जाए और वो कौन कौन से कीट हैं जो कि हमारी इस फसल को बर्बाद करते हैं, उन कीटों का नाम बताऊंगा। और नाम ही नहीं बल्कि उन कीटों से फसल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वो बातें भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कीट और उनकी रोकथाम की। एक कीट होता है जिसका नाम है मक्की का छेदक। ये कीट मुख्य तौर पर फसल के शुरुआती विकास के समय हमला कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है? इसकी रोकथाम के लिए 750 WP यानी कार्बोरिल 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ की स्प्रे जरूर करें। अब बात आती है फसल की कटाई की, तो ये भी सुन लीजिए। इसकी कटाई आमतौर पर बिजाई से 80 से लेके 100 दिन बाद की जाती है। फसल के गुच्छे निकलने पर कटाई की जाती है। इस समय चारा ज्यादा देर तक हरा रहता है और पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ होता है, और सूखी फसल की कटाई धूप में कर ली जाती है। लेकिन किसान भाइयों, कटाई के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। कटाई के बाद फसल को दबाया जाता है। क्या किया जाता है? दबाया जाता है। फसल को हाथों से दबाया जाता है या फसल के ऊपर से ट्रैक्टर को चलाया जाता है। स्टोर करने से पहले सफेद दानों को अलग कर लें। इसके बाद चारे को बोरियों या किसी बंद जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। मक्चरी के दाने की औसतन पैदावार लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का, इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में, और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। अरे कुछ

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना, सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं, कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर। पल भर

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और समाज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। जी हाँ, हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसमें हम बहुत सारी ट्रेंड की बातें करते हैं, किसी स्पेशल दिन की बात करते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो भी चीज़ें हम सबसे जुड़ी हुई है, हम उन सब चीज़ों को कवर करते हैं यहाँ पर। आपको पूरी डिटेल में सारी जानकारी लेकर आती हूँ आपके लिए, और साथ ही उसी के साथ लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी। जी हाँ, बहुत प्यारे प्यारे से गाने भी, एंटरटेनमेंट भी आपके लिए होता है यहाँ पर, और साथ ही कुछ हमसे जुड़ी हुई ज़रूरी बातें भी। तो दोस्तों, आज भी लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम ट्रेंडिंग तड़का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इस टाइम पे हम सब अपने सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। जी हाँ, आपने सोशल मीडिया पर या फिर कहीं तो आपने कहीं न्यूज़ में या फिर कहीं पर भी आपने छोटी छोटी सी चीज़ें ना खबरें पढ़ी होंगी कि इस टाइम पे ना कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इस टाइम पे चल रहा है, जिसमें आपको मैं बता दूँ कि बहुत से ऐसे हमारे इंडिया के लोग हैं जिन्होंने, एथलीट्स हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, साथ ही जीत भी हासिल की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का। जी हाँ, सोशल मीडिया में हो, न्यूज़ चैनल में हो, या फिर स्पोर्ट्स लवर की कॉन्वर्जेशन से क्यों ना हो, हम सब जानते हैं कि हम सबको इन गेम्स को देखना और फिर हमारे जो एथलीट्स हैं जो जीत कर आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना हम सबको कितना पसंद है। तो आज इसलिए इनके लिए ये खास एपिसोड है। हर जगह एक ही बात हो रही है कि जो इंडिया के एथलीट्स हैं ना, उनका शानदार परफॉर्मेंस, ओहो क्या बात है, हर मेडल के साथ देश का तिरंगा और भी ऊँचा लहराता हुआ नज़र आ रहा है, और हर इंडिया के दिल में गर्व का एहसास और मजबूत होते जा रहा है, क्योंकि ना ये प्राउड मोमेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स आखिर होता क्या है। ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जहाँ पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के एथलीट्स अलग अलग स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाते हैं। साथ ही एथलीट्स वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्विमिंग और कई ऐसे दूसरे स्पोर्ट्स में प्लेयर्स अपने देश के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। हर एथलीट का एक ही सपना होता है कि पोडियम पर खड़े होकर अपने देश का नेशनल फ्लैग देखना और मेडल जीतना। जी हाँ, और इस बार भी इंडिया के कई शानदार ऐसे परफॉर्मेंस, कई ऐसे एथलीट्स हमने देखे हैं जो इस बार कई ऐसी चीज़ों में जीते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग से लेकर पैरा एथलीट्स के एथलीट तक। जी हाँ, हमारे प्लेयर ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से दुनिया को बता दिया है कि इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ मेडल्स की कहानी नहीं है, बल्कि उन सालों की मेहनत है, डिसिप्लिन है और सैक्रिफाइसेस है कि उनकी कहानियाँ बताती है कि जो एथलीट अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम उसी के बारे में जानने वाले हैं कि कितने मेडल्स हमारे देश में आए हैं, इंडिया को कौन से गोल्ड मेडल मिले, किस गेम में मिले, कौन से सिल्वर और कौन से ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इन सब इंस्पायरिंग जर्नी को आज हम जानने वाले हैं आपके साथ में, मैं शेयर करने वाली हूँ, और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी इंटरेस्टिंग जो कि फैक्ट्स हैं, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। पर इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम बहुत ही प्यार प्यार से गाने भी लेकर आते हैं, तो अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं और भी बहुत सारी बातें, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और इस हफ्ते फिर से आ गई हूं मैं आपके लिए लेकर एक और खास ट्रेंडिंग तड़का। जी हां, ट्रेंडिंग तड़का ये इसलिए है क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये जो ये बात जो आज हम कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो बहुत ही खास है। क्योंकि ना जब कहते हैं ना कि हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, और जब हम कहीं जाकर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम जीत कर आ रहे हैं, तो ये कितना प्राउड मोमेंट हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये ना शब्दों में बयां नहीं करा जा सकता है, बहुत खास एक कहते ना कि मोमेंट बन जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स ये जो 2026 का है, ये 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चल रहा है। जी हाँ, 2 अगस्त इसका आखिरी दिन है, ये 23 जुलाई से शुरू हो गया था। इसमें बहुत सारी लोगों ने पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे लोग आते हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसमें से हमारे इंडिया टीम के कई ऐसे चैंपियंस भी है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों, आज जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन चैंपियंस को जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से देश का नाम रोशन किया है, तो दोस्तों इस सेगमेंट पे अब हम बात करेंगे हमारे उन गोल्ड मेडल विनर्स की, जिनकी जीत सिर्फ एक मेडल ही नहीं है बल्कि लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। सबसे पहला नाम आता है मीराबाई चानू का। जी हाँ, जब भी इंडियन वेट लिफ्टिंग की बात होती है तो मीराबाई का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में हो या फिर इंटरनेशनल चैंपियंस में हो, उन्होंने बार बार ये प्रूफ किया है कि कंसिस्टेंसी ही असली चैंपियन की पहचान होती है। इस बार भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपने कॉन्फिडेंस और अपने एक्सपीरियंस के दम पर गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का तिरंगा सबसे ऊपर लहराया है। जी हाँ, उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट के साथ डिसिप्लिन और पेशेंस भी उतना ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं दिलीप माधुगवित की, जिनका पैरा एथलीट के इस स्टार एथलीट ने मेंस 100 मीटर T47 इवेंट में गोल्ड कर देश का नाम और भी ज्यादा रोशन कर दिया है, खुशी से भर दिया है। पैरा एथलीट हर बार हमें ये बताते हैं कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं होती है बल्कि हौसले में होती है। दिलीप की परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे आपके मजबूत हो ना, तो कोई भी चैलेंज बड़ा क्यों ना हो, आप हर किसी को पार कर सकते हैं। इसी के साथ एक और नाम जिसने सबका दिल जीता है, और वो है शर्मिला दांकर जी। जहां वुमेन्स शॉर्ट पुट F57 इवेंट में उन्होंने शानदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उनकी अचीवमेंट सिर्फ एक स्पोर्टिंग सक्सेस ही नहीं है बल्कि उन सब लोगों के लिए मोटिवेशन है जो मुश्किल सिचुएशन के बावजूद अपने सपनों को छोड़ते नहीं है, और उनकी मेहनत और डेडिकेशन हर यंग एथलीट के लिए एक मिसाल बन गई है। दोस्तों, गोल्ड मेडल जीतना किसी भी एथलीट के लिए सिर्फ कॉम्पिटिशन का रिजल्ट ही नहीं होता है बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत, उनकी प्रैक्टिस, इंजरीज और रिकवरी, काउंटलेस ट्रेनिंग सेशंस और फैमिली, साथी कोचेस और सपोर्ट स्टाफ का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, भरपूर साथ होता है। जब एक एथलीट पोडियम पर खड़ा होता है ना, तो और नेशनल एंथम बजता है, तब वो पल सिर्फ एक एथलीट का ही नहीं होता है बल्कि पूरे देश का बन जाता है। हमारी गोल्ड मेडल विनर्स ने एक बार फिर से दुनिया को दिखाया है कि इंडिया हर स्पोर्ट्स में अपनी पहचान मजबूती से बना रहा है। ये जीत आगे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करेगी और सपने देखने को भी मजबूर कर देगी। मेहनत करिए और कभी मत हार मानिए, ये संदेश इस जीत से मुझे तो यही समझ में आता है। तो वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। जहां कॉमनवेल्थ गेम्स इस टाइम पे चल रहा है, 23 जुलाई से शुरू हुआ और 2 अगस्त यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा, बहुत सारे लोग इसमें खेलने गए और आज हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो है हमारे इंडियन एथलीट्स। जी हाँ, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा, साथ ही वो गोल्डन, सिल्वर, ब्रॉन्ज बहुत सारे मेडल्स जीत कर लेकर आए हैं और हमारे देश के नाम किया है, हमारा देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। और अब जब हम पिछले सेगमेंट पे अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया में गोल्ड मेडल विनर्स जो विनर बने हैं, अब वक्त है उन चैंपियंस को सैल्यूट करने का जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं मुरली श्रीशंकर की। लॉन्ग जंप जैसे टेक्निकल इवेंट में कंसिस्टेंसी और फोकस बहुत जरूरी होता है। मुरली ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सिल्वर मेडल अपने नाम किया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि इंडियन एथलीट तब दुनिया के बेस्ट एथलीट को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, उनका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन हर स्पोर्ट्स लवर के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन बन चुका है। अब चलते हैं वेट लिफ्टिंग की तरफ। जी हाँ, ऋषिकांता सिंह ने मेंस 60 kg कैटेगरी में शानदार लिफ्ट के साथ सिल्वर मेडल जीता है। कंपटीशन काफी टफ था लेकिन उन्होंने प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया और इसी तरह राजा मुथुपंडी ने अपनी मेंस 65 kg कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए सिल्वर मेडल को हासिल किया है। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम नहीं होता है बल्कि टेक्निक, बैलेंस और मेंटल फोकस का भी टेस्ट होता है और इन दोनों एथलीट ने इसे बाखूबी से प्रूव कर दिया है। पैरा एथलीट्स में मोहम्मद बसील ने मेंस 100 m T47 में इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। उनकी रेस ने ये दिखाया है कि स्पीड सिर्फ पैरों में नहीं होती है बल्कि हौसलों की भी होती है। हर फिनिश लाइन के पीछे उनकी सालों की मेहनत और डेडिकेशन छुपी हुई है। इनके अलावा भी कई इंडियन एथलीट ने अलग अलग इवेंट्स में सिल्वर मेडल जीतकर देश को गर्व महसूस दिया है, करने का मौका दिया है। हर मेडल एक अलग कहानी लेकर आता है। सुबह से शाम तक की प्रैक्टिस, इंजरीज से वापस आना, अपनी लिमिट्स को रोज तोड़ना और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना और इसी प्रोसेस से चैंपियंस तैयार होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग सिर्फ गोल्डन मेडल्स को ही याद रखते हैं लेकिन सिल्वर मेडल तक पहुंचना भी किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं होता। दुनिया के सबसे बेहतरीन एथलीट्स के पीछे खुद को पोडियम तक लेकर जाना ही एक बहुत बड़ी जीत होती है। हमारे सिल्वर मेडल्स विनर जो है ये साबित कर दिया है उन्होंने कि इंडिया का स्पोर्टिंग इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और हर नई जनरेशन के एथलीट्स नए स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं। और अब बारी है उन प्लेयर्स की जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भारत की मेडल टैली में अपना योगदान दिया है, पर इसे बताने से पहले मैं लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel like.

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के उन हीरोज की जिन्होंने मेडल्स जीतकर इंडिया को गर्व कराया है, और साथ ही नई जो हमारी जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उनको इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है कि आप भी ना किसी से कम नहीं है। अगर आज हम यहाँ पर हैं तो कल आप भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर मेडल की तो हमने बात कर ली है, उनके विनर्स की बात करी है, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बाद अब बात करते हैं उन चैंपियंस की जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर भी देश का सर फक्र से ऊँचा कर दिया है। क्योंकि स्पोर्ट्स में हर मेडल के पीछे एक ही कहानी होती है, वो होती है मेहनत, डेडिकेशन और कभी हार ना मानने का जज्बा। सबसे पहले नाम है बिंद्रियाइनी देवी का। जी हाँ, वेटलिफ्टिंग में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। वेटलिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट होता है जहाँ पर सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि परफेक्ट टेक्निक, बैलेंस और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। बिंद्रियाइनी ने प्रेशर के बावजूद अपना बेस्ट दिया और भारत के लिए एक और मेडल जीतकर सबको बहुत प्राउड फील कराया। इसके बाद बात करते हैं जंडू कुमार की जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरा स्पोर्ट्स में हर बार ये सिखाते हैं कि असली जीत शारीरिक सीमाओं पर करने में नहीं होती है बल्कि अपने हौसलों को कभी टूटने ना देने में होती है। उनकी परफॉर्मेंस हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। एक और शानदार नाम है शिल्पा शाइला। जी हाँ, जिन्होंने पैरा एथलीट्स में विमेन शॉर्ट पुट F57 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में अपना योगदान दिया है। उनकी अचीवमेंट हमें याद दिलाती है कि सक्सेस किसी एक दिन की देन नहीं होती है बल्कि इसके पीछे सालों की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और लगातार की गई मेहनत होती है। दोस्तों, अगर हम इंडिया के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल हमारे एथलीट्स ने वेट लिफ्टिंग एथलीट्स और पैरा एथलीट्स और जैसे इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। हर मेडल के साथ इंडिया की पोजीशन मेडल टैली में और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन मेडल टैली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन एथलीट्स ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स और स्पोर्ट्समैनशिप से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ मेडल्स का कंपटीशन नहीं होता है बल्कि टैलेंट, यूनिटी और डिटरमिनेशन का सेलिब्रेशन होता है। जब अलग अलग स्टेट्स और बैकग्राउंड से आए प्लेयर्स एक ही तिरंगे के लिए कॉम्पिटिट करते हैं और जब पूरा देश एक साथ उनके साथ खड़ा नजर आता है, यही स्पोर्ट्स की असली खूबसूरती होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम वक्त हो गया है अभी तो छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, पर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के 2026 के कुछ ऐसे अमेजिंग रिकॉर्ड्स की, उनके हिस्टोरिक मोमेंट्स की और इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो आपको भी जानकर लगेगा अच्छा ऐसा भी था। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे, पर उससे पहले सुनाऊंगी आपको बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।
1: चमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तो मैं ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का, तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना, तो मैं उसने जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए, अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं, उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जुड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है।

जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही। और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं है और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त हैं। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो, प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंगी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंगी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंगी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो।
ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या, सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा। ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था, फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया, पर उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा हटो बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी 2 पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आए अकबर से कहा कि दुखी हैं हम, लेकिन कोई आदमी 2 पैसा देने को तैयार नहीं, उल्टे लोग नाराज होते। जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, 2 पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे, तो जिसकी 2 कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी इच्छा प्रकट की। इसलिए पूर्व में हम सिर झुकाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं, ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूं, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको।
अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार हैं, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए। बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गया, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा, और उसी के सांस प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुर्य लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है, प्रमाण नहीं पूछता। तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे, चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े।
आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाथे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआ है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विश्व मुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुक, रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिटकर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी है,

0: 25 साल वाले भी ना टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी है, ये कितनी देर टिकेगी? तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क क्या दिए है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो, ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है, उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुश्क जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणतः तुम यही सोच रहे होगे, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा? और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे। क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों को कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। अब तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था, तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना? तो तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए, कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो, ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अशांत तुम पाओगे, अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे। तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात। तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों, पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो।
1: तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले तीन सूत्र सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनसुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनसुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। साक्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छतरी तो छतरी, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ। पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सक्षम है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे, ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। आसार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में, और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें, हाथ, नाक, कान नौकरी, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साख्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है, जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया, तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं, तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़ा ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार? रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
2: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
3: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके

0: जाते हैं. अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं. अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं. तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए.
1: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
0: हूं. एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग. और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता. उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है. तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का. दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं. नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम. एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग, लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया.
1: Because I empathized with that victim.
0: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती. जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो. जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है. हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है, उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया. When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower. रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है. वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है. लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ. क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
1: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा. बट आई थिंक
0: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर, एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
1: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
0: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विद इन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत ईजी है, हम

0: आकर वहाँ सोचेंगे कि ये तो आत्मा है।
1: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त तो, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है।
0: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा। तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट एम्पावरमेंट।
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। अगर हम पूरे एस्पेक्ट को देखें तो सारे क्राइम जो सीन्स हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई क्रिमिनल है। थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है। यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह।
0: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है। जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ।
1: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड।
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है। तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है। So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही perspective में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है। अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं। बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया। It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
1: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान। रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
0: ओनली वन, यू नीड ओनली वन। कई बार घरों में लोग कहते हैं, ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की।
1: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर, ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ।
0: जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी, इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
1: और ये मेरे लिए जरूरी
0: है, दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग। और सफरिंग किसके लिए, बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है, नुकसान किसका है, उनका, वो भूल चुके, अपना। सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है। इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन,
1: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक।
0: let me stop now. Mm-hmm. Nobody creates suffering for me. Nobody can cause me pain. Only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? Mm-hmm. That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
1: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं और अब हर बार और क्लैरिटी से आता जा रहा है कि मेडिटेशन इज एम्पावरिंग माय ओन सेल्फ. यू नो, हीलिंग की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ हीलिंग अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और ग्रेजुअली पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. तो सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिपेक्ष में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर, हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
0: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
1: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
0: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा. और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है
1: मैं कर रही हूँ.
0: अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर. सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए. फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव. अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं. तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
1: मैं ही करूँ,
0: मुझे करना. अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी. तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं. से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा. तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस. एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या.
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव. सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर कि और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूँ.
1: पेन में हूँ
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है. दिस आई विल हैव टू आस्क बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी. अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, यू नो, इवन नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ रियली, यू नो, विक्टिम्स ऑन सम बिग,
1: छोटे छोटे, आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, यार, एट टाइम्स वी स्टार्ट शेयरिंग, एक्चुअली इतना ज्यादा,
0: आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ. एंड वो एक रिकॉर्ड की तरह प्ले होता जाता है कि जहाँ जहाँ बैठे लोगों के साथ अपना जैसे बोलते हैं ना, अपना रोना रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ. वी आर नॉट एबल टू मूव अहेड. तो मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, आई हैव टू मूव ऑन. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहाँ पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
1: रहते हैं. लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized, जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते.
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ that is now over. अब मुझे focus सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. जैसे कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट. कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल. Just treat the person as normal. क्योंकि जितनी बार आप sympathy देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप victim हैं. You know? तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार saying बेचारे आप.
1: I think somewhere, you know, why बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, because we also like the sense of power that, you know, we are able to help somebody.
0: True.
1: Because we don't we would like to help somebody.
0: Right, but we're not really helping.
1: Yes.
0: You know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke, hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga? Ya even ye kehna, koi baat nahi, sab theek ho jayega. Matlab, it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi, sab theek ho jayega, wo theek hai. But by saying that, we're saying ke abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.